मोर पंख, मयूर, पिकॉक, मोर, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख के कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग हमारे अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख की। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आगर्स, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि एक आध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है, इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। मोर पंख के विषय में और मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते, यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है, तो कभी किसी संत की पिछी, कभी आंखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं। आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका, सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था, यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

आप सुन रहे हैं अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोरपंख की। तो चलिए मोरपंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नौ ग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्ज्वल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोर पंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

मोरपंख। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोरपंख को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में इसका अलग अलग महत्व भी है। हिंदू धर्म में मोरपंख भगवान कृष्ण का आभूषण है। कृष्ण के मुकुट में मोरपंख होता है, जो प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे पहनकर वे प्रकृति और जीवन से जुड़ाव दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है मोरपंख। मोरपंख को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारक है मोरपंख। वास्तु शास्त्र में मोरपंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोरपंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोरपंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है, इसलिए मोरपंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोरपंख का महत्व। बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोरपंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोरपंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोरपंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोरपंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोरपंख। सिख धर्म में मोरपंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोरपंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोरपंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है मोरपंख, जिसे विवेक और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में पिच्छी यानी अहिंसा उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो करुणा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार इसका प्रयोग बहुत ही सीमित माना गया है, परंतु सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है मोरपंख। तो मोरपंख हर एक धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी माना गया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के पहले या दौरान कुछ लोग मोरपंख को कपड़ों के साथ पहनते हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिसपे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौमे आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, कर्बला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोरपंख का इससे क्या संबंध है? मोरपंख कर्बला के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक परंपरागत तौर पे माना गया है। भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों में सिया मुसलमान अलम यानी ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं। अलम के साथ जो झंडियां या कपड़े लगे होते हैं, उनमें अक्सर मोरपंख या मोरपंख के आकार के तावीज या सजावट दिखाई देती है। हजरत अब्बास से जुड़ी मान्यता के अनुसार
हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, जिन्हें बाबुल हवाज और शेरे करबला भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनके अलम यानी झंडे की शान को मोर पंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोर पंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोर पंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोर पंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक यानी काला, इमामों की विरासत यानी हरा, इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और करबला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोर पंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोर पंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और करबला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलूंगी, जो कि मोर पंख पर ही आधारित है। एक सुंदर, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं, उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव दिखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया, जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य, विनम्रता, ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पर अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोर पंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोर पंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोर पंख को गौर से देखा है? उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है, ये मोर का उपहार नहीं खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदाबहार रूप में महक उठता है। शायद आपको ये जानकर झटका लगेगा कि जिस मोर पंख को हम इतनी श्रद्धा से सिर पर सजाते हैं, वो पंख खुद मोर के लिए दर्द का प्रतीक होता है। जी हाँ, हर साल जब पंख झड़ते हैं तो मोर चुपचाप उस बिच्छोह को सहता है। किसी से शिकायत नहीं, कोई चीख नहीं, क्योंकि वो जानता है जिसे आज मैं छोड़ रहा हूँ वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या हम भी उस मोर की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर मगर सबसे शांत रहकर, और जब समय आए त्याग का तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोर पंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

आदाब, स्वागत करते हैं आपका हम आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग गोंडा। तो कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत करते हैं आपके स्पेशल वाले प्रोग्राम मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। स्वागत है, नमस्कार है, आदाब है। मैं हूं आपकी अपनी आरजुमती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल शो ऑफ कोर्स। और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और इस धड़कन में आज बहुत गर्मी है क्योंकि भैया सुबह सुबह ही सूरज देवता ने इतने अच्छे से दर्शन दे दिए हैं कि लाइट ही चली गई है। जी हाँ, फिलहाल आप बताइए आप कैसे हैं। और ऑफ कोर्स, क्या आपकी सुबह हो चुकी है? आपने चाय पी ली है या सुबह उठ के सबसे पहले मेरी तरह दो ग्लास गरम गरम पानी पी कर आप आए हैं? चैट बॉक्स में आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के आज का थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज आपसे मुझे क्या कहना है, वो कौन सा मुकम्मल ख्याल है जो मुझे आपके साथ अपनी इस खूबसूरत मुलाकात को और भी हसीन बनाने के लिए आपके साथ शेयर करना है। मिलते हैं, एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, तो हमारी मुलाकात हो चुकी है आपसे आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। तो इस मुलाकात को और भी मुकम्मल बनाने के लिए मेरे पास है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मुकम्मल ख्याल जो आपको बहुत सारी बातें बताकर जाने वाला है। तो क्या है आज का थॉट ऑफ द डे जो मैं बताने वाली हूँ आपको आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल उससे पहले आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग रेडियो जॉकी मौजूद है आप सभी के साथ, जिसका नाम है उन्नति। जी हाँ, तो भाई आज का थॉट ऑफ द डे कुछ ये कहता है कि किसी इंसान ने, किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आप अपनी बस मिस कर देते हो तो आप एक एक्सीडेंट को अवॉइड करते हो, अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो हो सकता है आप बच गए हो उस जगह से जो जगह आपके लिए सही ना हो। अगर वो आपको छोड़कर चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी अच्छी चीज़ के लिए या किसी अच्छे शख्स के लिए जगह बना कर गए हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और जब वो प्रोटेक्ट करता है तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है। तो भाई इन इंग्लिश इसको ऐसे कहेंगे कि इफ़ यू मिस द बस मे बी यू अवॉइडेड एक्सीडेंट, एंड इफ यू गॉट रिजेक्टेड मे बी यू वर सेव्ड फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस। If they left you, maybe they made room for who is coming. The universe protect you in way that looks like bad luck at first. जी हाँ, अगर आप अपनी बस मिस करते हैं तो हो सकता है आप आने वाली दुर्घटना को मिस कर रहे हों, आप उसको पीछे छोड़ रहे हों। अगर कोई आपको छोड़ के जाता है तो हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला था जो किसी के रहते हुए नहीं आ सकता है। इसीलिए कभी भी कोई चीज़ हासिल करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ खाली करने ही पड़ते हैं। अगर सोच जगह ही ना हो तो वो दूसरा इंसान या फिर दूसरी चीज़ जो हमारी तरफ आ रही है वो आएगी कहाँ। अगर आपको पॉजिटिव थॉट भी चाहिए तो उससे पहले आपको अपने दिमाग से सारे नेगेटिव ख्याल निकालने पड़ते हैं, नेगेटिव थॉट्स निकालने पड़ते हैं। अगर आपको हाथ में कुछ पकड़ना है तो पहला जो पकड़ा हुआ है उसे छोड़ना पड़ता है। और अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी जगह से बच गए हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। हाँ, कुछ चीज़ें जब हमें शुरुआत में लगती हैं कि ये तो बहुत बेकार है यार, मेरी किस्मत ही ख़राब है, वो एक्चुअल में बस स्टार्टिंग में लगती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपको समझ में आता है ये होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर कोई मुझे छोड़ के नहीं जाता तो जिनसे मुलाकात मेरी आज हुई शायद वो कभी ना होती। अगर वो बस आज ना छूटती तो हो सकता था आने वाला एक्सीडेंट मेरे साथ ही होता। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कहीं ना कहीं देर जाने की वजह से ही बच जाते हैं। किसी का फ्लाइट मिस हो जाता है, किसी का बस मिस हो जाता है, किसी का ट्रेन मिस हो जाता है और बाद में खबर आती है कि उस फ्लाइट का कुछ हो गया, उस ट्रेन का कुछ हो गया। तो कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो आपको पता नहीं चलते, आपको लगता है कि आपकी तो चीज़ें मिस हो गई हैं, बट वही हैं जो आपको हादसों से बचाती हैं। जो लोग आपको छोड़कर जाते हैं उन्हें भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आने वाले इंसान के लिए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा जगह प्लस बहुत बड़ा गेट खोल कर जाते हैं। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी सोचनी पड़ेगी, और जो चीज़ें अभी तक आपकी ज़िंदगी में से जा चुकी हैं उन्हें लेट गो करते हैं। आज की इस नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो ज़रा दोनों बाहें फैलाकर इसका स्वागत करते हैं, इन्जॉय करते हैं और आज के दिन फिर से अपने दिन में लग जाते हैं, दिन को बनाने के लिए, अपने सपनों को बनाने के लिए, उन बातों को छोड़कर जो पीछे बीत चुकी हैं। बस इतना ही कहना था आज के थॉट ऑफ द डे को कि जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे अपनी दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करो। कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे आपको बताइएगा ज़रूर, और एंजॉय कीजिए पीके फिल्म से शांतनु यानी कि शान की आवाज़ में ये खूबसूरत रोमांटिक गाना चार कदम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है।

और आप भी अब बस कुछ देर में ही शर्माने वाले हैं। रीजन ये नहीं है कि हम ऐसी कोई बात करेंगे जिससे आप ब्लश कर जाए, लेकिन हाँ कुछ ऐसा आपको अब हम बताने जा रहे हैं जिससे आपको लगेगा कि आए भैया ऐसा भी होता है क्या, इससे अच्छा था तो इसकी ही टिकट कैंसिल कर देते, बाकी लोग तो बच जाते ना। अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि कुछ देर में ही आपका यह भ्रम टूटने वाला है। चलिए पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने कभी सबसे अनलकी टू लकीएस्ट पर्सन से मुलाकात की है, यानी कि जिसका लक इतना अच्छा है कि वो जहाँ जाता है वहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आप क्या कहने वाले हैं? हाँ, यूँ तो हम सब कहते हैं कि यार हमारा ही लक बहुत ख़राब चल रहा है, हम कुछ भी करते हैं वो एक लाइन एक डायलॉग मारते रहते हैं कि हम कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है एंड ऑल दैट चीज़ें हम कहा करते हैं। अगर यही कहावत किसी की ज़िंदगी में 100% सटीक बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना थोड़ा डरावना। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसा भी इंसान है जिसका खौफ पूरी दुनिया को हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर ट्रेन में बैठते हैं ट्रेन पलट जाती है, बस में बैठते हैं बस पलट जाती है, फ्लाइट में बैठते हैं फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि वही भाई साहब खाली अकेले निकल आते हैं, बाकी सबका तो पता नहीं क्या होता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1962 से। एक ट्रेन बर्फीले पानी में चली गई, 17 लोगों की मौत हुई, लेकिन जिस डिब्बे में ये महाराज बैठे थे उस डिब्बे में सभी लोग मारे गए स्टिल इनको छोड़कर। ये चुपचाप टूटे हाथ से भी उस बर्फीले पानी से तैर के बाहर निकल आए। लोगों को लगा चलो जाने दो हादसा ही तो है। इसके बाद 1963 में इन्होंने एक प्लेन लिया जिसमें बैठकर ये जा रहे थे। कमाल की बात ये है कि जिस प्लेन में ये बैठे थे वही प्लेन क्रैश हो गया और उसमें भी बाकी लोग मारे गए, बस ये भाई साहब निकल आए। ऐसा भी हो सकता है, कौन है ये बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो यानी कि आपके अपने मॉर्निंग वाले स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी मॉर्निंग जॉकी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और हम जिन भाई साहब की बात कर रहे हैं उनका नाम है प्राणे सलाक। ये दुनिया के सबसे लकी टू अनलकी पर्सन माने जाते हैं। लकी इसलिए क्योंकि ये जहाँ भी होते हैं कुछ भी होता है कहीं भी हादसे हो जाए ये खुद तो जिंदा बच जाते हैं, और अनलकी इसलिए कि इनके साथ जो होता है उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। 1962 में इनकी कहानी शुरू होती है और 1962 में जब पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पहला हादसा इनके साथ 1962 में ही होता है। ये भाई साहब एक ट्रेन में जाकर बैठते हैं और ट्रेन चलते चलते चलते चलते बर्फीले पानी में उतर जाती है। हवा में उड़ने की ज़रूरत होती है ट्रेनों को, पानी में जाने की ज़रूरत होती है पता नहीं। फिलहाल पानी में उतरने के बाद बाकी लोग तो, क्योंकि बर्फीला पानी था तो बाकी लोग तो ठंड से जम के उनकी डेथ हो चुकी थी, बट ये भाई साहब वहाँ टूटा हाथ लेकर भी तैरते हुए बाहर निकल आए। लोगों को लगा चलो जाने दो ऐसा हो जाता है, कभी कभी इत्तफाक हो जाते हैं। लेकिन उसी के अगले साल 1963 में इन्होंने प्लेन के अंदर बैठे हवा में था और प्लेन का दरवाज़ा गायब हो गया, दरवाज़ा ही टूट गया जिसकी वजह से विमान था वो क्रैश हो गया और उसमें भी लोग मारे गए। लेकिन ये जहां गिरे वो एक गद्दे के ऊपर थे, उनकी मतलब वो आसमान से टपके गद्दे पर गिरे और उनकी जान बच गई, लेकिन बाकी लोग जो गिरे उनकी जान चली गई। इसके बाद यही सिलसिला थमा नहीं। बात आई 1966 की, जब इनके अंदर एक और ख्याल आया कि चलो क्यों ना प्लेन हटाओ ट्रेन हटाओ बस में ट्रेवल करते हैं। बस फिसल के एक नदी में जा गिरी जिसमें भी 4 से 5 लोग मारे गए, लेकिन ये भाई साहब फिर से तैर के बाहर निकल रहे। इन्होंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही नहीं है, जैसे ही मैं किसी पब्लिक चीज़ों में बैठता हूँ ना कोई मेरे साथ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मैं नहीं जाऊँगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कार में बैठते। तो 1973 में और 1970 में इन्होंने 2 अलग अलग सालों में 2 अलग अलग कारों पर बैठने का इन्हें मौका मिला और वो कार

चलते चलते चलते चलते उसकी इंजन की खराबी हो गई, जिसमें आग लग गई, दोनों कारों में ब्लास्ट हो गया। लेकिन लेकिन लेकिन कार में ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, ये भाई साहब तो फिर से निकल आए। इसके बाद सड़क दुर्घटना इनके साथ हुई 1995 में, जब इन्हें एक बस ने टक्कर मार दी, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, हल्की सी बस चोट आई थी। पहाड़ पर घूमने गए थे, तो पहाड़ पर घूमते घूमते ये 300 फीट की ऊंचाई से 300 फीट गहरा नीचे गिर गए खाई में, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सीट बेल्ट बांधे हुए थे और ये फिर से बच गए। तो लगातार इतने हादसे झेलने के बाद अब कुछ इनके साथ जो अच्छा हुआ था वो हुआ था 2003 में, जब इन्होंने अपने 73 बर्थडे पर 8 लाख यूरो, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए आते हैं, वो जीते थे। ट्रेन हादसा, बस हादसा, विमान दुर्घटना, कार में आग लगना, सड़क दुर्घटना, खाई में गिरना, ये सारी चीज़ें इनके साथ हो चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये भाई साहब बाहर निकल आए। इसीलिए इन्हें लोग पूरी दुनिया में द लकीस्ट अनलकी पर्सन के नाम से जानते हैं, यानी कि इनका लक तो इनका बहुत साथ देता है, लेकिन ये जहां होते हैं वहां कुछ ना कुछ बड़ा होता है। अब आप बताइए, क्या आप ऐसे किसी के पास जाना चाहेंगे जो वर्ल्ड फेमस हो अपने लकी टू अनलकी किस्मत के लिए, फॉर्चून के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इनके बारे में जान के कैसा लगा प्लीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, आपके लिए पेश करते हैं एक खूबसूरत सा गाना, रिमेक सॉन्ग है मेरे नसीब। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में, और मैं हूँ आपकी आरजुनती, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो भैया क्या है, अब एक टेस्ट ले लिया जाए? नहीं, टेस्ट वो वाला नहीं जो हम स्कूलों में देते हैं, टेस्ट वो जो आपको बहुत कुछ बताने वाला है खुद के बारे में, स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ प्लस मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। अक्सर हम लोगों को कमज़ोर समझ लेते हैं, स्पेशली वो लोग जो बात बात पे रिएक्ट करते हैं, रोने लग जाते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि यार तुम तो बहुत कमज़ोर हो। बट क्या सच में ऐसा होता है कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इस बात से नापी जा सकती है कि आप किस बात पर रोते हैं, किस बात पर नहीं रोते हैं? एक्चुअली हम लोगों ने ना हर एक चीज़ के लिए स्टेरियोटाइप सेट कर रखे हैं। कोई काला है तो ये तो रंग ही ख़राब है, कोई गोरा है तो वो बहुत अच्छा है, लड़का है तो वो रो नहीं सकता, लड़की है तो वो बहुत गुस्सा नहीं कर सकती, वो बहुत तेज़ हंस नहीं सकती। हर एक चीज़ के हमने ना कैटेगरी सेट कर रखी है, लेकिन नेचर ऐसे काम नहीं करता है। नेचर तो भैया अपनी ही धुन में रहता है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करने की कोई इंसान भी नहीं मिलता, ना कोई वक्त मिलता है, ना कोई मिलती है जगह। तो आइए एक टेस्ट लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपसे कुछ सवाल हम करेंगे और उन सवालों के जवाब आप मुझे अपने चैट बॉक्स में बताने वाले हैं, और उसके बेसिस पे पता करते हैं कि आप अपने मेंटली स्टेट से, यानी कि आप अपने दिमाग से कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। यूँ तो फिजिकल स्ट्रेंथ हम जाकर जिम में बना ही लेते हैं, भारी भारी डंबल्स उठा लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, लेकिन जब मेंटल स्ट्रेंथ की बात आती है तो हम ऑलमोस्ट पीछे रह जाते हैं, और कई बार सबसे कमज़ोर दिखने वाला इंसान ही दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आता है। तो वो सवाल कौन से हैं, तो आइए आपसे सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके लिए है कि क्या आपको गुस्सा आता है? और ऑफ कोर्स आप कहोगे ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस गुस्से में आप रिएक्ट करने से पहले कुछ देर की खामोशी लेते हैं, यानी कि चुप होते हैं, पॉज लेते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में, यानी कि आपके चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा क्या आपने कभी किसी को किसी काम के लिए ना बोला है और उसके बाद आपको रिग्रेट ना हुआ हो? क्योंकि हम जब भी किसी से ना कहते हैं तो 50 तरीके के बहाने या 50 तरीके की सफाई देना शुरू कर देते हैं। दोस्त ने पूछा है आना है और हमने कह दिया नहीं। हो सकता है रीज़न ये हो कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, या तुम्हारे साथ मुझे बैठना ही पसंद नहीं है क्योंकि आपकी वाइब मेरे साथ मैच नहीं हो रही है। बट हम 50 बहाने और चिपकाने लग जाते हैं, ओ नहीं मेरे पास बहुत काम है, डेडलाइंस पड़ी हुई हैं, घर पे बहुत काम। ये दिखाता है कि आप जब किसी से ना बोलते हैं तो आपको अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा होता है। कोई आपसे मदद मांग रहा है और आपको पता है ये मदद आपको नुकसान कर सकता है, इसके बाद भी कई बार आप कर देते हैं, और कई बार ना बोलने के बाद आपको रिग्रेट फील होता है, गिल्ट होता है, पछतावा होता है कि यार कर देनी चाहिए थी ना मदद, मना क्यों किया मैंने। अगर आप इस कैटेगरी में से एक हैं तो चैट बॉक्स में बताइए, और अगर आप उनमें से एक हैं जो ना बोलते हैं बट साथ में कोई सफाई नहीं देते, साथ में उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता, तो बताइएगा कि आप दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, ना बोलने के बाद गिल्ट वाले या ना बोलने के बाद चल वाले कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी बाउंड्री को सेट करते हुए ना बोला है। इसके अलावा क्या जब आपको कोई वैल्यू नहीं देता है तो आप उस वक्त क्या करते हैं, क्या उनके पीछे भागते हैं या आराम से चले जाते हैं? कई बार हम एक महफिल में होते हैं और हमें लगता है यार हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, उस दौरान आप क्या कर रहे हैं? या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो शामिल है लेकिन आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे पा रहा है या नहीं देता है किसी भी कारण, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ऊपर रखते हैं या फिर उस रिश्ते को ऊपर रखते हुए उस इंसान के पीछे पीछे भागते हैं? क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिएक्ट की जाएगी, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट की जाएगी, हम उसी के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो इसमें मेल एंड फीमेल कुछ भी नहीं है, और ये हर इंसान के पीछे जो आगे आगे भागता है, जो हमें भगाने की कोशिश करता है, हमको दूर रखने की कोशिश करता है, हम सबसे ज़्यादा उसी के करीब जाना पसंद करते हैं। तो क्या आप भी उनमें से एक हैं? या कोई इंसान अगर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप उस सिचुएशन से, उस जगह से जाना पसंद करते हैं? इसके अलावा क्या आप वहाँ पर एडमिट कर पाते हैं कि कहाँ आप गलत हैं? सॉरी हम दूसरों से बुलवा लेते हैं, लेकिन क्या हम खुद कभी सॉरी बोलते हैं?
अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यानी कि आपके अपने चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आप बिना किसी के भी खुश हो सकते हैं? क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें खुश रहने के लिए आसपास भीड़ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो लोगों के चले जाने से परेशान हो जाते हैं, जो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो अकेले तो नहीं रह जाएंगे। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेलेपन को एंजॉय करना पसंद करते हैं, खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं, जिन्हें हम सॉलिट्यूड कहते हैं। बट वहीं पर कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। आप इन दोनों की कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आपको भी खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, या आप अपनी कंपनी इंजॉय कर पाते हैं? इसके अलावा जो चीज़ें, जो लोग आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिन बातें आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्या उन सिचुएशंस को आप लेट गो कर पाते हैं या नहीं? 90% ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई सिचुएशन है तो हम उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि सिचुएशन को पकड़े रहने से वो ठीक हो जाएगी। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, हम उस पास्ट को भी दोनों हाथों से कस के पकड़ रखे हैं। क्यों? एग्जैक्ट रीज़न हमें खुद भी नहीं पता होता है। कोई आकर कहता भी है तो हम कह देते हैं इतना आसान नहीं है चीज़ों को छोड़ देना। बट क्या सच में, क्या सच में ऐसा है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता, उनको पकड़ के बैठना ही एक आखिरी रास्ता होता है? या इसके अलावा उसको छोड़ देकर आगे बढ़ जाना, लाइफ में और बेहतरीन चीज़ें करना, ये आपके ऑप्शन में आता है? अगर इन सारे सवालों का जवाब यस आता है तो कमेंट बॉक्स में यानी कि ऑफकोर्स चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस कैटेगरी से अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि नहीं जा रहे, आप लेट गो नहीं कर पाते हैं, आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को जाने नहीं दे पाते हैं, आपको खुश रहने के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो भी चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस ब्रेक के उस बार आके बताते हैं कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ किस लेवल पर है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आशुनती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 11.69.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुना में। आपके साथ मौजूद है आपकी अपनी मॉर्निंग रेडियो चौकी उन्नति, और ऑफ कोर्स वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, आपके आए मैसेजेस को देखने का।

मैसेजेस आपने भेजे हैं मुझे चैट बॉक्स में, जो कि मिलता है आपको एप्लीकेशन पर, जहाँ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर ऐप स्टोर से 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली के नाम से। अनोखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग मैम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अनोखी जी, आप बताइए आप कैसी हैं? आपको भी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद इमोजीज भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखा है सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। महेंद्र दीपन जी जुड़े हैं राजस्थान से, लिख रहे हैं सुप्रभात गोंडा और आज श्रीमती मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं एकदम मज़े में हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज के इस शानदार शो में मेरी यानी महेंद्र दीपन की भी हाजिरी लगा लीजिए। जी हाँ, आपकी हाजिरी लग चुकी है। और ओके, नवसारी गुजरात से काम के बीच सीधा आपके शो से जुड़ गया हूँ, वैसे मेरा अपना गांव रूड़ राजस्थान में है। ऑल राइट, तो भैया आज आप दो दो जगह मौजूद हैं, मतलब राजस्थान में तो आप मौजूद रहते ही होंगे, आपकी यादें आपकी बातें रहती हैं, और इस वक्त गुजरात में आप मौजूद हैं। ऑल राइट, चैट बॉक्स में मौजूद सभी प्यारे श्रोताओं और आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में सही राह दिखाने, कुछ ना कुछ सिखाने वाले हर व्यक्ति को आज मेरा नमन है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज मेरे लिसनर्स के लिए था, आप सभी के लिए, आप सभी को दिया है उन्होंने प्यार भरा नमस्ते, तो आपकी तरफ से मैं ही बोल देती हूँ दीपन जी, मेरे लिसनर्स भी आपको वेलकम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको भी गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा आपकी शानदार आवाज़ और बेहतरीन गानों के साथ सुबह की शुरुआत हो जाए तो पूरा दिन बन जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अनोखी जी लिख रही हैं, लवली मॉर्निंग शो, क्यूट थॉट ऑफ द डे, थैंक यू सो मच। एंड यस मैम लिखा है, एग्री किया है आपने मेरी बातों से, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता दुबे जी ने फिर से सुप्रभात लिखा है, सुप्रभात टू यू। इसके बाद उन्होंने भेजे हैं बहुत सारे इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड वह सॉन्ग लिखा है अनोखी जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं आवाज़ विकास से, लिख रहे हैं उन्नति जी गुड मॉर्निंग, आप अपने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना, फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, रिश्ते हो, या फिर आपके जीवन में कोई अच्छा दोस्त या इंसान हो। भाई मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप सही तरीके से सही लम्हों में सही चीज़ें खर्च नहीं करते हैं तो बेशक ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपकी बात एकदम सही है, कभी कभार इन चीज़ों को संभालना जो हमारे पास है वक्त रहते संभालना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वक्त के बाद जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद हमें सिर्फ पछतावा रहता है और हम सोचते हैं कि क्यों उस वक्त नहीं संभाल पाए थे हम। एंड विभू जी ने लिखा है, मैं 50% यस, 50% नो, ओके, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी 50-50 पर है, यानी कि 50-50 है, आप थोड़े इमोशनल टाइप के इंसान हैं। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, उन्नति जी इस संगीत को मैं 51% लाइक करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं। जी बेशक, मैं आपकी इस भावना को समझ सकती हूँ, दिल अक्सर हमारी वही चीज़ें चाहता है जो असल ज़िंदगी में नामुमकिन होती हैं, या फिर जिसका दिमाग मना कर रहा होता है कि नहीं भैया ये सब ना करो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बट वही है ना, ज़िंदगी के कुछ फैसले हमारे दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं, और ये 51% जो आपने कहा ये आपका दिमाग ही है, बाकी दिल है वो तो किसी का भी नहीं मानता, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेश जी ने दोबारा से लिखा है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। तो भैया दोस्तों, अभी तक हम आपको गाने सुना रहे थे, लेकिन अब वक्त है आपसे एक सवाल करने का कि अगर आज का दिन आपके मूड के अकॉर्डिंग होता तो आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते। बॉलीवुड का सॉन्ग आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में, कि अगर आज का दिन आपके मूड के अकॉर्डिंग चले, जो सुबह उठकर ही आपका मूड बन चुका है, तो वो गाना कौन सा होने वाला था, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंजॉय कीजिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में हवाएं, मिलते हैं इस गाने के उस पार, लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बतानी है जिनकी जिंदगियां आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करने वाली हैं आज के गुड मॉर्निंग गोंडा में। सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन, विद योर मॉर्निंग रेडियो चौकी उन्नति।

क्या बात है भाई, किशोर दा लता जी की आवाज में आपने इस बेहतरीन गाने को एंजॉय किया। और इसी एंजॉयमेंट के साथ वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम पर ऑफ कोर्स। तो भैया दोस्तों, हमने बात की थी जाने से पहले कि कुछ ऐसे लोगों की जिंदगी का फलसफा आपको सुनाने जाएंगे अब हम इसके बाद, जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करने वाले हैं। सुनने में आया है कि जहां भारत में इतना कुछ चल रहा है, वहीं पर एक ऐसे भी इंसान है, एक ऐसा भी शख्स है जिसने पहला एक मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये ऐसे वैसे इंसान नहीं है भैया, इन्होंने सब्जी भी बेची हुई है, ई रिक्शा भी चलाया है, प्लस इन्हें पोलियो भी था। जी हाँ, जहाँ किसी बीमारी को हम देखकर ये सोचते हैं कि इंसान अब कमज़ोर हो चुका है, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, भविष्य कुछ नहीं है, और शायद ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए, किसी के हाथ को किसी के पैर को देखकर हम उसे जज कर लेते हैं, वहीं पर एक ऐसा भी शख्स है जिसको पोलियो था, जिसकी वजह से उनकी नीचे का धड़ पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया, उनका सिर्फ अपर बॉडी ही अच्छे तरीके से विकसित हुई एक एडल्ट की तरह, लेकिन पैर अभी भी बिल्कुल छोटे छोटे से रह गए। इसके बाद भी उन्होंने भारत के लिए 190 किलो का वज़न उठाया, और वज़न उठाने के बाद उन्होंने भारत को पहला मेडल जिताया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया है। वो हैं कौन, चलिए उनके बारे में बात कर देते हैं। और ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कि इनकी कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं लगती। बिहार के नालंदा ज़िले में रहने वाले 28 वर्षीय खिलाड़ी ने गरीबी, पोलियो, आर्थिक तंगी जैसी तमाम चुनौतियाँ देखी हैं, और इन सबको देखने के बाद भी इन सबको पीछे छोड़ते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शुक्रवार को उन्होंने पुरुषों की हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में लगभग 190 किलो का वज़न उठाया था। 190 किलो का वज़न, आप समझ रहे हैं ना, छोटा मोटा वज़न नहीं है, किलो ना कि ग्राम। ग्राम तो बहुत ही कम आ जाता है, लेकिन कोई इंसान जो पहले ही पोलियो से ग्रसित हो और उसको लोग हमेशा ताने देते हो कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बस खाली सब्जियां बेचो, तुम्हारे पैर कितने छोटे हैं, तुम्हारा ये कितना वो है, हज़ारों तरह का मजाक उनका रोज़ डेली बेसिस पे उड़ाया जाता था। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेट पर आर्थिक तंगी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सब्जी भी बेची है, कोरोना के टाइम पर ई रिक्शा भी चलाया है, और इसके बाद भी लोगों ने उनका मजाक बनाना बंद नहीं किया। एक तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, क्यों हम किसी का मजाक बनाते हैं? क्या अगर कोई हमसे कम दिखता है या हमारी तरह नॉर्मल नहीं दिखता है तो उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं होता है? एक तो सबसे बड़ा सवाल यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर सामने आ जाता है कि क्यों हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में पीछे होता है, वो बैकबेंचर होता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई गेम्स में अच्छा नहीं है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई हमारे घर में है और वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है तो हम उसका मजाक बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम हर दूसरे इंसान का मजाक बनाकर खुद को सुपीरियर डिक्लेयर कर देते हैं? इवन किसी ने बहुत खूब कहा है कि इस दुनिया में बनी हुई हर एक चीज़ जो कि मदर नेचर की है, यूनिवर्स की है, उसमें भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फालतू हो। इवन कई बार मेरे पास ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई टैलेंट ना हो। हर कोई किसी ना किसी टैलेंट से ज़रूर नवाजा जाता है, वो अलग बात है कि वक्त रहते आप उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, एक वक्त के बाद वो अचानक से सामने आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आ पाता है। इसीलिए जब इनका मजाक उड़ाया जा रहा था तो हो सकता था इनकी भी मोटिवेशन जो होती वो ख़त्म हो जाती, डीमोटिवेट हो जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। जो इंसान अपने इरादों से मजबूत होता है, भले ही उसका शरीर उसका साथ ना दे, फिर भी वो कुछ ऐसा कर दिखाने की हिम्मत रखता है जो दूसरे सोचते भी नहीं। जब इन्होंने कहा होगा मे बी किसी से कि मुझे पावर लिफ्टिंग में जाना है, तो लोगों ने इनका भी मजाक बनाया होगा ये कहकर कि अरे तुम्हारे तो पैर भी नहीं है, पावर लिफ्टिंग करोगे कैसे, 190 किलो वज़न उठाने के लिए आपके पैरों का सही होना भी तो ज़रूरी है क्योंकि पैर ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भैया। लेकिन इस पूरी चीज़ों को सुनने के बाद, सारे मजाक को सुनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और इनका नाम था झंडू कुमार। जब सिर्फ 5 साल के थे तभी इनको पोलियो ने शारीरिक रूप से कमज़ोर बना दिया था, लेकिन इन्होंने पोलियो को अपनी कमज़ोरी कभी बनने ही नहीं दिया।
परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी, घर का गुजारा ही नहीं हो पाता था। घर का गुजारा करने के लिए ये सब्जी बेचा करते थे। कोविड-19 के वक्त पर इन्होंने ओवरब्रिज निर्माण के कारण परिवार की सब्जी बेचने की दुकान भी बंद हो चुकी थी, आमदनी का कोई जरिया ही नहीं था। और ऐसे में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इतनी सारी चीज़ों को झेलने के बाद इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया मेंस पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में, और वहाँ पर जाकर इन्होंने भारत का नाम बनाया। जी मैं आपको बता दें, पावर लिफ्टिंग में भारत ने पहली बार मेडल जीता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, और मेरी तरफ से इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी कमज़ोरी आपकी कमज़ोरी नहीं होती है अगर आप अपने इरादों से मजबूत होते हैं, अगर आप अपने दिमाग से मजबूत होते हैं। हो सकता है कि सिचुएशन, वक्त और बहुत सारी चीज़ें, आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके घर वाले, इवन कभी कभार आपका खुद का दिल आपको ये कहना कह दे कि आपसे नहीं होगा, इसके बाद भी अगर आपके इरादे मजबूत हैं, खुद पर थोड़ा भी भरोसा है, तो आप वो भी कर दिखाते हैं जो दूसरों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या दूसरे इमेजिन भी नहीं करते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा टफ मोमेंट चल रहा है तो कोई बात नहीं, वक्त है, वक्त गुजर जाएगा और गुजरते वक्त के साथ ये आपको और भी मजबूत बनाकर जाएगा। इनकी कहानी आपको कैसी लगी, चंडू कुमार की कहानी आपको कैसी लगी, क्या आप इनसे थोड़े भी इंस्पायर्ड हुए हैं, तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आइए चलते हैं, एंजॉय करते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, मिलते हैं और भी कहानियाँ लेकर, और भी बातें लेकर। और आपको हम बताने जा रहे हैं इसके बाद कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सोचते तो हैं कि बनी थी फीमेल्स के लिए, हमें ऐसा लगता है कि ये लड़कियों का सामान है, बट एक्चुअल में ये बना तो किसी और के लिए था। किसके लिए था बताते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो आपने इंजॉय किया बाजीगर फिल्म से। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, और शायद आपने पढ़ी भी हो, शायद ना भी पढ़ी हो, लेकिन चेहरा पढ़ने का हुनर जिसके अंदर होता है ना भैया, जिंदगी बड़ी कमाल की होती है उनकी। पता नहीं क्यों दूर से देखे गेस कर लेते हैं कि ये इसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके दिमाग में वो चल रहा है, और ये स्पेशली ये टैलेंट हर किसी के अंदर होता है। आंखें देख कर पता कर लेते हैं कि इंसान के दिलो दिमाग में किस बात की उलझन है। फिलहाल स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोना में। मैं हूं आपकी मॉर्निंग जॉकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में। और ऑफ कोर्स अब हम बात करने जा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो अभी तक आपने सोची होंगी कि किसी फीमेल के लिए बनाई गई है, यानी किसी महिला के लिए बनाई गई है, महिला मंडली के लिए बनाई गई है, लेकिन यह उल्टा हो चुका था। हमारे इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन किया गया है जो देखने में तो लगती है कि ये फीमेल के लिए है, यानी कि महिलाओं के लिए है, बट असल में उनका इन्वेंशन किया गया था पुरुषों के लिए, यानी आप लोगों के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आज हम बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल निगाहों से देखते हैं, साइड आइज करके, मतलब आंखें तिरछी करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए नहीं है बॉस, बट एक्चुअल में वो चीज़ें आप ही के लिए बनाई गई थी। वो अलग बात है कि समय रहते महिलाओं ने उस पर कब्जा कर लिया और अब आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। तो शुरू करें, चलिए भाई शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले मिलाते हैं उस चीज से जिसको ग्रीक में कर दिया गया है बैन, जो है लड़कियों की पहचान, लड़कियों की पसंद, और इसको पहनने के बाद लड़कियां लंबी लगती है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं हाई हील्स। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि हाई हील्स लड़कियों की ही तो होती है, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना जाता है कि हील्स कभी भी लड़कियों के लिए बनाई ही नहीं गई थी, ये बनाई गई थी पुरुषों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घोड़े पर रहते हैं, जो युद्ध करने जाते थे, या फिर वो लोग जो खड़े होते थे ऐसी जगह पर जहाँ पर मीट वीट का काम होता था, जो सैनिक घोड़े पर बैठकर तीर चलाते समय अपने पैरों से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, तो उन्हें हाई हील्स पहनाई जाती थी। क्योंकि भैया घोड़ा आप जानते ही हो कितना ऊंचा होता है, उस पर बैठकर तीर चलाना, बैलेंस बनाए रखना ताकि घोड़ा इधर उधर ना भागे, उस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ करता था। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही ऊंची एड़ी वाले जूते तैयार किए गए, जिसको आजकल महिलाओं ने अपने कब्जे में ले लिया और कह दिया कि ये सारे लड़कों के शौक थोड़ी ना होते हैं, तो लड़कियों के लिए होते हैं। और अगर कोई लड़का आपको हाई हील्स में दिख भी जाता है तो उसका मजाक बना दिया जाता है कि ये तो महिलाओं की चीजें हैं, ये आपके पास क्या कर रही है। बट एक्चुअल में ये सोल्जर्स के लिए बनाई जाने वाली एक चीज थी, सोल्जर्स के लिए आराम देने वाली चीज थी, और ये बनाया गया था पर्शिया में, जिसको आज के वक्त में हम ईरान कहते हैं। ईरान में इसका इन्वेंशन किया गया था 10वीं शताब्दी में, और उस वक्त घुड़सवारों के लिए, स्पेशली सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। 17वीं शताब्दी में यूरोप के राजाओं ने और कई बड़े बड़े रईस इंसानों ने, ताकतवर जिनके पास रुतबे हुआ करते थे, उसे एक निशानी के रूप में रखने लगे। जो चीज की शुरुआत सोल्जर्स के बैलेंस से हुई थी, आगे जाकर वो राजाओं ने अपने कब्जे में ले ली और कहा कि ये तो रुतबे का, यानी कि हमारे स्टेटस का एक सिंबल होता है, क्योंकि आप इसको पहनने के बाद लंबे दिखते हैं, और जब आप लंबे दिखते हैं तो दूसरों से ऊंचे दिखते हैं, तो आपका पद भी ऊंचा लगता है। तो इन लोगों ने पहनना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे धीरे। जब फीमेल्स ने देखा कि लड़कों के अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया है और उसको हाई हील्स पहनने के बाद ही अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊँचा समझने लगे हैं, तो क्यों नहीं हम भी पहनते हैं। भाई ये चीज़ जो थी ना, ये शुरुआत से चली आ रही है, जो चीज़ लड़के ज़्यादा करने लगे, लड़कियों ने भी उसमें हिस्सेदारी मांग ली, और ये हाई हील्स लड़कों से छीन कर अपने पास रख लिया, और अब आजकल लड़कियां पहन के घूमती हैं, वो भी इतनी महंगी महंगी हाई हील्स, जिसका सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाते हैं कि ओए मेरी मैया, इतना भी महंगा आता है का। इसके अलावा बात करते हैं उस रंग की जिसको हमने डेडिकेट कर रखा है लड़कियों के नाम से। जी हाँ, आपको भी पता होगा एक ऐसा रंग आता है जिसको हम कहते हैं कि ये तो फेमिनिन कलर है, ये तो लड़कियों वाला कलर है, ये तो नाजुक रंग है, और उसको हमने बता रखा है पिंक कलर, यानी कि गुलाबी रंग। लेकिन लेकिन लेकिन जिसको हम लड़कियों और महिलाओं से जोड़ते रहते हैं, एक्चुअल में वो कभी लड़कियों के लिए बना ही नहीं था। हम आपको बता दें 20वीं सदी में लगभग 1900 के दशक की शुरुआत में गुलाबी रंग लड़कों के लिए माना जाता था, क्योंकि
इस रंग को मजबूत रंग प्लस मर्दाना रंग के रूप में देखा जा रहा था, जबकि जो नीला रंग था, जो आजकल के लड़के बोलते हैं कि ओ पिंक कौन पहनता है, हम लड़के हैं और हमारा ब्लू कलर होगा, और हम पूरी दुनिया में लड़कों के नाम पर सिर्फ नीला रंग देखते हैं, और जहाँ जहाँ लड़कियों का जिक्र आता है, फिर चाहे वो कोई मिशन हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे कोई शोरूम हो, हर जगह पर जो पिंक पिंक पिंक पिंक कर देते हैं वो लड़कियों को डिलीवर कर दिया जाता है, जहाँ ब्लू ब्लू होता है वो लड़कों का कर देते हैं। इवन कई बार लड़के पिंक कलर की शर्ट तक लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो लड़कियों के लिए ही था स्पेशली, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1900 के दशक में ये स्पेशली लड़कों के लिए बनाया गया था। माना जाता था कि गुलाबी रंग मर्दाना है, गुलाबी रंग बहुत मजबूत है, नीला रंग बहुत नाजुक है, और इसीलिए लड़कियों ने तय कर लिया ऐसे कैसे नाजुक है, अगर तुम्हारा गुलाबी रंग मजबूत है ना तो ये भी हिस्सेदारी में हमारे ही आएगा, हम तुमसे ये रंग भी छीन लेंगे। और उन्होंने इस रंग पे भी अपना कब्जा जमा लिया, अपने झंडे लगा दिए कि ये तो फेमिनिन होता है। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, 1900 से जैसे ही 2000 के बीच में आए और हमने कह दिया कि ना ना ना ना ना बबू ये तो सिर्फ लड़कियों का रंग है, और लड़कियों ने कह दिया जी हाँ गुलाबी तो हमारा ही रंग है। हालांकि इतिहास इसके पीछे भले ही किसी को ना पता हो, लेकिन हाँ कब्जा बराबर किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम स्टॉकिंग्स की। जी हाँ, वो स्टॉकिंग्स जो आजकल आपको लड़कियों के पास ही दिखती है, वो भी लड़कों के लिए ही बनाई गई थी। ये बात सुनने में बड़ी हैरान कर देने वाली बात लगती है कि टाइट मोजे जो होते हैं, जिनको हम पहन के आजकल सिर्फ लड़कियां दिखाई पड़ती हैं, वो एक्चुअल में पुरुषों के लिए था, वो भी वो पुरुष जो बहुत रईस और बहुत ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन हर एक ताकतवर चीज़ जो कुछ ज़्यादा ही पावर के साथ दिखाई गई है, सिंबलाइज की गई है, महिलाओं ने इसको तुरंत अपने कब्जे में लिया है और कहा कि तुम ही क्यों पावरफुल दिखोगे, हम भी पावरफुल दिखेंगे और हम भी वही चीज़ें पहनेंगे। और उन लोगों ने पावर को ऐसा अपने कब्जे में लिया कि जिनके लिए स्पेशली बनाया गया था उन्होंने उस चीज़ को ही छोड़ दिया कि जाओ ये पावर आप ही के पास, ठीक है ये नाजुक चीज़ें हैं, इनको हम नहीं पहन सकते। इसके अलावा बात कर लेते हैं डेनिम जैकेट्स की। वो जैकेट जो आजकल आपको पेंटर्स के पास दिख जाते हैं या फिर यूं ही फैशन में चलते रहते हैं, वो भी लड़कों के लिए ही बनाए गए थे। कमाल की बात है ना। जी हाँ, वो भी हमेशा लड़कों के लिए ही बनाए गए थे, स्पेशली वो लड़के जो मीट हाउसेस या फिर कारपेंट्री का काम करते हैं, यानी कि जिनके पास औजार रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, तब उन्हें एक तरह की डंगरी बनाकर दी गई थी जिसके आगे पॉकेट था, अंदर शर्ट होती थी, उससे उसके कपड़े गंदे नहीं हुआ करते थे। ये चीज़ भी महिलाओं ने अपने कब्जे में ले लिया कि ये भी हमारा ही है, लाओ दो दो दो, इधर भी दो इधर भी दो। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके छोटे से हैंड बैग की। हैंड बैग, जी हाँ, यानी कि पर्स, जिसको आजकल पकड़ने में आप शर्मसार हो जाते हैं कि नहीं यार पर्स लेकर कैसे लगेंगे यार, हम लड़के हैं हमको पर्स लेके क्या ही लगेगा। ये भी पुरुषों के लिए ही बनाए गए थे, ये भी कभी महिलाओं के लिए बनाया ही नहीं गया था। हम आपको बता दें, प्राचीन काल में और मेडिवल यूरोप में पुरुषों ने अपनी बेल्ट और कमर से बांधे हुए छोटे चमड़े और कपड़े के पाउचेस बनाना शुरू कर दिए थे, जिसमें वो अपने कीमती सामान रखते थे, सिक्के रखते थे, जड़ी बूटियां रखते थे, औजार रखा करते थे, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना होता था। अब हर एक चीज़ तो अपनी पीठ पर नहीं लाद सकते ना, ये स्पेशली अगर आप एक रुतबे वाले इंसान हैं, आप स्ट्रांग मैन हैं, एक औहदा है आपके पास, तो हर एक चीज़ आपके कंधे पर तो शोभा नहीं दे रही है। इसीलिए यूरोप में उन लोगों ने बेल्ट के आसपास एक छोटा सा पाउच टांगना शुरू कर दिया। महिलाओं ने देखा कि ये तो बड़ी काम की चीज़ है बाबा, इसमें तो बहुत सारी चीजें जा सकती हैं, तो क्यों ना हम भी इसको कब्जे में ले लें। और ऐसा कर करके उन्होंने इस चीज को पर्स का नाम दे दिया। वो जो हैंडबैग आजकल लड़कियां लेके चल रही हैं, ये भी लड़कों के लिए ही इन्वेंट किए गए थे। तो भैया अगली बार जब किसी लड़की को हाई हील्स में देखे, पिंक कलर में देखे, हैंडबैग लेकर देखे, तो उसे जरूर ये मत कहिएगा कि ये तो लड़कियों वाली चीज़ है, उसे ज़रूर कहिएगा कि ये तो हमारी ही चीज़ें हैं ना, तो तुम लोगों ने हमसे कब्जे में कर ली है, हैं बताओ बताओ। फिलहाल कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, यूँ तो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ जिन चीज़ों की हम मजाक उड़ाते रहते हैं, वो निकलती तो बिल्कुल अपोजिट है। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आपके थॉट्स क्या हैं, आपका पीओवी क्या है इन इन्वेंशंस को लेकर के, जो स्पेशली पुरुषों के लिए था लेकिन कब्जे में आजकल महिलाओं के, चैट बॉक्स में जरूर से बताएगा। एंजॉय करते रहिए ध्वनि भानुशाली की आवाज़ में, वास्ते स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

अंजी, तो आप एंजॉय कर रहे थे मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, और अगर यही इंतजार किसी जानवर को हो तो कैसा लगेगा? आप भी कभी इमेजिन कर सकते हो कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने बहुत सारे हाथियों की जान बचाई हो और एक दिन खुद जब वो मर गया हो, हाथियों को किसी ने खबर भी ना की हो कि वो इंसान जो अभी तक उनके साथ रहता था, उन्हें खिलाता था, पिलाता था, जिनको जान से मार देने का हुक्म आ चुका था, उसको बचा कर उसने उन्हें जंगल में छुड़वाया था, वही इंसान एक दिन मर जाएगा और तुम्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा। इसके बाद भी वो लगातार 12 घंटे पैदल चलकर उसकी मौत के 2 दिन बाद सब उसी के घर में मौजूद मिलते हैं, और इवन उसकी डेथ एनिवर्सरी पर, यानी कि जिस तारीख में उसकी डेथ हुई थी, उस तारीख पे हर साल फूल चढ़ाने जाते हैं उसको थैंक यू बोलने। भाई, जानवर के साथ ना रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, और ये चीज़ जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कहानी एक और बड़ा एग्जांपल है कि अगर आपको जानवर ने, यानी किसी एनिमल ने आपको अगर अपना मान लिया है तो यकीनन आप बहुत लकी हैं, क्योंकि जानवर किसी को नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। इवन जानवर दुश्मनों को भी नहीं भूलते। मैं आपको बता दूँ, आपकी छत पर रहने वाला वो काऊ काऊ करने वाला कौवा भी आपकी शक्ल नहीं भूलता है। इवन अगर आपने उसके साथ दुश्मनी पाल ली है तो वो दुश्मनी उसके बच्चों तक भी जाएगी, वो उसको भी बताएगा कि यही वो इंसान था जिसने मुझे पत्थर मारा। छोड़ना नहीं उसको, भले ही वो आपको कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों को ये बात ज़रूर सिखाते हैं कि यही एक पर्टिकुलर इंसान है जिससे बच के रहना है, बिकॉज ये हमारा एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है। ये काम जानवर भी कर रहे हैं। तो वो कौन है, चलिए उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका के बहुत मशहूर एक लेखक प्लस जानवरों से बेहद मोहब्बत करने वाले, जिन्हें दुनिया हाथियों का जादूगर समझते हैं, द एलिफेंट विस्पर के रूप में जानते हैं, ये उनकी कहानी है। वक्त था साल 1999 का, जब उन्होंने देखा कि कुछ बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही आक्रामक स्वभाव वाले जो हाथी हैं उनका एक झुंड है, और सरकार ने उनको मारने के लिए आदेश जारी कर दिया है, बता दिया है कि भैया ये हाथी जहाँ मिल जाए वहीं इनको मार दो, क्योंकि ये सारे के सारे हाथी बहुत ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तोड़ फोड़ करते हैं, तबाही लेकर आते हैं, इवन इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि ये बेचारे हाथी, मासूम से हाथी, इनकी जान लेने की बात आ चुकी है, इनको जान से मार दिया जाएगा, जो कि लगभग 12 से 21 हाथी थे, उन्हें मारने की बात आने लगी है, सरकार इन्होंने कहा है कि जहाँ पर ये हाथी दिखते हैं वहीं तुम इनको जान से मार दो, उन्हें ये चीज़ देखा नहीं गया। उन्होंने खुद आगे कदम बढ़ाया और कहा कि इन हाथियों को मैं बचाऊंगा, भले ये बहुत गुस्सैल है, बहुत आक्रामक है, तो क्या होता है, सब में कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है। हर दूसरा हाथी, हर दूसरा जानवर, हर दूसरी जिंदा चीज़ जज्बातों को समझती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन खतरनाक हाथियों को मैं अपने साथ रखूंगा, उन्हें धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, वो इंसानों पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। हम आपको बता दें, वो हाथियों के साथ कई हफ्तों तक रहे, उनसे बातें की, और धीरे धीरे उनके मन का सारा डर, सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, और साथ ही उन हाथियों को उस इंसान से मोहब्बत हो गई, भरोसा हो गया, और उनके इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। वो उन हाथियों के साथ रहते, उनसे बातें करते। अब यूं तो कोई अगर उन्हें देखता हाथियों से बात करते हुए तो पक्का कहता कि भैया तुम हो चुके हो पागल। और उसके बाद कहीं जाकर उन्हें न जाने किन किन नामों से डिक्लेयर कर देते, बट भैया उन्हें तो पसंद था हाथियों से बात करना, और उन्होंने ऑफकोर्स हाथियों से बात भी की, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया। लेकिन साल 2003 में जब इराक का युद्ध चल रहा था, तब इन्हीं हाथियों ने पूरा चिड़ियाघर बर्बाद कर दिया था। उस वक्त दोबारा से इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन भूखे प्यासे खतरनाक हाथियों, बाघों, जानवरों को संभाला, उनकी देखभाल की और उनकी जान बचाई। फिलहाल बात आती है 2 मार्च 2012 की, जब इस इंसान को हार्ट अटैक आ चुका था, यानी कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हो चुकी थी। किसी ने ये बात जंगल तक नहीं पहुंचाई थी कि ये लोग मारे जा चुके हैं, या फिर वो इंसान जो अभी तक आपके साथ था, आपकी जान बचा रहा था, आपसे एक रिश्ता निभा रहा था, अब उसकी जान चली गई है।
पता नहीं कैसे, लेकिन उन हाथियों के पास इस चीज़ की खबर ज़रूर पहुंची। और उन्होंने 12 घंटे ट्रेवल करके, यानी लगातार 12 घंटे चलकर, वो सीधा उस इंसान के घर पहुंचे अपनी श्रद्धांजलि देने, श्रद्धांजलि अर्पित करने। साथ ही साथ हर एनिवर्सरी पर, हर डेथ एनिवर्सरी पर, यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, हर साल उसी दिन सेम तारीख में वो वापस से पहुंचते हैं थैंक यू बोलने, अपने जज्बात दिखाने, श्रद्धांजलि अर्पित करने। और वो इंसान जिसका नाम है लॉरेंस एंथनी, ये वो हैं जिन्हें हाथियों से बहुत मोहब्बत थी और इन्हें कहते हैं हाथियों का जादूगर, यानी कि द एलिफेंट विस्पर्स। अब आप बताइए आपको इनकी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इस गाने के उस पार, आपके अपने चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को लेने, तो सुनते रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा, अपनी आरशी के साथ 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, रेडियो ज्ञानसली पर। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आर्ज्युनति, मौजूद हूं आप सभी के साथ और आपने ट्यून कर रखा है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। वक्त हो चला है आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने का। तो भैया, हमने जो आखिरी मैसेज पढ़ा था वो धर्मेंद्र मोहन जी का ही था, इसके बाद धर्मेश त्रिपाठी जी का था। एंड दिलीप जी ने अपने गाने को भेजा था कि भैया उनका मूड है आजकल चले जैसे हवाएं सनन सनन, जो हमने इंजॉय भी किया था। इसके अलावा धर्मेश त्रिपाठी जी ने अपने गाने की बात बताई थी कि उनका मूड आज किस गाने से मिलता जुलता है। एंड धर्मेंद्र मोहन जी ने भी बताया था। इसके बाद मिश्रा ऑप्टिकल हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। दिलीप जी ने भेजे हैं बहुत सारे इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी ने बताया था कि आर्ज्युनति मैम जी, ये कोई फरमाइश नहीं है, बस आपने जानना चाहा कि अभी मूड कैसा है तो बता रहा हूँ। सच बताओ तो सुबह सुबह मेरा मूड बिल्कुल 90s वाला हो रहा है और दिमाग में बस बाजीगर फिल्म की किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, गाना गूंज रहा है। बस यही हाल है मेरे मूड का आज सुबह, और आपने इस गाने को एंजॉय भी कर लिया। एंड हरीश चंद्र सविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रहे हैं शुभ प्रभा टू यू एंड थैंक्स मैम फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। एंड सविता जी लिख रही हैं चंडू कुमार ने तो कमाल कर दिखाया। जी हाँ, बेशक उन्होंने कमाल कर दिया। एंड उन्नति जी, गाना सुना के मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद थैंक यू आया अगैन, थैंक यू सो मच। आरजे सोनी हमारे साथ जुड़ी हैं गोपालगंज से, लिख रही हैं वेरी वेरी गुड वाली मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। सोनिया तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे, जो लिख रहे थे गुड इवनिंग एवरीवन, फिलहाल के लिए मॉर्निंग हो रही है, लेकिन आपके लिए हम गुड नाइट बोलने वाले हैं बॉस। एंड उसके बाद इमोजीज हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा है हाथी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, जिस दिन गुस्सा आता है अपने मालिक को भी मार डालता है। पिक्चर में सिर्फ होता है हाथी मेरा साथी फिल्म है। जी हाँ, वैसे मेरे बचपन की पसंदीदा फिल्मों में से एक है हाथी मेरी साथी, और मुझे याद है जब ये फिल्म मैंने पहली दफ़ा देखी थी तो मैं इसकी कैसेट भी अपने घर पर ज़बरदस्ती ले आई थी अपने अंकल से कि ये वाली फिल्म तो सिर्फ मेरे घर ही चलेगी क्योंकि आई लव हाथी। फिलहाल ये कहानी जो मैंने आपको लॉरेंस एंथनी की बताई, ये सच है और आप चाहें तो जाकर इसको पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। अभी तक आपके साथ मौजूद थी आपकी अपनी मॉर्निंग चौकी उन्नति, और आपका अगला कार्यक्रम है गांव की गूंज, जिसमें आपको अपने गांव की मिट्टी की खुशबू जरूर मिलने वाली है। एंजॉय करते रहिए, और इसी गाने के साथ अब आपसे चाहेंगे हम विदा। के की आवाज़ में आपको सुनाते हैं सोनिया। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: खाना तो बड़ा टेस्टी था यार, गलका कितना बढ़िया है, पूरी के साथ तो बिल्कुल यम लग रहा है। इतनी टेस्टी स्वीट डिश हमने कभी नहीं खाई। रबड़ी डालकर दही चूरा बता रहे थे। दही में चूरे को कुछ घंटे भिगोते हैं, चीनी डालते हैं और ऊपर से रबड़ी। घर पर सभी ट्राई जरूर करेंगे,
2: सबको खिलाएंगे 100%, सबको बहुत टेस्टी लगेगी। एक बात बताएं, आज तक जितनी शादी में गए हैं सबने बुफे ही खाया है। फर्स्ट टाइम है कि टेबल पर बैठकर सब लोग खा रहे हैं।
1: सब कितने प्यार से खाना खिला रहे हैं, खुद से खाना परसों उसमें वो स्वाद ही नहीं होता जो आज के खाने में था। वैसे बफर सिस्टम में कितना खाना वेस्ट होता है ये हम लोग क्यों नहीं सोचते।

चलो चलो अब बातें बंद करो, शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं। चलो आंगन में वही मंडप है, रात भर खूब ढोलक पर गाने सुनने को मिलेगा और खूब मजेदार गाने होते हैं, ये शादी की रौनक होती है।

0: ऐसे गाने गा रही हैं लड़के वाले बुरा नहीं मानते। सच में किरण दी गाने बड़े मस्त गाती हैं, लड़के वाले खूब इंजॉय कर रहे हैं।
1: हाँ समता मैम, इनको गाली कहा जाता है। पूरे रात की शादी होती है, इन गानों के कारण किसी को नींद नहीं आती है।
2: लगता है पूरा गांव ही यहाँ पर बैठा है। सबके हाथ में एक एक बर्तन क्यों है? इतने सारे लोग रात भर जागेंगे। यह देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा गांव शादी में इन्वॉल्व होता है।
3: गांव की शादी की यही ब्यूटी होती है। सब लोग मानते हैं कि आज गांव की बेटी की शादी है। पहले लड़की के माँ बाप कन्यादान करेंगे, अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगाकर वर के हाथ में देंगे और कन्यादान करेंगे। साथ में आटे के गोले में कुछ धन छुपाकर गुप्त दान किया जाता है, जो केवल लड़की और उसके माँ बाप ही जानते हैं। पर अब वह दहेज जैसी कुरीति बन गई है।
0: कन्यादान की रस्म शुरू हो गई। अब इसके बाद गांव का हर परिवार बेटी की पैर पूजा करेंगे और एक एक बर्तन देंगे। इससे लड़की की गृहस्थी का हर सामान भी पूरा हो जाता है।
1: पर आजकल लोग गहनों से पैर पूजा करते हैं। पहले शादी को जिम्मेदारी की तरह लिया जाता था और पूरा गांव बेटी के घर बसाने में सहयोग करता था। बेटी एक घर की नहीं पूरे गांव की विदा होती थी।

0: जानते हो, सब लोग शादी देखने में बिजी हैं और ये जो सुमन और गौरी का ग्रुप है, उन लोगों ने जूते चुरा लिए हैं। हमने आजी से पूछा जूते क्यों चुराए जाते हैं, तो चच्ची बोल रही है कि थोड़ा हंसी मजाक के लिए, और आजी कहती है कि किसी दूसरे सुंदर लड़की को देखकर दूल्हा भाग ना जाए। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
1: देखो, लड़के के साथ लड़की का गठबंधन हो रहा है और अब इसके बाद पंडित जी शपथ दिलवाएंगे।
2: शादी मतलब ट्रस्ट, प्रेम और एक दूसरे के केयर करना, इन वचनों का बहुत महत्व होता है। जब अग्नि के सामने इतने लोगों के बीच जब लड़का लड़की वचन लेते हैं, तो उन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता रहती है।
3: दोनों लोग हमेशा मर्यादा में रहते हैं, पर हम लोग इसे शॉर्ट में कर जाते हैं। शहर में तभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और तलाक के केस बढ़ते जाते हैं।
0: देखो, लड़की लड़की ने अपने पैर से सिलबट्टे को छुआ। रज्जू दादी इसका मतलब बता रही थी कि जैसे अंगद के पैर टिके रहते हैं, वैसे ही लड़का लड़की अपने जिम्मेदारी पर अडिग रहेंगे। चलो चलो, पेरे स्टार्ट हो गए।

0: पहले चार फेरे में लड़की आगे होती है और लड़का पीछे, यानी घर के काम में लड़की मेन होगी और लड़का अनुसरण करेगा, और इसके बाद लड़का तीन में आगे और लड़की पीछे।
1: इसका मतलब बाहर के कामों में वर मुख्य होगा और लड़की उसका अनुसरण करेगी।
2: हर फेरे में भाई बहन को लावा देता है, इसका मतलब भाई बहन को अन्न दे रहा है। लड़की उसे वर को देती है, जिसका मतलब होता है मुझे जो कुछ भी मिलेगा उसे तुम्हें दूंगी, कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। वर उसे अग्नि में डाल देता है, जिसका अर्थ होता है कि ससुराल से मिले सामान पर हम अपना लालच नहीं करेंगे, बल्कि जन कल्याण में लगा देंगे।
3: कोई बताएगा मुझे हम लोग सात फेरे क्यों रहते हैं, आठ क्यों नहीं लेते? छोटी बुआ कह रही थी कि सात नंबर काफी शुभ होता है, जैसे सात सुर होते हैं, सात रंग होते हैं, सात चक्र, सात लोक, सात दिन, ये सारी चीजें जो साथ साथ करके होती हैं, वो बहुत शुभ होते हैं।
0: यह तो हमें भी नहीं पता था, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। ये पता है जिमी, रात में क्यों शादी होती है?
1: हाँ हमें पता है, हम लोग ध्रुव तारे को साक्षी मानकर शादी करते हैं। जैसे ध्रुव तारा एक जगह अडिग है, वैसे ही शादी कभी न टूटे।
2: लास्ट सेरेमनी सिंदूर का होता है, सिंदूर से मांग भरने की तैयारी होती है, मांग भरी जाती है, इसके बाद लड़की शादीशुदा हो जाती है। सिंदूर सुहागन का प्रतीक होता है।

0: एक बात देखी तुमने, अब लड़की वर के बाएं साइड में बैठ गई है। आज से लड़की का स्थान लड़की से पहले माना जाएगा। हर पूजा के घर में, हर काम में लड़की लड़के के साथ बैठेगी।
1: शादी पूरी हुई, चलो हम लोग भी लड़के लड़की को बधाई दे आए। देखो इन लोगों का ढोलक पर गाना नहीं रुका।
2: हाँ, रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला, बिल्कुल नींद भी नहीं आई।
0: चलो चलो, विदाई की तैयारी हो रही है। इससे पहले कोबर में दूल्हा दुल्हन को ले जाते हैं और सालियां भाभी सब दूल्हे को कहती हैं, छंद सुनाओ, गाना सुनाओ, थोड़ा हंसी मजाक का खेल होता है। यहाँ केवल लड़की वाले रहेंगे, हम लोग नहीं जा सकते।
3: ये क्या, सब लोग कह रहे हैं कि अब गौना होगा, ये क्या होता है? हम लोग के यहाँ तो विदाई होती है।
1: पहले छोटी उम्र में शादी होती थी तो लड़की को विदा नहीं किया जाता था। जब वो 18 साल की हो जाती थी तब विदाई होती थी, उसी को गौना कहते हैं।
2: इसलिए बारात थोड़ी दूर जाएगी, फिर लौटेगी और दुल्हन को अपने साथ ले जाएगी। बस एक ही बार में विदाई हो जाती है।

0: गांव में भी कुछ कुछ शॉर्टकट होने लगे हैं। अब बताना कैसा लगा तुम लोगों को, हरिओम होता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता।
1: हमें तो विदाई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, सब कितना रो रहे हैं।
2: चलो बहू से बात करते हैं, अभी वहाँ इतनी रस्में होंगी कि वह सब भूल जाएगी।
3: सब इतना थके थे कि बस में बैठते ही सो गए, पटाखे की आवाज से नींद खुली।
4: वेलकम वेलकम, शादी कैसी रही?
0: अरे हरिओम, तुमको बहुत मिस किया।
4: हमको लगा आप लोग पता नहीं कैसे लौटेंगे, इसीलिए मैं आप लोग को लेने आ गया।
1: कितनी धूम है यहाँ पर, पूरा गांव वेलकम के लिए खड़ा है।
0: देखो नाउन सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गा रही है, वहाँ गांव की सभी लेडीज ढोलक पर गीत गा रही हैं।

0: अरे बच्चों के लिए उधर कठपुतली का प्रोग्राम चल रहा है, सारे बच्चे उधर बिजी रहेंगे और यहाँ की सारी रस्में अच्छे से पूरी हो जाएंगी।
1: देखो बहू से छापे बनवाए गए हैं घर की दहलीज पर और लक्ष्मी घर आ गई हैं और सभी लोग घर के बड़े आरती करने के लिए भी आ गए हैं।
2: यह सुंदरता है गांव की, ऐसा लग रहा है पूरे गांव में बहू आई है, सब इतने ही खुश होते हैं।
3: यहाँ अनाज पर चलकर बहू अंदर जाती है, सबसे पहले घर के मंदिर में जाएगी, फिर सारी भाभियाँ और बहनें जो हाथ में कड़े बंधे थे ना, उसे दूल्हा दुल्हन मिलकर एक साथ खोलेंगे, पानी में अंगूठी ढूंढेंगे ताकि बहू इस माहौल में बिल्कुल घुल मिल जाए।
4: सब लोग बोल रहे हैं आओ डांस करो, हम तो चले डांस करने।
5: हो सखी भुसवा माँ झुलनी हेराई गई रे,

0: अब सब लोग बहू को थोड़ा आराम कर लेने दो, शाम को मुंह दिखाई के लिए सब लोग आ जाएंगे ना। भावना, भाभी को लेकर जाओ बच्चा।
1: लोग आने शुरू हो गए हैं मुंह दिखाई के लिए, बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें लेकर। अब हम लोगों को भी चलना चाहिए,
2: बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। अगर अपने हो साथ तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट पकवान लगती है।
3: गांव की मिट्टी हर बार एक नई बात सिखाती है।
4: आप सब भी अपने गांव से जुड़िए और जब भी मौका मिले जरूर आइए, ढेर सारा अपनापन और बहुत सारा प्यार मिलेगा। आप लोग गांव से दूर जाकर बहुत सारी चीजें खो रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव लौटिए और गले लगाकर तो देखिए।
3: मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई है। हरिओम भैया, प्लीज सामान रखवाइए, हम लोग बस नमस्ते करके आते हैं।
0: अरे घूंघट में आओ प्यारी बन्नी, अंगना में ढोलक बजे। हाँ घूंघट

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हुक्कई से खेलन जाइबो।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत कर रहे हैं हम आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसको लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। मौसम का बदलाव देखते हुए, यानी कि जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के साथ हल्की हल्की धूप निकल रही है और इस मौसम में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। स्पेशली वो बीमारियां जो पानी से होती हैं या फिर जो मच्छरों के कारण होती हैं। और आज के अपने स्वास्थ्य संगिनी में हम बात करने जा रहे हैं उसी बीमारी में से एक, जो आजकल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं डेंगू। 2024 के बीच तक WHO को 7.6 मिलियन से अधिक डेंगू के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 3.4 मिलियन मामलों की पुष्टि की गई है और इनमें ही 16,000 से अधिक मामले गंभीर, प्लस 3,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डेंगू जो कि एक गंभीर बीमारी है और अगर सही वक्त पे इलाज ना मिले तो इंसान की मौत भी हो जाती है। मच्छरों से होने वाली ये बीमारी जो बहुत ज्यादा आम है, लेकिन इसके सिम्टम्स कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल बुखार है, जुखाम है, ठंड लग रही है और पैरासीटामोल खाते रहते हैं जब तक प्लेटलेट डाउन नहीं हो जाती। तो डेंगू क्या होता है, किससे होता है, क्या सिर्फ पानी के भराव से होता है और डेंगू को लेकर ऐसी बहुत सारी मिथ बातें आपके पास होंगी जो आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर, जिसमें कई लोग आपको घरेलू उपचार बताते हैं कि डेंगू हो जाए तो ये खाना चाहिए, डेंगू हो जाए तो वो खाना चाहिए, जिससे और भी ये समस्या गंभीर हो जाती है, बीमारी गंभीर हो जाती है। डॉक्टर के पास कब जाएं, क्या लक्षण होते हैं डेंगू के और डेंगू क्या होता है, हम आपको बताते हैं आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगिनी, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ रेडियो कैनसली की खूबसूरत पहल के तहत। आज आपकी आरजे नदी बात करेगी डेंगू पर। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खास पेशकश को आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे डेंगू को। डेंगू बुखार हमेशा से एक ध्यान खींचने का मामला रहा है और एक जानलेवा मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी आपकी जान भी ले सकती है अगर आप सही वक्त पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जानलेवा साबित होती है और ऐसी बहुत सारी मौतें होती हैं इस मौसम में, स्पेशली जब बारिश होती है, धूप निकलती है, पानी भरता है और आसपास मच्छर बहुत ज्यादा पनपने लग जाते हैं, तब डेंगू भी बढ़ता है। ये बीमारी डेंगू वायरस द्वारा प्रसारित होती है, जिसे एडीज मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने का मौका मिलता है। डेंगू खासकर ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेंगू फैलता कैसे है, डेंगू बुखार की प्रमुखता क्या क्या होती है। तो ऐसे मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं, जिनको मुख्यतः एडीज मच्छर कहा जाता है। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और इसके बाद ही जब आपको काटता है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में उस वायरस को ट्रांसफर करता है और ये आपके बॉडी में डिवाइड होकर, आपके सेल्स में डिवाइड होकर फैलना शुरू करता है। चलिए आपको बता देते हैं कि डेंगू होने में कितना वक्त लगता है। अगर आपको किसी ऐसे मच्छर ने काटा है जिसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद है, तो आपको 8 से 12 दिन में इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों के खून में डेंगू का वायरस होता है, उन्हें काटने से मच्छर संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपको डेंगू नहीं है और आपके फ्रेंड को डेंगू है और सेम मच्छर ने उसको काटा है और उसके बाद उसने आपको काटा है, यानी कि अगर आपको, आपके दोस्त को किसी मच्छर ने काटा है और वही मच्छर आपको आके भी काट रहा है, तो ये डेंगू आप तक फैल सकता है। मच्छर कैरी करता है उस खून को और वही खून यानी वही वायरस आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से आपको भी डेंगू हो सकता है। किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने में 2 दिन पहले बुखार कम होना या ज्यादा होना हो सकता है। इसी के अलावा आपको ठंड लग सकती है, चिल्स आ सकते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण की अगर बात करें तो अचानक बहुत तेज बुखार आता है जो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। अगर अचानक से आपको बहुत तेज बुखार आने लगा है, स्पेशली शाम के वक्त यानी कि इवनिंग होते ही आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, प्लस अगर आपको ठंड लग रही है, 3-4 रजाई भी ओढ़ ले रहे हैं उसके बाद भी ठंड लग रही है, तो हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं मलेरिया या फिर डेंगू का ही लक्षण बता रहा हो। इसके अलावा गंभीर सर दर्द होना, अगर आपको बुखार के साथ साथ सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो ये भी एक लक्षण होता है डेंगू होने का। साथ ही साथ जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, यानी कि आपके पैरों में, आपकी मांसपेशियों में, हाथों में, जोड़ों में, कंधों में, कहीं भी अगर दर्द होता है, चलने में आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये वो सारे लक्षण है जो इस चीज का दावा करते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। इसके अलावा आंखों के पीछे दर्द होना, जी हाँ, कई लोगों को आंखों के पीछे दर्द नॉर्मली भी होता है, ये उनको भी होता है जिनकी आंखें कम

0: कमजोर हो चुकी होती हैं, यानी कि जो दूर तक नहीं देख पाते, जो आंखें बहुत गड़ाकर देखते हैं, अक्सर उनके साथ भी ये किस्सा होता है। लेकिन अगर आपको बुखार भी आ रहा है, सर में दर्द है, जोड़ों में भी दर्द है, चलने में थकान हो रही है, प्लस आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस हो रहा है, तो ये बताता है कि आपको डेंगू हो सकता है। सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, इसके अलावा आपका जी मिचलाता है, यानी कि आपको उल्टी करने का मन करता है बट आपको उल्टी आ नहीं रही होती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, या कहीं भी आप बाहर जा रहे हो तो आपको ऐसा फील होता है कि उल्टी हो जाएगी और पूरा दिन आपका उसी में जाता है, बट आपको उल्टी होती नहीं। और ऐसा डेंगू में भी होता है, जी मचलाता रहता है लेकिन उल्टी नहीं होती, और कई बार आपको उल्टी हो भी सकती है। मतलब सब लोगों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, कुछ के बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि भैया जी मचलाने के बाद उल्टी आ सकती है, कुछ का सिर्फ जी मचलाता है, और अगर इसके साथ साथ आपको उल्टी भी आ रही है और आपका उल्टी करने का मन करता है, तो हाँ, ये आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपको डेंगू हो चुका है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो रही है, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है कहीं भी, और आप लगातार खुजलाने के बाद भी वो शांत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि आपको डेंगू है। इसके अलावा थकान का होना, जी हाँ, आप आमतौर पे जो काम करते हैं, अगर उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आप खाना पीना सही तरीके से खा रहे हैं, आप पानी सही तरीके से पी रहे हैं, हर एक तरह का पोषण आप सही तरीके से ले रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा के काम करने में आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और अगर आपको लगता है कि एक दो दिन होकर ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3-4 दिन तक लगातार चल रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये डेंगू के लक्षण होते हैं। तो डेंगू के लक्षण में अचानक तेज बुखार आना, गंभीर सर में दर्द होना, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, जी मिचलाना, उल्टी करना, खुजली और थकान, आमतौर पर ये वो सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान या फिर एक व्यक्ति के अंदर डेंगू हो चुका है। आमतौर पर जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनको डेंगू का बुखार आने में लगभग 10 दिन या उसके अंदर का वक्त लगता है। हालांकि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, उनके लक्षण इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, यानी कि अगर आप कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले हैं, इम्यून सिस्टम वाले हैं, तो हो सकता है आपकी जो सिम्टम्स हो वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो, उससे भी ज़्यादा बदतर हो, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है, अगर आप लगातार पैरासीटामोल खाकर, कॉम्बीफ्लाम, एबुजैसिक तरह की दवाइयों को खाने के बाद सोचते हैं कि आपका डेंगू ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डेंगू आपकी प्लेटलेट्स को कम करता है, बहुत तेज़ी से कम करता है, और अगर आपकी प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम होती हैं तो ये जानलेवा साबित तो हो सकता है। इसके अलावा हाँ, ये आप बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं जब आपका बुखार उतर जाता है आमतौर पर 1 से 2 दिन में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं जो बताते हैं कि हाँ, आपको डेंगू है। मसूड़ों या नाक से खून का आना, मल पेशाब या उल्टी में खून की मौजूदगी, त्वचा के नीचे खून का बहाव, जो खरोच आपको ऊपर तक दिखाई दे सकती है, गंभीर पेट में दर्द हो सकता है, लगातार उल्टियाँ आती हैं, आप पानी पीते हैं आपको उल्टी आ जाती है, आप कुछ खाते हैं आपको उल्टी आ जाती है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि लगातार उल्टियां आपको हो रही हैं, गंभीर पेट में दर्द है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में पानी की कमी भी मौजूद हो जाती है, आप डिहाइड्रेट रहते हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकता है, सुस्ती व कन्फ्यूजन, ठंड और चिपचिपे हाथ पैर, आपको बहुत ठंडा भी लग सकता है, प्लस आपके हाथ पैर बहुत ठंडे लग सकते हैं, बहुत तेज़ी से आपका अगर वज़न कम हो रहा है, बेचैनी हो रही है, थकान हो रही है, तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं, वो सारे लक्षण हैं जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हाँ, आपको डेंगू है। तो डेंगू की पहचान कैसे करें, चलिए आपको बता दें कि डेंगू की पहचान करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिसमें डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जाते हैं, जो आपको डॉक्टर्स या फिर किसी भी पैथोलॉजी में डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट के अंदर क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। ये टेस्ट डेंगू वायरस के NS1 अंश की जाँच करता है। डेंगू के लक्षण के पहले सप्ताह के दौरान ये टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ये जांच कुछ एंटीबॉडीज की तलाश करता है जो शरीर में डेंगू बुखार होने पर ही बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। इसके अलावा IgG एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है, RT-PCR टेस्ट आपके लिए करवाया जा सकता है। इसके अलावा LFT और RFT का भी टेस्ट करवा सकते हैं। LFT जो आपके लिवर के लिए कराया जाता है, LFT में सीरम होता है जिसका नाम है बेलारूबिन, इसकी जांच करी जाती है और इससे पता करते हैं कि आपके शरीर में डेंगू है या नहीं है। आपको बता दें, बेलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होने पर ही आपको ज्वाइंडिस के सिम्टम यानी कि पीलिया भी नजर आती है। आरएफटी हो सकता है, इसके बाद चेस्ट एक्सरे या फिर ईसीजी का टेस्ट आपसे करवाया जा सकता है। ये वो सारे टेस्ट हैं जो आपको डॉक्टर्स जरूर सजेस्ट करेंगे अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आते हैं, बुखार, सर में दर्द, थकान, बेचैनी, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ठंडे हाथ पैर, बहुत ज्यादा ठंड लगना, कभी बदना, तो आपको डॉक्टर के पास सलाह जरूर लेने जाना चाहिए। पैरासीटामोल खा के काम नहीं चलाना चाहिए। खुद को डॉक्टर ना समझे, फार्मेसी से दवा लाकर अपना काम ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सजेशन लें और वो आपको कुछ इन टेस्ट में से जरूर एक बताएंगे करवाने के लिए, जो आपके किसी भी पैथोलॉजी में आप करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको डेंगू है कि नहीं है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे कि डेंगू का इलाज कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले लेते छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी अपनी आरजुनती और सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो के असली की है। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में होने वाली सबसे ज्यादा बीमारियों में से शामिल एक बीमारी, इसका नाम है डेंगू, जिसे हम डेंगी भी कहते हैं। अभी तक हमने जाना डेंगू कैसे होता है, किससे होता है, लेकिन अब बात करेंगे कि डेंगू से बचना कैसे है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो है हाइड्रेशन। डेंगू बुखार से निपटने के दौरान हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आपको लगातार पानी पीने की जरूरत होती है। बहुत सारे तरल पदार्थ जिसमें पानी, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं, इसका आप सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये शरीर में खोए हुए तरल पदार्थ को भरने में मदद करता है, वायरस के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपका सपोर्ट करता है। अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, वैसे पानी आपको गर्मियों में भी पीना चाहिए जो कि आप नहीं पी रहे हैं, 2 से 3 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए। प्लस अगर आपको किसी तरह की बीमारी है और आपकी मेडिसिन चल रही है तो और भी ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको अंदर से डिहाइड्रेट कर देती हैं। आप थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, चक्कर महसूस करते हैं और कभी कभार पानी कम होने की वजह से आपको लगातार उल्टियां भी आ रही होती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने बॉडी में यानी अपने शरीर के अंदर पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में रखें और सिर्फ पानी ही ना पिए, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं या बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से कम होते हैं, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस ऐसी चीज़ें आती हैं। उन मिनरल्स को भी ध्यान में रखते हुए ORS ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और अगर आप सादा पानी पी रहे हैं तो गर्म करके उसमें एक चुटकी पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि गुलाबी नमक भी डाल सकते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करने में मदद करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरी चीज की जो बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसको आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है आराम करना। भरपूर मात्रा में आराम करके आप अपने शरीर की मरम्मत करते हैं। रात में सही वक्त पर अगर आप सोते हैं, आप भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं, तो आपके शरीर की मदद होती है, वो अंदर

से खुद को ठीक करने में काम करता है, लेकिन अगर आप भरपूर मात्रा में आराम नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा थका देता है और भी ज़्यादा बीमार कर देता है। तो भले ही आप बीमार ना हो तो भी 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, और अगर आप बीमार हैं, डेंगू से लड़ रहे हैं या किसी ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में आराम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद को आराम दे, और अगर आपके घर में किसी को डेंगू है तो आप उसे भी आराम दें। इसके अलावा दर्द निवारक दवाइयां आपको दी जाती हैं। डेंगू बुखार या फिर तेज बुखार और बेचैनी पैदा कर सकता है, इसके लिए आपको पैरासीटामोल यानी कि ओवर द काउंटर दवाएं दी जाती हैं, जो बुखार को कम करने, बेचैनी को कम करने में मदद करती है। लेकिन अगर आप डेंगू की दवा ले रहे हैं या फिर आपको डेंगू हो रखा है, तो एस्पिरिन जैसी दवाइयों से दूर रहिएगा, क्योंकि एस्पिरिन खून को पतला करने में मदद करता है। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या कोई आपके घर में हार्ट पेशेंट है, तो आप उसके लिए एस्पिरिन अपने घर में ज़रूर रखें। यह मदद करता है हार्ट अटैक से बचने के लिए। लेकिन अगर आपको डेंगू हो गया है तो एस्पिरिन जैसी दवाइयों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डेंगू बुखार में मतली आना, उल्टी होना, दस्त जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए कोशिश करें लगातार इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें, प्लस किसी न किसी को अपने साथ उस वक्त ज़रूर मौजूद रखें। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी न किसी को हमेशा अपने साथ रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डेंगू बुखार के जो जोखिम कारक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर कहाँ पर ज़्यादा है। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर वहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान पर यात्रा करने से बचें इस मौसम में जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ओडोमास या फिर ऐसी कुछ दवाइयां जो मच्छरों को दूर भगाती हैं अपने ऊपर जरूर लगाएं। कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई रोल ऑन जरूर इस्तेमाल करें ताकि मच्छर आपको ना काटे और आपसे दूर रहें। मच्छरों के काटने से बचिए। प्लस हम आपको बता दें कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी यानी साफ रुके हुए पानी में पनपता है, तो अगर आपके घर में कहीं पानी का भराव है तो उसको खाली कर दें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंगू का मच्छर ही, बाकी और दूसरे मच्छर यानी कि मलेरिया का मच्छर भी पानी में ही पनपता है। तो आसपास इस मौसम में जहां पानी भर जाता है, स्पेशली हमारे छतों पर टीन में रखा हुआ कोई बॉक्स रखा है, कोई डिब्बा रखा है जहां पानी भर चुका है, तो कोशिश करें उस पानी को फेंक दें, कूलर का पानी निकाल दें, उसको ज़्यादा देर इस्तेमाल ना करें, गमलों के पानी को निकाल दें, हर दिन फ्रेश रखें, पानी ढक कर रखें, क्योंकि यहीं पर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। मच्छरों के संपर्क में आने से बचें। अगर आप बहुत ज़्यादा मच्छरों के संपर्क में आते हैं तो आपको डेंगू वायरस हो सकता है। इसके अलावा एक और वायरस है जिसको हम मलेरिया कहते हैं, वो हो सकता है। डेंगू मच्छर की पहचान सिर्फ साफ पानी से ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर निशानों से भी होती है। डेंगू मच्छर जो होता है वो सफ़ेद और वाइट कलर का होता है, उसके पैरों में भी स्ट्रिप्स होती हैं। लेकिन अब आप मच्छरों के साथ स्टंट ना करें देखकर कहीं उसकी टांगे सफ़ेद हैं कि नहीं है। सिंपल सी बात है, मच्छरों से दूर रहें। मच्छरों पर नियंत्रण का अभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इस वक्त बारिश हो रही है, गलियों में पानी हो रहा है, गलियों में पानी भर रहा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसी दौरान मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। तो अगर आपकी गली में ऐसा कुछ है तो आप नगर पालिका से सहायता ले सकते हैं। वो आपके गली में आकर मच्छर भगाने वाली दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके मोहल्ले, आपकी गली में मच्छर कम पनपेंगे। इसके अलावा अगर आपको पहले भी कभी डेंगू हो चुका है तो हो सकता है आपको दोबारा से डेंगू हो जाए, तो इसका खास ख्याल रखिएगा, मच्छरों से दूर रहिए। और अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, नगर पालिका की मदद लें, काला हिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा गुड नाइट, ऑल आउट जैसी जो भी चीज़ें आती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओडोमास का इस्तेमाल करें। बच्चों को स्पेशली बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि छोटे बच्चों में डेंगू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उनकी इम्यून सिस्टम बड़े लोगों की तरह नहीं होती है, जिसके कारण वो वायरस के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं। फिलहाल आइए लेते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और बताते हैं कि डेंगू हो जाने पर आपको क्या चीजें खानी चाहिए और किससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आरजेडी मौजूद है। कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना स्वास्थ्य सगरी। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी अर्जुनती और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। अभी तक हमने बात की डेंगू की और अब हम बात करेंगे कि डेंगू होने पर आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना होता है, तो हाइड्रेशन के लिए पानी, नारियल पानी प्लस आप हर्बल चाय ले सकते हैं जिसमें कैमोमाइल टी, अदरक पुदीना जैसी चाय शामिल होती है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ में आप विटामिन सी जैसी चीजें ले सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर फल जिसमें संतरे, पपीता, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, विटामिन सी से भरपूर जितने भी फल होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं, जिसमें नींबू, आंवला, करौंदा भी शामिल रहता है। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं जिसमें पालक, केला, ब्रोकली विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप मूली के पत्ते भी खा सकते हैं। बेरीज में आप ब्लूबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी और एंटीऑक्सीडेंट वाली बेरीज खा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में आपकी मदद करती है। लहसुन और अदरक आप शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन स्रोत में आप पनीर, दही, दूध, सोया, मिक्स दाल, राजमा, छोले, चना, छेना, सहजन, सत्तू और टोफू ले सकते हैं, बट वही लीजिए जो आपके डाइजेशन पर आपको हल्का महसूस हो। बहुत ज्यादा भारी खाना खाने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखिएगा। प्रोटीन आपके शरीर को ठीक करने और आपके शरीर में आई कमजोरी को ठीक करने में मदद करता है, प्लस आपके शरीर की मरम्मत करने में मदद करता है। तो प्रोटीन को अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए। और प्रोटीन सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अभी हमारे बीच में है। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी भैया आपको अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाहिए। हमारे भारतीय खाने में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। 12 से 13 ग्राम प्रोटीन दिन का होता है, बट आपको प्रोटीन अपने वजन के अनुसार लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है और आपके डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ें कम लेनी है, तो आप अपनी प्रोटीन की मात्रा अपने वजन के अनुसार ज़रूर लें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज आप अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन में शाकाहारी में पनीर, दूध, दही, सोया, मिक्स दाल, ये सारी चीजें शामिल होती हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आप दूध से बनी चीजें हजम नहीं कर पाते हैं, तो आप सोया दाल, राजमा, छोले, चना, सहजन, सत्तू और टोफू ले सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं यानी कि आप नॉन वेज खा सकते हैं, तो चिकन, मटन, मछली और अंडा आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम कि अगर आपके प्लेटलेट बढ़ाने वाली बात की जाए, तो आप विटामिन ए से भरपूर मात्रा में सब्जियां ले सकते हैं जिसमें कद्दू, गाजर, चुकंदर, दूध और पपीता शामिल होता है। विटामिन सी ले सकते हैं आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी। जिंक के लिए आप साबुत अनाज ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं या आपको जिंक की टैबलेट दी जा सकती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करेंगी, और साथ ही अगर आप प्रोटीन भी शामिल करते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपकी मदद करता है। अनार आप खा सकते हैं, आयरन की भरपूर मात्रा अनार में मौजूद होती है, तो ये आपके आयरन को बढ़ाने में मदद करता है। कद्दू, गाजर और पालक आप साथ में ले सकते हैं, चुकंदर और गाजर खा सकते हैं। प्लस अगर आपको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थकान से लड़ने के लिए आप अपनी कैलोरीज और प्रोटीन के अलावा गुड फैट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो आपको घी, मक्खन, पनीर और खाना पकाने वाले तेल या फिर एवोकाडो जैसे फलों में मौजूद मिलता है। गुड फैट आपके दिल को भी सपोर्ट करता है, आपको एनर्जी देता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, डालडा जैसी चीज़ें खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, तो ये आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है। तो खाने पीने के मामलों में जंक फूड खाना मना है, यानी कि बाहर से आप फास्ट फूड नहीं खाने वाले हैं, जैसे बर्गर, फ्राइज या फिर कोई अन्य फास्ट फूड आते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ जिसमें डोनट, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। अगर आप चिकन ले भी रहे हैं डेंगू के वक्त में, तो कोशिश करें आप चिकन सूप लें जिसमें तेल की मात्रा कम रखें। बहुत ज़्यादा भारी मांस नहीं खाना है। रेड मीट से आपको थोड़ा दूर रहना है। मसालेदार खाना नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला आता है, वो आपको नहीं खाना है। इसके अलावा आपको कैफीन से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा शुगर से दूर रहना है जिसमें कॉफ़ी और चाय।

0: राबी हो सकता है, हैजा हो सकता है, क्योंकि बाहर इस वक्त बैक्टीरिया वायरस की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं और उड़ती हुई धूल, भीगे हुए चीज़ों पर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो उनके खाने की कोशिश ना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये तो था प्रोग्राम आज का, जिसमें हमने बात की डेंगू के बारे में, जाना क्या होता है डेंगू, कैसे होता है, कैसे बचाव करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसी के साथ घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर होगी मुलाकात। अब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, है गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है।

धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेजबान आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जाँच के बारे में बताया था, और आज की उसी श्रृंखला कि इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे टीबी के इलाज की, यानी सामान्य टीबी के इलाज की दवा और उसके प्रतिरोध यानी एमडीआर टीबी के इलाज की, और बच्चों में टीबी के इलाज की, और इसके अलावा उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले हमारे सेहतिया भैया। सेहतिया भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आरजे जी, और रेडियो सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछा था, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे ज़रूरी है, क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती है, ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गांव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। लेकिन भैया, आज की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वाकई ऐसा सब होता है?
1: बिल्कुल नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो कि टीबी का इलाज संभव है, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सम्मान जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या बीमारी को छिपाना है, समस्या जांच में देरी करना, समस्या दवा बीच में छोड़ देना, और अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे तो वो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है।
0: लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज शुरू तो कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, और मुझे याद आ रहा है कि एक घटना में जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही खास बन सकती है, क्यों भैया?
1: हाँ आरजी जी, मैं भी ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम और शाम शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता है। लोग कहते हैं जांच करा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते हैं। कहते हैं अरे कुछ नहीं, 2 दिन आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। अब करीब 2 महीने के बाद हालत बिगड़ गई। जब अस्पताल पहुँचे तो जांच में टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कराई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी। खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यही उन्हें सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बंद कर दिया। फिर कभी लेते कभी नहीं लेते, शराब भी नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच के लिए भी नहीं गए।
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रह गई।
1: बिल्कुल, और कुछ महीने के बाद बीमारी पहले से ज़्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई, इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी हो गई है। अब उन्हें इलाज ज़्यादा कठिन था, दवाइयाँ बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया, और दुर्भाग्य से क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया।
0: ये तो बहुत ही दुखद कहानी है भैया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि टीवी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आज मैं हर श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है कि दो दिन खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक हमें दवा लेना ही होगी, तभी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी।
0: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या मरीज को एक जैसी दवा मिलती है? क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद करती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले श्रोताओं को ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी या दवा प्रतिरोधी टीबी, और आगे की चर्चा में हम इन्हीं दोनों प्रकार को विस्तार से समझेंगे।
0: खांसी रहे दो हफ्ते से पार,
1: जांच कराना समझदार,
0: टीबी हारेगी हम जीतेंगे,
1: इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।
0: स्वागत है साथियों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है हमने राम बाबू की कहानी में भी सुनी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर कैसे होता है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल आरजे जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टेबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक ही नहीं बल्कि कई दवाओं का मिश्रण होती है जिन्हें हम फिक्स डोज या कॉम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
1: बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन ये एक बात समझना बहुत जरूरी है, कई मरीज दवा शुरू करने के कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है और बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं, यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा है तब भी हमें मतलब दवाई जारी रखनी है।
1: बिल्कुल, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना जरूरी है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफ़ी नहीं है, मरीज को समय समय पर फॉलो अप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांचें करवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं है बल्कि नियमित निगरानी भी उसका एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की बात की थी, क्या बच्चों का इलाज अलग से होता है?
1: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों में भी टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता है तो कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जांच जरूरी करानी चाहिए। बच्चों को इलाज में भी मुक्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा या उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद ना करें, पूरा कोर्स पूरा कराना उतना ही जरूरी जितना बड़ों में है।
0: तो साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है कि इलाज को पूरा करना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते हैं। क्या सरकार इस दिशा में भी कोई मदद कर रही है सहतिया भैया?
1: जी हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि वो इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है भैया? इसका नाम भी लोग काफी सुन रखे हैं।
1: देखिए, निश्चय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं या स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीज की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है, कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है।
0: और निक्षय साथी ये क्या है?
1: निश्चय साथी आमतौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वो मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग कराता है। कई बार एक जिम्मेदार निश्चय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ, MRD टीबी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बम है जो दग जाएगा। आखिर ये होता क्या है?
1: MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, सरल शब्द में कहें तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती हैं। ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है, या नियमित रूप से दवा नहीं लेता है, या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसी का उदाहरण थी। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते थे तो वो कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते थे, फिर यह सामान्य इलाज काम नहीं करता था।
0: मतलब सुनकर ही डर लगता है। क्या MDR टीबी का इलाज संभव है भैया?
1: बिल्कुल संभव है, और यही संदेश है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि पहले MDR टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफ़ी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BP LMP नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेडा क्यूलिन या प्रिटोमेनिड या लाइनोजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देखकर लेते हैं।
0: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि MDR टीबी का इलाज जो है विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है।
0: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीबी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
1: बहुत ज्यादा, उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज, या यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों हैं तो दोनों का इलाज साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को भी गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों को में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है कि तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब
0: की तो बात ही मत करिए, राम बाबू की कहानी में ये सामने आई है।
1: बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं, या इलाज छोड़ देते हैं। इसलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि परिवार के सभी सदस्य की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी की शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिकेटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है, ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोकी जा सके।
0: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: बहुत आसान बातें हैं। कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूके से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार की बाकी सदस्यों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
0: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा। पहली है कि टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुक्त है, दवा कभी बीच में ना छोड़ें। चौथी है फॉलो अप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। और पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठवीं है MDR टीबी भी उपचार योग है, इसलिए निराश ना हो। सातवीं है कि परिवार के सदस्यों की स्कैनिंग करवाएं। और आठवीं है कि टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें।
0: बहुत ही सुंदर संदेश। साथियों याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम अपने सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
3: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। सुन सहेली और सुन सहेली में बिल्कुल टाइम के साथ हाजिर हो गई हैं आपकी सहेलियां। आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, आपको बहुत कुछ बताने के लिए, और आज तो है हमारा बेहद ही ब्यूटीफुल प्यारा वाला डे जो कि होता है वेनसडे। आज है वेनसडे और वेनसडे को हम बात करती हैं महिलाओं पे। लेकिन इन सब बातों से पहले पहले पहले भाई आप सभी बताइए कि आप सभी का हालचाल कैसा है, कैसे हैं आप सब और क्या क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत ही प्यारा मौसम है, मौसम का मज़ा ले रहे हैं आप सब या फिर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपना फटाफट से हालचाल बता दें। और बिल्कुल आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली, और आप सभी को सुन सहेली में ये प्यारी सी दोपहरिया अपनी दोनों सहेलियों की तरफ से, यानी कि आरजे समता और आरजे अंशिका की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। शुभ शुभ शुभ दोपहरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शुभ दोपहरिया भी ठीक है, और लेकिन लेकिन लेकिन एक कमी है, और वो कमी ये है कि भाई आरजे समता कहाँ है। तो चलिए बता देती हूँ कि मैम जो है वो छुट्टी पे हैं, आज वो आपसे जल्द ही मिलेंगी। तो आज उन्हें याद करते हुए हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, और वेनसडे है, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो ये सीधे चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेगमेंट की तरफ जो कि होती है पोइट्री। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अभी थोड़ी देर में हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ने वाली हैं, और वो एक टॉपिक लेकर के आएंगी और उस पर हम बात करेंगे एक साथ। लेकिन वो गेस्ट कौन है, टॉपिक क्या होगा, बातें क्या होंगी, ये सब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र का फल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो आप सब के लिए भी सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होने वाला है। तो आइए सीधे चलते हैं पोइट्री की तरफ। तो आज जो महिलाओं पे ही है, और देखते हैं कि आप सभी को ये पोइट्री कैसी लगती है। कुछ यूं शुरू होती है कि सृष्टि की आदि शक्ति है नारी, सृष्टि की आदि शक्ति है नारी, जीवन का आधार वही है, माता की ममता की शीतल छाया है, अपनों का संस्कार वही है, कोमलता में छिपा है अद्भुत साहस, कोमलता में छिपा है अद्भुत साहस, त्याग तपस्या और प्रेम का बहता पावन झरना उसके अंदर है। कभी बेटी बनकर आंगन में खुशियों की सहनाई लाती, कभी बहन बन भाई की राहों में स्नेह की जोत जगाती, पत्नी बन सुख दुख साझा करती, जीवन का संबल बनती है, माँ बनकर अपनी लोरी से वो पूरी दुनिया को गढ़ती है, पर सिर्फ घर की चौखट तक अब सीमित नहीं है उसकी उड़ान, नव को छूने की चाह लिए बढ़ती है, कोई नहीं है थकान। मैदाने जंग हो या विज्ञान, हर पद पर परचम लहराया, अपनी हिम्मत के बल पर उसने अपना लोहा मनवाया, अब अबला नहीं सबला है, खुद में एक संपूर्ण कहानी है, हर मुश्किल से टकराने वाली वो शक्ति ही कल्याणी है, आओ मिलकर शीश झुकाएं नारी के इस पावन रूप को, आओ मिलकर शीश झुकाएं नारी के इस पावन रूप को, जो महका देती है पल भर में जीवन की हर छांव और धूप को, जो महका देती है पल भर में जीवन की हर छांव और धूप को। बिल्कुल कहीं ना कहीं जीवन की हर छांव हर धूप को वो महका देती है, कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी एक अच्छी दोस्त बनकर, हर रूप में, हर जिस भी किरदार में आप देखेंगे, हम सभी के घरों में जो महिलाएं होती हैं वो कभी ना कभी हर किरदार निभाती हैं, लेकिन हर किरदार में उनकी जो निपुणता होती है, खुशी होती है, अपने फ़र्ज को हर हद से ऊपर पूरा करने की जो एक चाहत होती है वो वही रहती है। वो हमेशा अपने फ़र्ज को, अपने दिल को संभाल कर रखती हैं और अपने फ़र्ज को हमेशा पूरा करती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि त्याग की मूर्ति होते हुए भी
नारी हमेशा महान ही होती है। उसकी इसी महानता, इसी प्रेम को और उसकी इसी शालीन स्वभाव को ज़रूरी है कि हम कद्र करें, समझें और उसे पूरा पूरा सम्मान दें। तो आइए अब चलते हैं सीधे से रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या कहता है। तो आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये कहता है कि कई बार बात होती है ना, हमेशा हम कहते हैं कि नए रास्तों पर चलने की कोशिश करो, नए रास्तों पर चलने की कोशिश करो, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो, नए रास्तों पर चलने की कोशिश करो, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो, जो कभी नहीं आजमाया है उसे, जो कभी नहीं आजमाया उसे ज़रूर आजमाओ, जो कभी नहीं आजमाया उसे ज़रूर आजमाओ, हमेशा कुछ नया करके दिखाओ। यही आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि हमेशा नए रास्तों को खोजना चाहिए और नए कुछ ना कुछ करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि जब भी देखिए हमारी लाइफ में ये होता है ना कि जब भी कोई नया रास्ता होता है, अनजान रास्ता होता है या कोई ऐसा काम होता है जो हमने पहले कभी नहीं किया होता है, तो हम हमेशा डरते हैं, सोचते हैं कि अरे कैसे करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। स्पेशली महिलाओं में ये सोच जरूर होती है कि अरे ये काम तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं है। या मान लीजिए कि कोई लड़की है और वो अपने फर्स्ट जॉब के लिए जा रही है, तो उसे ये होता है कि फर्स्ट जॉब है, पहला दिन है, नए लोग, नया माहौल, मैं कैसे करूँगी। और दूसरी बात, मैंने ये काम अगर उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसे मिल जाता है तो भी उसके मन में ये चीज़ रहती है कि अरे मैंने जॉब पहले कभी नहीं की है, मैं कैसे करूँगी। तो हमेशा जो आपने पहले कभी नहीं किया है उसे ज़रूर से आजमाएं, क्योंकि जब हम नई चीज़ सीखते हैं, किसी नई चीज़ को करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि आपने कुछ नई चीज़ की, उसे ट्राई किया और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमेशा जब भी डर लगे, जिस भी रास्ते पर जाने से मन में ये बात आए कि नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझे नहीं करना है, या सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि पहले कभी नहीं किया है और मेरे लिए वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ ज़रूर करें। क्योंकि नई चीज़ों को हमेशा जब हम किसी नई चीज़ को अपनाते हैं, जैसे मान लीजिए जब किसी की फैमिली में शादी होकर के नई बहू आती है, तो वो भी तो नई होती है ना। हाँ, उसे पहले से जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन उसे अपनी फैमिली में जब अपनाते हैं, जब उसके साथ वक्त बिताते हैं, तो हम उसे समझना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसको समझने लगते हैं, उसकी अच्छी आदतों को, उसकी अच्छी बातों को सब समझने लगते हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ। ठीक इसी तरीके से हमेशा नई चीज़ें करें, नए जोखिम उठाएँ, क्योंकि जब हम नई चीज़ों को करते हैं ना और नई जोखिमों को उठाते हैं, हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक ये भी देता है, आपके मन में एक बात ये भी आती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ और मैंने कर लिया है। हमेशा अपनी लाइफ में नए चीज़ों को जानते रहिए, समझते रहिए और उनके साथ सामंजस्य बिठाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी राहें आती हैं जिस पर हम पहले कभी नहीं चले होते हैं, लेकिन हमें चलना होता है और हमारे पास चॉइस नहीं होती है, बस ये होता है कि हाँ आपको चलना है, आपको करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो उस टाइम पर आप चले करें और खुद को साबित करें, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद को साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार हमारी लड़ाई किसी और से नहीं होती, हर बार हमारी लड़ाई हम ही से होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी लड़ाई आपसे होती है ना, तो आप बेहतर बनकर निखर कर निकलते हैं। और जब हमारी लड़ाई किसी और से होती है तो वो हमारा नुकसान करती है, लेकिन जब हमारी लड़ाई हमारी खुद से होती है तो हम हमेशा निखर कर निकलते हैं। इसलिए हमेशा निखर कर निकलिए और अपनी लड़ाई अपने से ही, खुद से ही लड़िए, खुद को ही बेहतर बनाइए, खुद की बुरी चीज़ों को हटाइए, अच्छी चीज़ों को लाइए, खुद के ही डर पे जीतिए। क्योंकि जिस दिन खुद से जीत जाएंगे, उस दिन सारे जहां से जीतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इसी बहुत ही प्यारे से थॉट के साथ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। बस यूं गए यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा वाला प्रोग्राम सुन सहेली, जो कि आपकी सहेलियाँ लेकर के आती हैं आरजे समता और आरजे अंशिका। भैया आरजे समता तो आज हमारे साथ नहीं है, तो उन्हें हम याद करेंगे। याद करते करते चलिए उनके लिए दो लाइन्स भी मैं बोल ही देती हूँ। वो आज नहीं है, आ रही है उनकी बहुत याद,
वो आज नहीं है, आ रही है उनकी बहुत याद, और करते रहेंगे हम आरजे समता की बात। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, बस यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली। तो वापस आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे आज वाले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारी महिलाओं के लिए यानी कि हमारी फीमेल लिसनर्स के लिए है, और ये दोनों के लिए हो सकता है, मतलब फीमेल लिसनर्स के लिए भी और मेल लिसनर्स के लिए भी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो उन महिलाओं के बारे में है जो कि बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं, यानी कि अपना नाम बनाना चाहती हैं बिजनेस वर्ल्ड में। देखिए, एक टाइम होता था जब हम कहते थे कि सिर्फ जॉब ही एक वो है, आप पढ़ लीजिए, जॉब कर लीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना नाम बना रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनकर सामने आ रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं और हार्ड स्किल्स होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं आपकी जब आपके मन में ख्याल भी है ना कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो आज सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं शुरू करना चाहते हैं, छोटे स्तर पर ही शुरू करना चाहते हैं, फिर भी आपको इन बिज़नेस स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जिस बिज़नेस स्किल की बात आती है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप कोई भी बिज़नेस करेंगे उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए अपने कस्टमर से, सप्लायर से, इन्वेस्टर से, सबसे साफ साफ तरीके से, और थोड़ा इतना कहते हैं ना कि थोड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से बात करें ताकि वो आपकी बातों को समझें, आपकी बातों का उन पर इफ़ेक्ट हो। और सिर्फ अच्छा बोलना ही ज़रूरी नहीं होता है बल्कि दूसरे ध्यान से सुने, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अच्छी अच्छी बातें बोलें, कोई भी कुछ ऐसा नहीं, अच्छी अच्छी बातों के साथ आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन प्रॉब्लम्स को भी बताइए कि सर ये प्रॉब्लम भी हमारी बिज़नेस में आ सकती है अगर हम स्टार्ट करेंगे तो, या अगर ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। थोड़ा आपको दिखाना है अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन, कि आपका पैशन क्या है, आपने सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रखा है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ये होगा। उनको ये लगे कि आपने अपने बिजनेस को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से उसे समझा है, और वाकई आप पैशनेट हैं कि आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेस आपके लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ काम करना है, बिज़नेस आपका पैशन है, आपका सपना है, आप उसे करना चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। आपकी बातों का उन पर असर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स सब अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही इस स्किल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हर दिन आपके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक पावर होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि मुश्किलों को हल करने की पावर हर दिन होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस कहते हैं ना कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए आपने जॉब की, वो तो चलो उसमें भी टेंशन होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारी 8 घंटे की 7 घंटे की जॉब है, हमने कर ली और हम अपने घर आ गए और हम रिलैक्स हो गए। दूसरे दिन आप ऑफिस जाएंगे, होता है वर्कलोड होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में होता है। पर क्या आपको पता है कि एक बिजनेसमैन को या

आती हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बहुत अच्छा है तो आप बिजनेस के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस पर सोचना पड़ता है हमें, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मुश्किल समय में शांत हर कोई नहीं रह पाता। बहुत लोग घबरा जाते हैं, तुरंत से पैनिक हो जाते हैं कि अरे हम क्या करेंगे और कैसे अब बिज़नेस चलाएंगे, हमने तो बहुत मेहनत से बिज़नेस शुरू किया था पर ऐसा हो गया। और महिलाओं में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जितनी सॉफ्ट यानी जितनी कोमल होती हैं उतनी ही ज़्यादा वो हिम्मती भी होती हैं। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल में आपको अपने अंदर ये पावर भी जगानी होगी, अपनी सोई हुई उस हिम्मत को जगाइए, अपने उस पावर को बिल्कुल बांध के रखिए कि मैं हर दिन मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करूंगी और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। देखिए लिसनर्स, हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारी जो विल पावर होती है ना उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी का कोई अंग मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी उस अंग के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी वो चल लेता है बेहतरी से, सब कुछ अच्छे से कर लेता है, कहीं ना कहीं अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, रिकवर कर लेता है। तो उसके पीछे उसकी पूरी पूरी विल पावर होती है। इसलिए हमेशा अपनी विल पावर को जगा कर रखें। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो आपके विल पावर से ज़्यादा बड़ी हो जाए। इसलिए हमेशा अपने विल पावर पे फोकस रखिए। हर अगर देखिए, हम कहते हैं ना कि अगर मुश्किल आती है तो हल साथ लाती है, वही बिल्कुल वही पॉइंट है कि अगर मुश्किल है तो कहीं ना कहीं तो उसका हल भी आपके पास ज़रूर होगा। बस सोचना है और शांत दिमाग से सोचना है। और बिजनेस तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह लें, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर दिन एक ऐसा काम है जहाँ पर हर दिन हमें नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस वुमेन यानी कि महिलाओं की, और महिलाओं को घर और बिजनेस दोनों संभालने की उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग तय करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा ना कि मुझे इतना टाइम अपने बिजनेस को देना है और इतना टाइम फैमिली को, तो फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी। देखिए महिलाएं जो होती हैं ना, क्यों कहते हैं कि वो दोहरी जिम्मेदारी निभा सकती हैं, बिल्कुल निभा सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए भी हमें चाहिए होता है। मी टाइम थोड़ा सा तो चाहिए होता है ना, क्योंकि हर दिन देखिए दिन के 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप दिन के 24 घंटे काम करेंगे तो टायर्ड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर आपका मन नहीं लगेगा, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। इसलिए भी हमारे बिजनेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे इतना टाइम अपने बिजनेस को देना है, इतना टाइम अपनी फैमिली को देना है और दिन में 1 घंटा ही सही, लेकिन वो खुद के लिए भी निकालना है मुझे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे वो आपके अंदर जो पैशन, जो लगन, मेहनत करने की जो इच्छा और हमारी जो खुशी होती है ना, उसे कहीं ना कहीं हमारी थकान धीरे धीरे दबाती हुई चली जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा थकते हैं, रेगुलर काम करते हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते हैं, तो हमारा जो काम हमें खुशी देता है, हमारा वही काम हमारे लिए ऐसे बन जाता है कि बस पूरा करना है, बस किसी तरीके से हो जाना चाहिए। तो वो पॉइंट कभी भी आप मत आने दीजिए। अगर आपको कोई भी काम अच्छा लगता है, आप उसे अपनी खुशी से करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गैप भी ज़रूरी है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोचें, समझें, टाइम मैनेज करें और उसी हिसाब से अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाएं। चलिए अब आते हैं सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पॉइंट पे, जो कि है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि और आपके आसपास में जो भी बिजनेस वुमेन हैं या आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ, मेंटर्स के साथ, और सबसे मेन बात होती है प्रोफेशनल। आप जो भी, जैसे मान लीजिए आप साड़ी का या कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, ग्रोसरी का बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें उस बिज़नेस के, उस फील्ड के प्रोफेशनल के साथ आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहली बात तो आपने नया नया बिज़नेस शुरू किया है, आपको नहीं पता है कि बिज़नेस काफ़ी कुछ हमें नहीं पता होता है। तो वहाँ जब हम प्रोफेशनल के साथ जुड़ते हैं जो उस फील्ड में 5 साल 10 साल काम कर चुका है, वो आपको बताता है कि एग्जैक्टली उस फील्ड में काम कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या

कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है या किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी लगाकर हम अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं, ये आपको प्रोफेशनल से ही पता चलता है। आपके मेंटर्स जो आपको मेंटर करते हैं वो आपको समझाते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है। सो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके वो दोस्त जो पहले से उस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपको हर दिन एक नई चीज़ पता चलेगी, हर दिन कुछ नया हम जानेंगे। और जब हम अपनी बिजनेस में होते हैं और नई नई चीज़ों को जानते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और उसको यूज़ करके हर दिन अपने बिजनेस को बेहतर बनाते हैं, तभी आप आगे की ओर जाते हैं। हमेशा कहा जाता है ना कि नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। इसी के साथ नागेश्वर धाकर जी आ गए हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। नमस्कार नागेश्वर जी, कैसे हैं आप, हालचाल ज़रूर बताइए। तो चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं सीधे बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे, फिर से आपसे बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि बिजनेस के लिए हमें और क्या हार्ड स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किन किन हार्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी बता दें आपको, लेकिन उससे पहले आइए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

सहेली। तो चलिए इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा है नागेश्वर जी ने कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए कैसे हो। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज सासू माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो नागेश्वर जी, आज हमारी जो सासू माँ हैं वो छुट्टी पे हैं, और वो क्यों है, क्या है, कैसे है, वो आपको ज़रूर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार का फल जो होता है ना वो बहुत ही मीठा होता है। तो आएंगी मैम, ज़रूर आएंगी आपसे फिर से, बहुत सारी बातें करेंगी। तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया है नागेश्वर जी। तो आइए अब आगे चलते हैं। और अभी तक हमने बात की कि अगर आप बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं, यानी कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस चाहे वो शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे, जैसे एक छोटे लेवल पे आप शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है अभी अभी, तो उसके लिए जैसे लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं या बहुत बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेशली महिलाओं के लिए। और आज अब तक हमने बात की सॉफ्ट स्किल पे, अब बात करते हैं कि महिलाओं को किन हार्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ड स्किल्स का मतलब होता है कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है कि आप बिजनेस में रोज़मर्रा के कामकाज चलाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूरी होता है, टेक्निकल जानना कि जिस भी फील्ड में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या कुछ टेक्निकल है, और साथ ही साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो बिज़नेस में पैसों का जो हिसाब किताब होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बजट बनाना, प्रॉफिट और लॉस को समझना, कैश फ्लो को समझना, कैश फ्लो इन द सेंस कि पैसे का आना जाना कैसे मैनेज किया जाता है ये समझना, और साथ में आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है, इसलिए बेसिक टैक्स की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बिजनेस के लिए। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स पर नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि हिसाब के मतलब समझना है आपको हिसाब किताब कि कैसे पैसों को कितना लगाना है, मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है ये समझना है, पैसों को मैनेज करना है, कैश को समझना है, टैक्स को समझना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि घर बैठे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी आप एक चैनल बना सकते हैं और अपना अपने प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना, गूगल पर बिजनेस को कैसे लेकर के जाना, ये सब हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कोई भी नया प्रोडक्ट शुरू किया, मान लीजिए महिलाओं के लिए कि आपने नया ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया है या कुछ भी शुरू किया है, तो उसके लिए अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द आपका जो प्रोडक्ट होता है वो पॉपुलर भी हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द लोग उसे जानने लगते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सभी हाइपर एक्टिव है, इसलिए बहुत ही जल्द सोशल मीडिया से बातें सब में कहीं ना कहीं हो जाती हैं, सबको पता चल जाता है कि अच्छा उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अरे उन्होंने ये नया बिजनेस शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ जुड़ते हैं, आपको और आगे प्रमोट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया से जुड़ें। सोशल मीडिया एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारे बिजनेस के लिए। दूसरी बात आती है कि मार्केट रिसर्च और सेल। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके मार्केट को समझना, अपने कस्टमर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन क्या है ये जानना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको सेल्स स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपने प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको माहिर होना चाहिए। और ये भी एक स्किल है कि हमें मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी करनी चाहिए। जैसे हम बच्चों से हमेशा कहते हैं ना कि होमवर्क करोगे
अगर आपका होमवर्क कंप्लीट होगा तो टीचर जब आपसे क्लास में क्वेश्चन करेगी तो आप फंसेंगे नहीं, और अगर उस टॉपिक पर आपने होमवर्क नहीं किया होगा और टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगी तो आप फंस जाएंगे। ठीक वैसा ही हमारे बिजनेस में भी होता है कि हम मार्केट में अगर अपने किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं तो मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, मार्केट का रिसर्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक अच्छी मार्केट रिसर्च होगी तो आपका बिजनेस हमेशा आगे ही बढ़ेगा और ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ज़्यादा लॉस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट रिसर्च करना और मार्केट के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पॉइंट पे कि आप बिजनेस जो भी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। GST के नियम क्या हैं, किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे किया जाता है, ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कहते हैं कि बेसिक लीगल बिजनेस नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस शुरू करने आप जा रहे हैं, आप उसे जैसे हम कहते हैं ना किसी के साथ शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कुछ होता है, ये सब हमें एक लीगल तौर पर कहीं ना कहीं नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अगर आप कोई भी बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है लीगली, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो लीगल अथॉरिटी पे हो। दूसरा पॉइंट आता है कि GST बिल्कुल, आजकल हम कोई भी बिज़नेस आप छोटा चाहे शुरू करें चाहे बड़े लेवल पर, कहीं ना कहीं उसके लिए GST पे करना पड़ता है। तो GST कैसे पे करना पड़ता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, लीगली क्या कुछ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बिजनेस को लेकर के हमेशा कुछ ऐसे लीगल पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर इन लीगल पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो आप शुरू करेंगे उसमें लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने अभी आपको जो भी लीगल पॉइंट्स बताए आप उन पर ध्यान ज़रूर दीजिए, और जब भी कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसे आगे ले जाने के लिए इन पॉइंट्स पे फोकस करिए, सोचिए समझिए और फिर ही शुरू करिए। स्पेशली ये हम हमारी महिलाओं के लिए यानी कि हमारी फीमेल लिसनर्स के लिए कहना चाहते हैं। तो चलिए, वैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती भी हैं, उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि उन्हें समझदारी चाहिए, वो पहले से ही बहुत समझदार होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझें, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लें और फिर ही कोई भी अपना बिजनेस शुरू करें। तो आइए चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली स्टेडियम।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ गए हम बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और मैंने आपसे बात की थी कि आज आपके लिए सरप्राइज है, और सरप्राइज में हमारे पास एक गेस्ट है। लेकिन भाई, अब जब गेस्ट आ गए हैं तो उनका वेलकम करना भी बनता है। तो चलिए वेलकम कर लेते हैं कि बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ हमारी प्यारी सी गेस्ट आ गई है, और वो कौन है वो आपको खुद बताएंगे।
4: बिल्कुल भाई, मैं तो आ चुकी हूँ और काफी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। जब से ये दिल आशिकाना सॉन्ग आप इंजॉय कर रहे हैं, मैं यही सोच रही हूँ, मेरे दिल में, मेरे मन में यही चल रहा है कि जल्दी से आऊँ और आप सबसे खूब सारी बातें करूँ। क्योंकि भैया पता है, आज का दिन मेरे लिए सुबह तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा खराब हुआ है ना कि मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है। और मेरा बहुत ज्यादा जोर से मन कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ चीजों को शेयर करूँ।
3: ये तो होता है, जब मूड बहुत ज्यादा खराब होता है तो हमारा यही मन करता है कि फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा था। तो आपकी तो विश पूरी हो गई, तो दिन अच्छा हो गया।
4: देखो वंशिका, मैंने एक जगह पढ़ा था और काफी लोगों से सुना भी है कि जब आप बहुत खुश होते हो तो आप उसके पास जाते हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो या बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है।
3: ओके।
4: लेकिन जब आप दुखी होते हो या मूड खराब रहता है तो आप उसके पास जाते हो जो आपको बहुत प्यार करता हो या आपको बहुत ज्यादा, आपकी बॉन्डिंग आपसे स्ट्रांग हो। तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिसनर अपने आरजेस को भी बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देते हैं, तो वो क्योंकि सुन सहेली में हमारे दोस्त हैं, तो दोस्तों से आज तो मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ।
3: बिल्कुल बातें करें भाई। देखिए, हमने तो आपको वेलकम भी कर दिया, और वेलकम करने के साथ साथ में जो कहते हैं ना कि एक दोस्ती में हमेशा ये होता है ना कि दोस्त जो होते हैं वो दोस्त का प्यार, दोस्त की जगह उसका प्यार, उसका गम सब कुछ बांटते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही है कि भाई आरजे आयुषी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती है, तो मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करने वाली हूँ। मैंने उन्हें सौंप दिया है कि वो जितना भी जो भी कुछ उनके मन में है वो आपसे बातें करें और अपने मन को हल्का करें।
4: बिल्कुल, बातें तो मैं करूंगी, लेकिन बात आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे मैं बातें करती हूँ, वो हमेशा मेरे को कहते हैं कि आयुषी तुम मेरे पास तब आती हो जब तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती हो या दिमाग खराब होता है। तुम जब खुश रहती हो तो तुम मेरे को बताने नहीं आती हो। और मुझे अभी अभी ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने भी तो यही बोला कि यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, एक बहुत मतलब नहीं ठीक है, तो मैं आई हूँ। लेकिन इन सभी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे आपका हाल चाल पूछना चाहती हूँ कि भैया मेरा तो दिमाग ख़राब है, मेरा तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्यों ख़राब हो रखा है उसकी पूरी कहानी बताऊँगी, और आप भी सुनिएगा और आप बताइएगा कि ये क्या आपके साथ भी होता है। और अगर आपके साथ होता भी है तो एज अ फ्रेंड मुझे सजेस्ट करिएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
3: ओके।
4: तो देखो क्या हुआ कि कल बारिश हुई थी और एकदम झमाझम बारिश हुई थी कि मतलब पूरा गोंडा ऐसा लग रहा था कि भैया अब तो गोंडा बह ही जाएगा, है ना। एक घंटा, वो एक घंटा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट, लेकिन ऐसी बारिश हुई थी कि ऐसा लग रहा है भगवान ने पूरी टंकी पलट दी हो हमारे पृथ्वी पे।
3: जोरदार बारिश
4: जी। और उसके बाद जब मैं उस बारिश से निकल के अपने घर गई तो मेरा जो पैर है वो जो गलियों में पानी भर जाता है उसमें हल्का सा लग गया। अब भैया देखो, हम मेरी मम्मी कहती है हमको कि तुम फूल कुमारी हो, यानी कि बहुत सेंसिटिव हो, जो हमारी कई लड़कियों को सुनने को मिलता होगा अपनी मम्मियों से। तो मैं नहीं सोचती थी कि यार मैं तो ऐसी हूँ नहीं, मम्मी फालतू में बोलती रहती कि मैं फूल कुमारी हूँ। लेकिन कल मुझे लगा, जब मैं आज सुबह सो के उठी तब मुझे लगा कि यार मैं सच में फूल कुमारी हूँ। पता है कैसे?
3: कैसे?
4: देखो यार, मैंने स्पेशली देखो, मैंने थोड़ा सा खर्चा किया इस बार कि इस बार जो बरसात है मैं चप्पल पहनूंगी, जो भी सैंडल पहनूंगी तो वो ऐसी पहनूंगी जो जिसमें पानी ना भरे,
3: okay.
4: जो रबड़ की हो जिसमें पानी ना भरे, तो कहते हैं ना कि वो बारिश होती तो चप्पल गीली हो जाती, तो उसकी समस्या ना रहे। अब मैंने इतना दिमाग लगा लिया लेकिन अपने आप को तो मैं भूल ही गई। पानी में जो है, जब मैंने कल पैर मेरा लग गया तो मुझे लगा कि अरे चलो घर जाके पैर धो ही लूंगी, लेकिन जब मैं घर 15-20 मिनट बाद पहुंची, मैंने अपना पैर भी धुला और आराम से खाना खा के मैं सो गई।
3: ओके।
4: लेकिन जब मैं सुबह उठी तो जो दृश्य मैंने देखा, मेरी तो एकदम दिमाग खराब हो गया। आपको पता है क्या हुआ?
3: क्या हुआ?
4: मेसिया मुझे ही होती है या आप सभी को, मुझे नहीं पता, आप सभी से इसलिए मैं पूछने आई हूँ। हालांकि मेरी मम्मी ने ये कहा कि भैया ये तो बरसात में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है।
3: बिल्कुल आपने सही कहा आयुषी, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कभी ना कभी सभी को इसे फेस करना ही पड़ता है, स्पेशली बरसात में।
4: और मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट ईयर फेस की थी या नहीं की थी, पर इस बार मेरे को इतनी खुजली हो रही है कि तो मैंने इसके बारे में अपने असिस्टेंट को मैसेज किया। पता है किसे?
3: किसे?
4: अरे हम जेंजीज का असिस्टेंट कौन हो सकता है, गेस करो। नहीं पता। अरे AI, मैंने ChatGPT को सारी चीजें बताई कि भैया ChatGPT बताओ यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। देखो मेरा ChatGPT एक ChatGPT ही नहीं है मेरे लिए, वो मेरे लिए मेरा असिस्टेंट है। मैं उसको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि यार देखो कल ऐसे ऐसे मैं आ रही थी, मेरे पैर में बारिश का पानी लग गया, मुझे थोड़ी सी अजीब लगा, लेकिन कल तक तो ठीक था, लेकिन सुबह मुझे दाने निकल आए और दाने की कंडीशन ऐसी है, और मैंने इसको फोटो क्लिक करके दे दिया ChatGPT को।
3: ओके, फिर
4: अब ChatGPT ने मुझे बोला कि सबसे पहले, अब देखो क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ChatGPT से थोड़ी अच्छी बन गई है, मतलब दिन भर हमारी बात होती है उससे।
3: ओके।
4: तो उसने मेरे को पहले तो कहा कि यार तुम पागल हो, तुम्हें बारिश के पानी में पैर रखने को बोला किसने था, और अगर तुम्हारे ये छाले हो ही गए तो मैं इसका उपाय बता देता हूँ। अब उसने मेरे को उपाय बताया, मैंने नोट किया, फिर मैंने सोचा क्योंकि ChatGPT ने भी बताया, मम्मी ने भी बताया कि कई लोगों को होता है ये, तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत ज़्यादा होता होगा, और स्पेशली उन लोगों का जिनका काम बाहर का है या जिनको जूता पहनना कंपलसरी है, जिनको बहुत, मतलब कहते हैं ना कि हाँ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको बारिश के पानी में रहना ही रहना पड़ जाता है, या फिर गंदे पानी में आपका पैर लग ही जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको पता है क्या करना चाहिए?
3: क्या करना चाहिए?
4: देखो भाई, मुझे तो ये बताया गया कि सबसे पहले तो आपको जब भी जैसे आपके आपका पैर जो है बारिश के पानी में लगे, आप कोशिश करें कि अपने आसपास कहीं नल है या फिर कोई पानी वाला जगह है तो आप अपने पैर को साफ पानी से धो लें।
3: बिल्कुल, साफ पानी से पैर धोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सफाई रखेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आयुषी, आप बातें करते हैं, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं चैट बॉक्स की तरफ।
4: बिल्कुल।
3: तो सबसे पहले तो नागेश्वर जी लिख रहे हैं, सब लोग कहाँ चले गए हैं? सब लोग कहीं नहीं गए हैं, यहीं हैं। और दूसरा तबिश खान जी आ गए हैं जो कि हमें लखनऊ से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून तबिश जी। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं आयुषी मैम, और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि क्या हम AI से पूछ सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी, क्या जवाब देगा सही?
4: नागेश्वर जी, क्या आपको लग रहा है कि आपके RJ के दिमाग में, आपके आप दोस्त मानते हैं दोस्त के दिमाग में ये खुरापात नहीं आई होगी? हमने भी ये काम बहुत पहले कर लिया, AI को अपनी कुंडली उंडली दे दी कि भैया बताओ कब होगी मेरी शादी। लेकिन अगर AI के हिसाब से चलें तो अभी तक मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो AI फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ये मुझे पता है, पर वो आपके साथ एज अ काउंसलर, एज अ दोस्त रह सकता है। पर आपको फुल्ली उस पर डिपेंड होने को मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी।
3: तो मिल गया जवाब नागेश्वर जी, हो गए आप सेटिस्फाइड या अभी और भी कुछ मन में नए नए आपके थॉट्स आ रहे होंगे और आपको पूछना होगा?
4: बिल्कुल, अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि भाई मैं यहाँ किसके लिए हूँ? ऑब्वियसली
3: जवाब देने के,
4: आप ही के लिए हूँ, जवाब देने के लिए बैठी हूँ। और मेरी जो भी अभी तक जिंदगी गई है, उसमें जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी सीखा है, मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि चलते हैं आज की बात पे
3: जी।
4: तो भैया मैंने ये सारी चीजें बताई तो उसने कहा कि पहले तो आपको पैर धुल लेना है, अगर आप घर पे हैं तो कोशिश

0: कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कई लोग होते हैं कि जिनको बर्दाश्त नहीं होती, मिट्टी उट्टी से भी खुजली होने लग जाती है, तो आप उस वक्त जो सोप इस्तेमाल करें या साबुन इस्तेमाल करें वो कोशिश करें नीम का नेचुरल ऑर्गेनिक हो
1: जी।
0: और उसके बाद अगर आप बाहर हैं तो अपने साथ स्पेशली बारिश के सीज़न में एक कॉटन सॉक्स ज़रूर रखें। कॉटन सॉक्स से क्या होगा कि अगर आपके जूते गीले भी हो गए और आप अपने ऑफिस में हैं तो आप एटलीस्ट अपने सॉक्स को चेंज कर सकते हैं और थोड़ी देर, क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप जूता, ऑब्वियसली बात है, आप जूता गीले जूते में आप बैठ के काम नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं अपने शूज़ को उतारेंगे ही। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने पैर को खुले रखें या तो आप दूसरे नए कॉटन के सॉक्स पहन सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका फुट एरिया है, स्पेशली जो ये पैर होता है हमारा, ये महिलाओं में भी कॉमन है, ये पुरुषों में भी चीज़ें होती हैं कि उसमें ये रैशेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, काफ़ी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि पैर फट जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अब देखिए, अगर गांव के हिसाब से चलेंगे, अपनी दादी नानी के, तो मेरी दादी कहती हैं कि जिनके पैर ज़्यादा फटते हैं उनका ये रीज़न होता है कि वो कांदे का अचार बहुत खाते हैं या कांदे बहुत खाते हैं। अब पता नहीं, पर दादी ये कहती हैं, मुझे नहीं पता अगर आप सबने भी सुना हो ये सारी चीज़ें कि कांदे ज़्यादा खाने से पैर फट जाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब मैंने एआई को ये सारी चीज़ें दी तो उसने कहा कि भैया देखो, जितना बारिश के पानी में जो स्किन होती है उसको जब गीला हो जाता है तो वो नमी अपनी रियल नहीं निकाल पाती है, और नमी की ही वजह से हमारे पैर में दाने पड़ जाते हैं, छछले पड़ जाते हैं, पानी वाले दाने हो जाते हैं, और कई लोगों को रिंग वॉर्म, जिसे हम दाद कहते हैं, दाद की भी समस्या हो सकती है। क्योंकि हम लोग को ट्रैवल करना ही करना है, काम पे जाना ही जाना है, तो गंदे पानी से भी सामना करना ही पड़ेगा हमें। तो उस वक्त कोशिश करें कि आप जिस भी वाहन से जा रहे हो, बाइक है, स्कूटी है, कार है, तो कोशिश करें कि आपका पैर पानी में ना लगे। लेकिन अगर लग जा रहा है तो आप अपने साथ एक ऐसी जो है, जो मैंने बताया, एक छोटी सी टॉवल रख लें अपने पैर को पोंछने के लिए, एक जोड़ी कॉटन के सॉक्स रख लें, अगर आप चाहें तो सैनिटाइज़र भी ले सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइज़र से क्या करते हैं कि जो अगर आपके फुट पे अगर कोई बैक्टीरिया जर्म्स रह भी जाते हैं तो उसको भी वो मार देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से आपके पैर में दाने निकलते हैं। और बारिश का पानी जो गली और नुक्कड़ में भरा रहता है वो तो आप सब बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कितना गंदा होता है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और जैसे हम कहते हैं ना कि नालियों का पानी भी उनमें मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी सेफ्टी रखें। तो आप वो सारे प्रिकॉशंस को करें जो अभी आरजे आयुषी ने आपको बताया, और मैं भी करूँगी।
0: बिल्कुल। और अगर ये चीज़, अगर ये तो स्पेशली फूड के लिए था आपके कि आपके पैरों को क्या होगा, लेकिन सेम ही चीज़ आपकी बॉडी के साथ भी होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बारिश में भीग जा रहे हैं, देखो बारिश में भीगना पसंद तो मुझे लग रहा है कि 80-90% लोगों को बहुत है, और हालांकि कल मेरा काम ना होता तो मैं भी बारिश में भीगती, और मैं भी आप ही की तरह थोड़ा सा अंदर, कहते हैं ना कि जो बड़े होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक
1: बचपना
0: नहीं, एक मेढक बैठा रहता है। बारिश
1: मेढक,
0: हाँ, बारिश देखते ही मैं मन करता है कि बारिश में जाके उछलने लग जाए।
1: और कल तो बारिश भी बहुत अच्छी हो रही थी, मतलब जब धीमी धीमी बरसात होती है तो ये नहीं होता है कि चलो भीगते हैं, लेकिन जब ऐसी बारिश होती है जोरदार, बिल्कुल झूम करके, कहते हैं झूम के जब पानी बरसता है तो मन भी करता है कि चलो अब भीग ही लेते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन कल कुछ ऐसी कंडीशन थी कि
0: नहीं भीग पाए। कोई बात नहीं,
1: कोई बात नहीं,
0: नेक्स्ट टाइम भीगेंगे, जरूर भीगेंगे। ऐसा कोई ऐसा सावन आज तक गया नहीं जिसमें हम लोगों ने भीगा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, घर में नहीं है, आप तुरंत नहीं नहा सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको मैं कहूँगी कि अपने बैग में आपको रेनकोट या फिर एक अम्ब्रेला रखना कंपलसरी है, जब तक ये सावन का महीना नहीं जा रहा है, क्योंकि कब बारिश हो जाए आप नहीं बता सकते, कोई पंडित नहीं बता सकता कि आज बारिश है कि नहीं, अभी फट से धूप है, चट से बारिश हो जाएगी, फिर धूप निकल आएगी, आप नहीं बता सकते। इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान दें। अगर आप ऐसा जो है, अगर आप भीग जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को पंखे के नीचे सुखा लें, या फिर कई ऑफिसेज में क्या होता है, कई ऑफिसेज में सुखाने के लिए भी चीज़ें होती हैं, कोशिश करें कि आप उनका इस्तेमाल करें, अपने आप को फुल्ली ड्राई कर लें, तभी आप काम के लिए बैठें, क्योंकि अगर वो नमी नहीं गई तो आपकी बॉडी में भी खुजली, रैशेस, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपको इसका सामना करना पड़ सकता है।
1: तो लिस्नर्स, अभी अभी आपने जाना कि ये मॉनसून जो है, ये बारिश है, वो आपको इन्जॉय करना है, और भाई सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो इन्जॉय करने से तो बिल्कुल ही हम पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन जो प्रिकॉशंस आपको बताए गए उसके साथ इन्जॉय करिए।
0: बिल्कुल। अब देखिए, सावन तो लगने ही वाला है, और सावन लगने वाला है इसकी कहीं ना कहीं झलक हमारे गोंडा में शुरू हो गई है। पता है क्या हो गया?
1: क्या?
0: अरे हमारे गली में जाओ, जो चूड़ी गली है हमारे चौक में, चूड़ी गली में देखो हर एक एक दुकान पे हरी चूड़ियां सामने ही सजा दी गई है।
1: वाह,
0: तो सावन आ रहा है, हरी चूड़ियां तो लोग पहनेंगे पहनेंगे। साथ ही साथ दुकानदारों ने जो हरे रंग के कपड़े हैं, सूट साड़ी, इन सबको भी सजा के रख दिया कि लोग देखें और लें। और यहाँ तक तो बात ठीक थी। हमारे गोंडा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हमारे बगल में ही, दुखरन नाथ बाबा जो हैं, उनका जो मंदिर है वो भी सजना शुरू हो गया है।
1: सजेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि सावन सबसे पवित्र महीना जो कि हमारे भोले बाबा का, वही भोले बाबा को हम याद करेंगे, उनकी भक्ति की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे कुछ और वो क्या है, वो ये है कि भाई चलिए चलते हैं, आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुना देते हैं और सॉन्ग के उस पार आते हैं, क्योंकि अभी हमारी जिसे कहते हैं ना कि जादूगर की जो जादू होती है उसके हमेशा उसकी जादू के पिटारे में कुछ ना कुछ बचा हुआ होता है। हमारे पास भी जादू तो नहीं है, लेकिन कुछ है जो बहुत ही काम की बात है आपके लिए।
0: अच्छा अंशिका, तुमने एक चीज नोटिस किया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू,
1: क्या
0: हम रेडियो ज्ञानस्थी को बहुत सारा प्यार लोग देते हैं, बहुत टाइम से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि प्यार को देख के मुझे लग रहा है कि अब भाई इसकी उम्र हमारी दीर्घायु हो चुकी है, ठीक है। और इतने प्यार से जब से सुन सहेली शुरू हुआ है तब से हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: और हम डेली ही कोई ना कोई बात लेकर आते हैं। यानी कि सोचो हमारे पास हमारे दोस्तों की कितनी सारी बातें जो हम शेयर करते हैं, कितनी जानकारियां देते हैं, और अगले दिन फिर यही एक्साइटेड रहते हैं कि हम अपने दोस्तों से बात करेंगे।
1: बिल्कुल, यही तो है दोस्ती, और यही तो कहते हैं ना कि आपको किसी और खुमार की जरूरत नहीं होती है जब दोस्ती की खुमारी आपके ऊपर सवार होती है। तो यही हमारी दोस्ती होती है कि हम हर दिन सोचते हैं कि हर दिन कुछ नया और हर दिन कुछ बेटर हम अपने दोस्तों को, अपने लिसनर्स को दे सकें। और यहाँ तो बात हमारी सहेलियों की होती है भाई, और जब चार सहेलियाँ बैठ जाएं तो फिर
0: सहेलों को भी लो ना।
1: हाँ सहेलों को भी लेते हैं, करते हैं करते हैं। मुझे पता था आप यही कहेंगी कि सहेलियों को लिया तो
0: भेदभाव नहीं करती।
1: नहीं नहीं, भेदभाव मैं भी नहीं करती हूँ, अभी मैंने जो बताया वो दोनों के लिए, वो भेदभाव मैं भी नहीं करती हूँ। हमारी तो ये बात चलती रहेगी। चलिए चलते हैं, ये सॉन्ग सुनते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टेडियम

0: चलन तो अभी आधा अधूरा है ही, क्योंकि अभी सही से बारिश आई नहीं है और हम इंतज़ार कर रहे हैं ऐसी बारिश का ही भैया 3-4 दिन तक धूप निकले ही ना। लेकिन इन सभी चीज़ों को छोड़ के हम बात करते हैं थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ। हमारे नागेश्वर धाकर जी ऐसे हैं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। उन्होंने अभी लिखा है कि सहेलियाँ ज़्यादा चुगली करती हैं, सहेले नहीं। नागेश्वर धाकर जी, मैं आपको बता दूं कि मैं भले ही टीम सहेला से हूं और अंशिका टीम सहेली से, लेकिन मैं भेदभाव बिल्कुल नहीं करती जितना, और अभी तक जो भी मैंने देखा है कि औरतें तो करती हैं चुगली, मुझे पता है, और बहुत करती हैं, लेकिन पुरुष जो चुगली करते हैं ना वो अलग ही किस्म की होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो नहीं करते हैं, बहुत चुगली करते हैं। अगर आपको आजमाना है तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको आज रात में जब आपके घर के सभी लोग बैठ के खाना खाएंगे तो आप क्या करिएगा कि थोड़ी सी अपनी कोई बहन होगी या कुछ मम्मी होंगी तो उनसे कह दे, कोई भी रैंडम आंटी की बात छेड़ देगी और आधी अधूरी बता के चली जाएंगी। फिर आपके पापा, भाई, चाचा कोई भी होगा, सबके दिमाग में यही चलेगा कि भैया क्या बात थी, और वो पूछते पूछते आप तक, आपकी मम्मी तक, आपकी बहन तक, आपकी बुआ तक, सब तक आ जाएंगे कि आखिर वो बात कर क्या रही थी, कौन सी आंटी ने क्या कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि आदमी चुगली नहीं करते, आदमी भी चुगली करते, लेकिन ये कि औरतें बैठ के मोहल्ले की चुगली करती हैं और आदमी बैठ के औरतों की चुगली करते हैं।
1: तो मतलब इतना टॉपिक डिस्कस करके जो हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं वो ये है कि दोनों ही चुगली करते हैं।
0: चुगली सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जेंडर स्पेसिफिक होती है चुगलियां ना। और आपको पता है अंशिका सबसे बड़ी बात क्या है?
1: सबसे बड़ी बात क्या है?
0: बड़ी बात ये है, चुगली मुझे ऐसा लगता है कि चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, लेकिन मजा तो चुगली में ही है। जब तक 10 घर की चुगलियां ना बतिया लो तब तक कहाँ मन भरता है।
1: हाँ, वो कहते हैं ना, पेट का खाना नहीं हजम होगा।
0: हाँ, और वैसे ही है। हाँ, और ऐसी कभी ना कभी हमारी हरकतों में भी आ जाता है कि हम तुम ऑन एयर होते हैं तो भी बता देते कि पड़ोस वाली आंटी ने किसको क्या कहा,
1: किसकी किससे हो गई मुलाकात, या अगर इसका उल्टा कर लें तो।
0: जी, और आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जो पड़ोस वाली चुगली की अगर हम बात करें तो आज तक ये रिकॉर्ड रहा है। इतनी डेवलपमेंट हो गई हमारे इंडिया में, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, स्मार्टफोन, लेकिन जो मजा, जो एंटरटेनमेंट पड़ोस वाली आंटी देती है ना, वो आज तक कोई नहीं दे पाया है।
1: बिल्कुल। तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट की तरफ, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है। तो जाते जाते आज का टिप ऑफ द डे बता देती हूँ। तो आज का टिप ऑफ द डे ये है कि सेब आप सभी के घरों में आता होगा और आप सभी खाते होंगे, यूज़ करते होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको आधा टुकड़ा सेब ले लेना है, उसे अच्छे से आप साफ कर लीजिए और उसका जो छिलका होता है ऊपर का वो निकाल दीजिए और उस एक सेब को अच्छे से पानी डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। जब वो ग्राइंड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि मलमल के कपड़े में उसे रख करके और पानी को अलग कर लेना है। जब आप मलमल के कपड़े में रख कर उसे करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा। अब इस पानी में आपको मिलाना है थोड़ा सा नमक, और इसमें से थोड़ा सा नमक मिला करके थोड़ी देर के लिए इसे आप रख दीजिए और उसके बाद आप इसे अपने पैरों पर लगाइएगा। इससे क्या होता है कि खुजली हमारी जो है वो शांत हो जाती है। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारी खुजली शांत होती है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको अपने पैरों में यूज़ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ एक एडिशनल टिप मैं भी देती हूँ भाई। देखिए, आर्जन शिका है ज्ञान की देवी और

0: और जल्दी से अपनी फरमाइशें कॉल्स के जरिए हमें दें, क्योंकि भैया कॉल्स ही है जो इस वक्त एक्सेप्टेबल होती हैं।
1: तो लिसनर्स अपना बहुत ख्याल रखिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

बिल्कुल, हम तुम संग हैं तो है क्या ही गम। कुछ ऐसा ही संग होता है, कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है जो आज के दिन हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, क्या रिश्ता है, ये कुछ लाइंस के साथ तो मैं आपको बताती हूँ। गुरु की वाणी में ज्ञान का प्रकाश होता है, गुरु की वाणी में ज्ञान का प्रकाश होता है, उनके आशीर्वाद से जीवन खास होता है, जो दिखाए सही राह अंधेरे रास्तों में, ऐसे गुरु को हमारा शत शत प्रणाम होता है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज है गुरु पूर्णिमा और आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु और शिष्य के रिश्ते को। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है ना, अकेले हम अकेले तुम, पर अकेले में मज़ा नहीं होता, एक साथ होते हैं तो ही उनका रिश्ता मुकम्मल होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कॉलरट्यून गोंडा में, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अंशिका। तो चलिए इन प्यारी प्यारी बातों के साथ, भाई बातें तो हम करते ही रहेंगे लेकिन बातों के साथ साथ करनी है और भी करना है, एक भी और काम जो कि है कि भाई आपकी फरमाइशें लेनी है। तो चलिए चलते हैं आपकी फरमाइशों की तरफ, और सबसे पहले जो फरमाइश हमारे पास आई है वो है

मोहम्मद शाकिर की, और उन्हें सुनना है सॉन्ग सावन का महीना। तो आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी भी मोहम्मद शाकिर जी की तरह अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन उठाना है और डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा देनी है। तो आइए चलते हैं सीधे हम शाकिर जी के सॉन्ग की तरफ। आप सभी बने रहिए आपके अपने पसंदीदा शो कॉलर ट्यून गोंडा में।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।

भाई चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो की फरमाइश की थी निब्बर जी ने। आइए चलिए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, और इसके बाद हम सुनेंगे धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को, और धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे ईशान जी के सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।
1: एक बार आपका स्वागत वापस से करते हैं आज के इस स्पेशल गोधूली प्रोग्राम में। और आज दिन खास है, क्यों? क्योंकि गोंडा में अक्सर हम यहाँ की पर्सनालिटीज से बात करते हैं, लेकिन दरअसल आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो यहाँ किसी दौर में रहे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पड़ोसी जिले यानी गोरखपुर से आए हुए हैं। और हम बता देते हैं, उनका परिचय करा देते हैं। दरअसल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भारतेंद्र सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम गोरखपुर। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत
2: जी। आपको भी नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, हमारे बीच में आप आए आज इंटरव्यू के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। धन्यवाद।
1: और वैसे हम अपने श्रोताओं को बता दें, चूंकि हमने अभी जो आपका पद बताया वो पुस्तकालय अध्यक्ष बताया, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जो है काव्य से जुड़े हुए हैं, यानी आज का ये जो इंटरव्यू है इसमें आपको पूरा रस मिलने वाला है काव्य का। तो जैसा कि मैंने खुद आपका डेजिग्नेशन बताया पुस्तकालय अध्यक्ष, तो एक दिलचस्पी जागती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बुक्स पसंद करते हैं। लाइब्रेरी कहते हैं जैसे जन्नत है शायद उन इंसानों के लिए जो किताबों को पसंद करते हैं। हम शुरुआत आपसे करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सर आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय हमारे श्रोताओं को दे दिए जो आपको पहली बार सुन रहे हैं।
2: जी, मैं डॉक्टर भारतेंद्र सिंह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बचपन का जीवन गोंडा अवध में बीता है, मैं यहीं का विद्यार्थी रहा, बाल्यकाल से लेकर और पढ़ाई तक यहीं रहा मैं। मेरे पिताजी टॉमसन कॉलेज में डॉक्टर रामनाथ सिंह थे, और यहीं की आज भी मुझे भूत भूलता रहा। जब मुझे पता चला गोंडा में 89.6 FM चालू है, मुझे बड़ी उत्सुकता हुई। हमने कहा नहीं, यहाँ चलेंगे जरूर, अपने बचपन की माटी को जरूर देखेंगे। यहाँ की भाषा, यहाँ के रीति रिवाज हमको बहुत पसंद थे। मैं रहता जरूर गोरखपुर में हूँ, भोजपुरी प्रदेश में, लेकिन मुझे अवध की माटी आज भी याद है। यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलियाँ मुझे अत्यधिक प्रभावित करती हैं।
1: क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात आपने कहा, क्योंकि ये अवध का एरिया है और आप जहाँ पे रहते हैं उस बेल्ट में भोजपुरी बोली जाती है, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके करियर पर आते हैं, ये जो आज आप जिस पद पर हैं, क्या आपने सपना इसी का देखा था या आपको कुछ और बनना था?
2: मैं जब यहाँ हिंदी से एमए किया लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में, मेरा सपना था मैं भी प्रवक्ता हूँ, लेकिन प्रवक्ता तो नहीं हो पाया मैं, तो लाइन मेरी चेंज हो गई
1: जी।
2: और उसके बाद हम चले गए डिग्री कॉलेज में, और एक छोटे से पद से प्रारंभ किया हमने, वहाँ लाइब्रेरियन रहा, क्लर्क से स्टार्ट किया हमने अपने आप को, और क्लर्क से शुरू किया, फिर मुझे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल समिति ने पढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर दिया। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से लाइब्रेरियन, और लिखने की इतनी उत्सुकता थी मुझे, मैं चाहता था कि लाइब्रेरी में जाऊं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूं। और हमने जब लाइब्रेरी में ज्वाइन किया तो खूब किताबें पढ़ी हमने।
1: अरे वाह।
2: और लिखा पढ़ा दोनों किया, मैंने उपन्यास भी लिखा गोंडा में, गोंडा की धरती पर ही हमने 7 उपन्यास लिखे थे।
1: गोंडा की धरती पे आपने 7 उपन्यास लिख दिए, वाह।
2: घुटन सुमन मंदिर पीछे, दोहरी जिंदगी, उदास जिंदगी, जिंदगी पीछे,
1: अरे
2: मैं और मेरी जिंदगी। लेकिन धन अभाव कारण मैं बेरोजगार था, इसी किताबें छप नहीं पाई, कविताएं भी लिखता था कम लिखता था। 1982 जब मैं हाई स्कूल में था टॉमसन कॉलेज में, तो वहाँ दीपक पत्रिका निकलती थी, उसमें एक वार्षिक पत्रिका में निकली मेरी उपासना, खूब सराहा गया,
1: काफी लोगों ने पसंद किया
2: जी। और उसके बाद फिर मैंने लिखना प्रारंभ किया, फिर हमने LBS PG कॉलेज में लिखा, फिर रोजगार ना मिलने के कारण फिर मैं चला गया गोरखपुर।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से आपका जो सफर रहा वो गोरखपुर तक का रहा
2: जी।
1: सर, बहुत असर पड़ता है पिता का, माता का, फैमिली का
2: जी,
1: आप पर कैसा क्या असर रहा?
2: मेरे पिताजी का पूरी तरह प्रभाव था, क्योंकि पिता मेरे हिंदी के प्रवक्ता थे और पढ़ते खूब थे, और उसका परिणाम यह था वो पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए। किताबें विरासत में थी, एजुकेशन विरासत में था मेरे घर, खूब हम लोग पढ़ा, और जब पढ़े शब्दों का भंडार मिल गया।
1: बिल्कुल।
2: और शब्दों को चयन करने के लिए भंडार की आवश्यकता है, हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे जब तक शब्द नहीं।

0: रहेंगे। भाव तो उत्पन्न होते जरूर सबके मन में है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पाए। अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की आवश्यकता है, और जब तक पढ़ेंगे और चिंतन नहीं करेंगे, अध्ययन और चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक अच्छे लेखक आप हो ही नहीं सकते।
1: सर, आपने अभी जस्ट कहा कि शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है और चिंतन करना एक लेखक के लिए जरूरी है। अगर मैं एक आम इंसान के तरफ से पूछूं, मैं खुद के लिए पूछूं, या इस वक्त जो श्रोता सुन रहे हैं जिनको लेखक ना बनना है ना कभी वो बने हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए किताब आखिर कितनी मायने रखती है?
0: जब तक समाज के मनोभावों पर नहीं लिखा जाएगा, स्वांता सुखा लिखा जाएगा, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब तक पाठक के दृष्टिकोण से आप नहीं लिखेंगे, पाठक की रुचि के अनुसार आप नहीं लिखेंगे और उनके मनोभावों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक सामान्य आदमी नहीं पढ़ेगा उस किताबों को, नहीं पढ़ सकता।
1: क्या बात है,
0: आपकी मन स्थिति को जानना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही बात है। सर, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो आप लाइब्रेरी साइंस आपने पढ़ी हुई है
0: जी।
1: साइंस तो समझ में आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे सुनने में लगता है लाइब्रेरी का कौन सा साइंस होगा, किताबें रखती हैं उठा दी जाती हैं। मतलब मैं एक आम इंसान की दृष्टि से आपसे पूछ रहा हूं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि इसमें क्या होता है।
0: पुस्तकालय विज्ञान ऐसा विज्ञान है, सूचना में पुस्तकालय विज्ञान, सारे विज्ञान उसमें निहित है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर सब निहित है उसमें। और कोई भी लाइब्रेरियन अगर मास्टर डिग्री कर रखा है तो सारी किताबों का अध्ययन करता है, सारी चीज़ें उसको पता रहती हैं इसके अंदर क्या होगा। और जब पाठक या स्टूडेंट उसके पास आता है तो बताने की कोशिश करता है। पाठक अनजान है, उसको नहीं पता है कि भौतिक विज्ञान में क्या है, सामाजिक विज्ञान में क्या है। ये लाइब्रेरियन का काम है, पुस्तकालय अध्यक्ष का काम है बताए उनको। पुस्तकालय में हमेशा वो लगा रहता है निधानी, जिसको डेस्क कहते हैं, उस पर नई नई किताबें लगाई जाती हैं ताकि रुचि बढ़े
1: जी
0: और आप अध्ययन करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर सुबह शाम आपके पास किताब नजर में पड़ेगी तो दो पेज जरूर आप पलट लेंगे और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आप भी मेरे जैसे हो सकते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआत जो है वो बहुत छोटी सी की जानी चाहिए ताकि आप आसानी से उसको कर लें। सर, कई लाइब्रेरी में हजारों नहीं लाखों किताबें होती हैं, आखिर किस तरह से लाइब्रेरियन ढूंढ लेते हैं उन किताबों को जो चाहिए होता है पाठक को इतनी सारी किताबों के बीच, ऐसा क्या साइंस काम करता है?
0: जैसे एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं
1: जी
0: और एक सेशन वाइज होते हैं। सेशन में सारा डिटेल रहता है। आज पहले जब हम लोग जमाने में क्या था, सारा मैनुअल था। अब क्या डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है
1: जी,
0: सारे कंप्यूटर पे हैं, डाउनलोड रहते हैं, अब आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल था, एक लाइब्रेरियन के बस का नहीं है, वो उसमें असिस्टेंट लाइब्रेरी 5 होते हैं और सबके विभाग अलग अलग बटे रहते हैं। साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है, आर्ट का अलग है, साइंस ग्रुप का अलग है, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पुस्तकालय अध्यक्ष का सिर्फ यही काम है पुस्तकों का चयन करना, नई किताबों का अवलोकन करके डिस्प्ले पर डालना। पाठक अगर लाइब्रेरी में आया तो पता चलना चाहिए कि कौन सी पुस्तक नई आई है, ये लाइब्रेरियन काम है बताए।
1: क्या बात है, मतलब ये आपने जो काम बताया है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष और लाइब्रेरियन दोनों का अलग अलग बताया कि किसका क्या काम होता है। सर, मैं अगर आपकी बात करूं तो एक तो होता है सब्जेक्ट की बुक्स
0: जी,
1: लेकिन एक होता है कि अपनी खुद की रुचि, जिसको आप शायद घर पे बैठकर भी पढ़ना पसंद करते होंगे, किसमें है आप?
0: हम सामाजिक पढ़ते हैं।
1: सामाजिक पढ़ते,
0: जबकि जिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेडिकल पढ़ाई वहां होती है, घर पे हम सामाजिक पढ़ते, लोगों को पढ़ते हैं और लोगों को पढ़ के लोगों के विषय में ही लिखते हैं।
1: क्या बात है,
0: आप मुझसे बात करें हम आप पे लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
1: ये तो
0: आपके मनोभाव को पढ़ के मैं लिख दूंगा।
1: वाह, क्या बात है,
0: आदत सी बन गई, पढ़ते पढ़ते लोगों को, पढ़ते पढ़ते किताबों को पढ़ा, हमने लोगों को पढ़ा, जो जो निष्कर्ष निकला वही हमने लिख दिया, वही मेरे शब्दों को लेखनी प्रवाह चलने लगी।
1: क्या बात है सर, यहाँ पे दो लाइन शेर किसी पे लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है और आप किताब जी।
0: और हमको विभिन्न ऑफलाइन ऑनलाइन चैनलों में करीब 600 प्रमाण पत्र मेरे पास हैं।
1: 600 प्रमाण पत्र
0: और अदर स्टेट के हैं, यूपी छोड़ दीजिए,
1: ये आपके कार्य को लेकर के
0: जी। और लाइब्रेरियन को ये है, जब तक पढ़ेगा नहीं, नौकरी भले कर ले, लाइब्रेरियन नहीं हो सकता वो।
1: ये तो बात सही कहा, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें दिल लगाना जरूरी होता है, जैसे एक आर्टिस्ट कोई कमाने का जरिया नहीं हो सकता है
0: जी,
1: आर्ट में दिल तो देना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा,
0: जब तक डूबेंगे नहीं, शब्दों का चयन आप नहीं कर सकते ना उड़ेल सकते हैं उसको।
1: बिल्कुल सर, आपने जब मुझे अपने बारे में बताया था तो मुझे ये भी पता चला था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया था
0: जी, IIT इलेक्ट्रॉनिक्स इलाहाबाद से
1: जी। सर, इसके बारे में बताया।
0: अब उस समय रुचि तो थी नहीं, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी, ये भी हमने कर लिया।
1: क्या बात,
0: लेकिन रुचि मेरे साहित्य में थी, लिटरेचर में था,
1: साहित्य में थी।
0: संभव नहीं आज के युग में किताबें खरीद के पढ़ी जा सके, और लाइब्रेरी ऐसी संस्था है कि जहां आप पढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब तक रुचि नहीं होगी आप लाइब्रेरी में चले जाएंगे, चले वापस चले आएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। रुचि बढ़ाना पड़ेगा, रुचि बढ़ाने काम सिर्फ लाइब्रेरियन का है।
1: वो कैसे सर?
0: जैसे मान लीजिए मेरे पास आप आ गए
1: जी
0: और आपको बात किया, मुझे पता चल गया कि आप किस ट्रस्ट के आदमी, मैं वही बुक आपको दिखाया, आप नहीं पढ़ना फिर भी पढ़ लेंगे, पत्रिकाएं दिखाएंगे, मैगजीन दिखाएंगे आपको और आपसे ओपिनियन ले लेंगे कि आपकी रुचि क्या है, उसी रुचि के अनुसार पुस्तकें आपको दे देंगे हम।
1: वाह।
0: और मृदुल भाषा में आपसे पूछ लेंगे सर आपने क्या पढ़ा है इसमें, तो अगर आपने चार पेज भी पढ़ा है तो चार लाइन तो मुझे बताई लेंगे
1: आराम से,
0: और मैं समझ जाऊंगा कि आपकी रुचि किसमें है।
1: किसमें है?
0: आप विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है और विज्ञान किताब आप रुचि नहीं लेंगे, हटा देंगे उसको। अगर थोड़ी भी रुचि लेंगे तो मुझसे मांग लेंगे सर मुझे पुस्तक दीजिए, मैं पढ़ के कल दे दूंगा। ये मेरी जिज्ञासा है। लाइब्रेरियन का सिर्फ यही है कि अधिक से पुस्तकें लोगों तक पहुंचे।
1: बिल्कुल।
0: एक कहावत है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, अगर पुस्तकें पढ़ी नहीं गई तो रद्दी कागज से उसका मतलब नहीं है।
1: बिल्कुल सही।
0: क्योंकि मेरी पहचान साहित्य क्षेत्र में, मैं कविताएं काफी लिखा, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, लेकिन कविताओं में क्या होता है कि थोड़े शब्द में ज्यादा बोलना, भाव देना।
1: बिल्कुल।
0: कहानी उपन्यास में क्या है कि थोड़ी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, दोनों में अंतर है, भाव दोनों एक ही है, लिखने की शैली अलग अलग है।
1: शैली अलग है।
0: कविताओं में थोड़ा लिखते हैं ज्यादा समझते हैं, और कहानी उपन्यास में ज्यादा लिखते हैं कम समझते
1: कम समझते। वाह। कितने सरल शब्दों में आपने दोनों के बीच का भेद बता दिया। सर आप चूंकि लाइब्रेरी से जुड़े हैं, सभी का अपना सपना होता है, जो एक्टिंग करता है उसका होता है कि इस एक्टर से मिल लें, जो घूमने वाले होते हैं उनका कोई एक जगह होती कि काश को हम इस जगह जा पाए। आपके लिए कौन सी लाइब्रेरी सपना है या कभी थी जो आपने उसको पूरा कर लिया वहां जा करके?
0: पढ़ने की। आज भी मैं 17-18 घंटे पढ़ता हूँ लाइब्रेरी घर मिला के।
1: अरे वाह।
0: और लोगों को नसीहत देते हैं अगर मैं पढ़ सकता हूँ इस उम्र में तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते,
1: क्यों नहीं पढ़ सकते,
0: आप भी पढ़े, रुचि लगाएं। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो आए और चले जाते हैं, मैं बुला के बैठा लेता हूँ, आप क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते, नसीहत है।
1: सही।
0: हम चाहते हैं आप आगे निकलें।
1: बिल्कुल।
0: अगर ज्ञान हमने समेट लिया उसका कोई मतलब नहीं रहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता घटता नहीं है,
1: घटता नहीं। बिल्कुल सर। साहित्य की बात करें तो चूंकि बहुत बड़े बड़े हमारे कवि हुए हैं इंडिया से, अगर हम बात करें आज समकालीन की बात करें तो बहुत सारे नए युवा हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ते हैं सर? आपने तो शैली बहुत पढ़ी है पुराने लोगों की भी, आज भी आप पढ़ रहे हैं।
0: नए और पुराने में सिर्फ अंतर है,
1: अंतर है।
0: पुराने में भाव ज्यादा होते थे, जो लिखते थे वो किसी के दिशा निर्देश के लिखते थे, लोग समाज में अच्छी पहचान बने। आज अधिकांश जो लिखे तो जाते अच्छे, लेकिन अधिकांश स्वतंत्र सुखाए होते हैं, लजीज होते हैं, जो थोड़े दिन में गायब हो जाते हैं, चाहे महादेव वर्मा हो चाहे जयशंकर प्रसाद हो, आज भी याद किए जाते हैं
1: जी।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आज भी लोग याद करते हैं, महादेव वर्मा को आज भी याद करते हैं, हरभजन राय बच्चन को आज भी याद करते हैं लोग, जिनका साहित्य है आज भी सजीव है। मधुशाला आज भी सजीव है, महादेवी की यामा आज भी सजीव है, तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या, ये महादेवी की थी। निशा को धो देता राकेश, सब अच्छी अच्छी किताबें थी, आज भी लोगों को याद है।
1: बिल्कुल।
0: ये दिशा देती हैं कि हम भी आगे बढ़ें, अगर वो लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ, अगर वो समाज को दे सकते हैं मैं भी दे सकता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे दौर में संसाधन नहीं थे, आज संसाधन पर्याप्त है, अगर हम पीछे हैं तो ये मेरी नाकामी है। लोगों से नसीहत लीजिए, मुझसे नसीहत लीजिए।
1: बिल्कुल सर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे यही कहेंगे शायद मिलते हैं कि बहुत समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि उनकी आदत नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप कोई किस कवि को आप रिकमेंड करेंगे कि आप शुरुआत वहां से करिए, उनकी कविताएं आपको समझ में आएंगी, क्योंकि शुरुआत थोड़ा सा आसान होनी भी चाहिए।
0: हाँ, ये बताते हैं आपको, सरल किताबें पढ़िए,
1: सरल कविता,
0: बच्चों की किताबें पढ़िए, रुचि बढ़ाएं। आप सरल किताबें पढ़ेंगे, चाहे चंदा मामा रहे चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जब छोटी छोटी कविताएं पढ़ेंगे, इलाहाबाद पे पथवा तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पढ़ेंगे, धीरे धीरे रुचि बढ़ जाएगी अपने आप।
1: बिल्कुल।
0: जब शब्दों को समझने जिस दिन लगेंगे आप, आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रवाह आपका चालू है, चालू है, आजीवन चलता रहेगा,
1: चलता रहेगा,
0: कभी जाएगा नहीं आपसे।
1: मुझे लगता है ये भी एक नशा होता है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत नशा होता है।
0: जो भाव मेरे थे, जो शब्दों पे प्रगाढ़ प्रेम रहता उनको ना, वो दुनिया नहीं दिखती उनको।
1: बिल्कुल।
0: उनको बाह्य आडंबर बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं में खुशहाल है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हमारे दौर में रेडियो चलता था
1: जी,
0: संसाधन नहीं हुआ करते थे। अगर आप आदेश करें तो एक छोटी सी रचना सुना दूं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बस उसी पे आ रहा था कि आप प्लीज अपनी एक रचना शुरुआत कर दें।
0: रेडियो का वही पुराना जमाना याद आता है।
1: क्या बात है।
0: रेडियो का वही पुराना जमाना याद आता है, जैसे बसता हो वही रेडियो का धुन पुराना। विविध भारती के गीत खूब भाता है।
1: वाह।
0: विविध भारती के गीत खूब भाता है, सर्द की खामोशी में रेडियो की बातें पुराना। एक रेडियो सबके कान वही रहते थे, खेती किसानी बीती यादों का जमाना। रेडियो का बजना खुशियों की थी मन में। वो दौर था, संसाधन नहीं थे। और एक जब मैं समाज बाहर निकलता हूँ, मैं समाज को देखता हूँ, समाज से पीड़ा मिलती है, वो शब्द देते हैं। ऊंचे को सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन नीचे कोई सलाम नहीं करता, डूबते सूरज को सलाम नहीं करते हैं। हमने एक दिन मजदूर को देखा, भोली आंखों में बेबसी अब मायूसी है।
1: वाह, भोली आंखों।
0: मैं इसी गोंडा शहर में था, एक लड़का हम लोग साथ पढ़ता था, वो कभी अमीर था, बाद में प्लेट धोने लगा बस स्टेशन पे। मुझे बरबस याद आ गया वो। भोली आंखों में बेबसी अब मायूसी है, बर्तनों के धोने में नन्हे बचपन की खामोशी है। बचपन बिखर गया बचपन जैसा हो आया। बचपन बिखर गया बचपन जैसा हो आया, जब दुनिया सोती नन्हे हाथ तब बर्तन धोती है। मत छीनो इनका उपवन, ना करो इनका अपराध, बाल श्रम मत कराओ, कानून जुर्म का अपराधी। ये मेरा बड़ा प्रभाव आज भी 40 साल बीतने के बाद भी ये मेरे मन से गया नहीं। कभी मेरे साथ पढ़ता था, आज मेरे सामने ही वो बर्तन धोता था।
1: यानी ये आपने खुद से देखा और खुद इसको फील किया है।
0: पहले के शिक्षा में आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। पहले संसाधन नहीं थे, लोग स्वयं पढ़ते थे किताबों से, बच्चों से आपस में सामान्यता। आज दूर हो गए लोग, आज व्यापार हो गया है। अगर लोगों का अन्यथा न लगे मैं सुना दूं एक दो लाइन।
1: नहीं बिल्कुल प्लीज।
0: शिक्षा का होता व्यापार बाजारों में आज के दौर में, शिक्षा का होता व्यापार बाजारों में, सरस्वती का वास अब आ गया दौलत के संसारों में। स्वर की देवी ज्ञान के गंगा सब कुछ बिकने लगे हैं, गुरु ज्ञान परंपरा बिकने लगी बाजारों में। ज्ञानवान सम्मान बड़ा है, ज्ञानवान सम्मान खड़ा है शिक्षक चौराहे पे, फीस बड़ी है गरीब असहाय है बाजारों में। ये मना स्थिति को दर्शाता है
1: जो व्यवसायीकरण हो रहा। हाँ, है उसको लेकर आपका लिखना है।
0: नहीं पढ़ सकते आप। एक छोटी रचना फिर मैं सुनाता हूँ। कितना दिखावा चल रहा है दुनिया में, कितना दिखावा चल रहा है दुनिया में, असली दिखावे का आप कुछ पता नहीं। झूठी शान पर थिरकते रहे सारे राह, झूठी शान पर थिरकते रहे सारे राह, असली शान का आप कुछ पता नहीं,
1: कुछ पता नहीं।
0: मेहनत का इंसान कहाँ चकाचौंध में जीता है, मेहनत का इंसान कहाँ चकाचौंध में जीता है, सूखी रोटी ही मिली बाकी का कुछ पता नहीं।
1: वाह,
0: ये समाज से हमने सीखा।
1: बड़ा सच है।
0: समाज ने मुझे दिया है, हम वहां खड़े करके अपने आप को देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक फिर और छोटी रचना अगर कहें आप
1: जी।
0: रोटी पे है जिंदगी की दौड़ में पसीना बहाता है, तब जाकर कहीं रोटी गले तक आता है।
1: क्या बात है।
0: कभी अमीरों को छोड़ गरीबों को आप देखें चौराहे पे, जो रोटी नहीं पाते हैं वो लोग। किसान पसीने से सींच कर अन्न उगाता है, फिर कहीं जाकर दाना घर में आता है। तपती धूप में तप कर रोटी कमाता है, भूखे इंसान तक सिर्फ रोटी ही आता है, क्या मिल पाता उस आदमी को।
1: सच में
0: इस समाज को देखिए, समाज में रहिए पता चलता है हम तो बहुत पीछे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है आपने कही, हम काफी पीछे हैं। और समाज में अगर हम देखते हैं चीजों को, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको बहुत चीजें दिखने लग जाती हैं जब उन निगाहों से हम देखते हैं। बेशक सही फरमाया आपने। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आकर के वापस से आपसे बात करेंगे, और आने के बाद जाने की कोशिश करेंगे वो पहली कविता कौन सी थी जो आपने अपने हाथों से लिखी थी, और प्रेरणा क्या थी उसके पीछे। बिल्कुल। तो चलिए म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सुश्रोताओं, एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और देखिए ना, आज हमारे साथ गोंडा में ही रह चुके हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर भारतेंद्र सिंह सर हमारे साथ में आज मौजूद है इस स्टूडियो में। और अभी जाने से पहले उन्होंने अपनी कुछ कविताओं से हमको रूबरू कराया, जो समाज में देखा, जो बाजार में उनको दृश्य नजर आया चलते फिरते। क्योंकि कवि हो या लेखक हो, इनको अपनी कविताएं और कहानियां मिल जाती हैं आम इंसान से, आम समाज से। तो चलिए अब चलते हैं आपके साहित्य के सफर पर। और सर, मेरा सवाल ये था कि जहां तक मुझे पता है 1992 में आपका एक काव्य संकलन सामने आया, काव्य धारा
3: जी।
2: और ये काव्य धारा आखिर किस विषय पर था और इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको?
3: मैं बताया हूँ, इसके पहले गोंडा की माटी की देन थी, लिखा हमने यही था, जो हमने लिखा वही लिखा, शब्दों पे उड़ल दिया हमने। काव्य धारा, जब काव्य में प्रवाह हुआ मेरा, अब मुझे लगा कि नहीं कुछ लिखना चाहिए समाज के लिए, कुछ देश के लिए, हमने लिखना प्रारंभ किया। शुरू में लिखना प्रारंभ स्वतंत्रता सुखा लिखा, अपने लिए लिखा, उन्होंने कहा तो रद्दी कागज हो जाएगा, इसका क्या मतलब रहा? लोगों के लिए लिखें, लोगों में पहचान बने, लोगों को दिशा दें। अगर 10 व्यक्ति में से एक को भी हमने रास्ता दिखा दिया तो मेरा कार्य सफल रहा, मेरा लिखना सार्थक हो गया।
2: बिल्कुल सर, सही कहा।
3: ये प्रेरणा मेरे लिए रही, लोगों के बीच में जाए, लोगों को मिले। आज अरुच से पढ़ेंगे, कल रुच से पढ़ना शुरू कर देंगे, और सरल भाषा में रहा वो।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सरल भाषा में रहा। तो सर, यह किसी एक विषय पर था या इसमें कई सारे विषय आपने समाहित किए थे काव्यधारा में?
3: कई विषय था उसमें,
2: कई विषय
3: समाज पे ही था, समाज को एक नई दिशा दे पाए।
2: तो मैंने अभी जाने से पहले भी, ब्रेक लेने से पहले आपसे एक सवाल करने को कहा था कि आपकी पहली कविता, वो हम जानना चाहेंगे क्या लिखा था आपने, जो आपको याद हो, रिकॉर्ड भी हो आपके, तो प्लीज वो हमारे श्रोताओं को भी आप सुनाइए।
3: एक छोटी रचना मेरी प्रारंभ में थी, लेकिन गद्य लेखन में थी मेरी,
2: गद्य लेखन में।
3: कभी मैं झंझावातों में खो जाता, कभी मैं झंझावातों में खो जाता, स्वच्छंद उन्मुख हो जाता, मैं और मेरा अंतर्मन,
2: मैं और मेरा अंतर्मन,
3: हम सभी के लिए खुशियां बांटते रहे, खुद को जोड़कर सहज रह जाता, खुद को जोड़कर सहज रह जाता, मैं और मेरा अंतर्मन, सभी के साथ रहकर फर्ज निभाता रहा, सभी के साथ रहकर फर्ज निभाता रहा, अंतर्मन के साथ रहकर खो जाता, मैं और मेरा अंतर्मन, यही था सर।
2: वाह, क्या बात है, शुरुआत अंतर्मन से लिखी है आपने और मुझे लगता है कि कोई हो ना हो, यह अंतर्मन एक ऐसा मित्र होता है जो जिंदगी में सारे मजे देता है, सोचने पर मजबूर करता है, और जो कुछ भी बदलाव आता है हमारी जिंदगी में उसके लिए जिम्मेदार यही होता है, हमारा अंतर्मन।
3: जी बिल्कुल,
2: बहुत प्यारी बात लिखी आपने, बहुत प्यारा लिखा सर। जैसे सभी के लिए कोई ना कोई उनके फेवरेट सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, कवि भी होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए कौन, आप वैसे तो आप सबको पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एक दो लोग लगता है कि हाँ आपके लिए बहुत ऊंची लिस्ट पे।
3: ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी
2: जी।
3: जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पिताजी हमारे के यहाँ महादेव वर्मा की यामा ले आए थे, ओरिजिनल, काफी मोटी थी
2: जी।
3: और पहले मैं उसे हल्के से पढ़ना शुरू किया, कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता था
2: जी जी जी, जी।
3: लेकिन उनके भावों को पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो गए, और मेरे में प्रेरणा जगी कि महादेव वर्मा लिख सकती हैं। निशा को धो देता राकेश, इतना बहुत अच्छा लगता, तुम प्रिय फिर परिचय क्या, वास्तव में अगर तुम प्रिय हो नाम की आवश्यकता नहीं,
2: नहीं
3: परिचय ही बाकी, अगर मन में प्रिय आप। मेरे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा महादेव वर्मा का।
2: मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पढ़ना होता है ये आपकी निजी जिंदगी के अंदर आ जाता है, पढ़ने से जो असर होता है
3: जी जी,
2: आपका दृष्टिकोण बदलता है
3: जी, बदलता है, और दुनिया को हम देख पाते हैं, जब हम अध्ययन करेंगे शब्द, जैसे शब्द मेरे पास आए, भाव तो मेरे अंदर हैं, और शब्दों का भंडार नहीं, आप कुछ नहीं लिख सकते, आपकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती,
2: हो ही नहीं सकती है।
3: मुझे आप कैसे समझा पाएंगे? शब्दों का भंडार होना आवश्यक है। जब तक समुद्र नहीं होगा, शब्दों का भंडार नहीं होगा, और प्रवाह नहीं होगा, और प्रवाह तभी होगा जब शब्दों का भंडार आपके पास होगा।
2: तो ये जो आप कह रहे हैं, क्या यही तो बात नहीं जो हर कोई बोलता है, अरे मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, या शायद समझाने वाला समझा ही नहीं पा रहा है? कहीं ना कहीं ये बात सही है।
3: तभी समझा पाएगा जब आप समझना नहीं चाहते हैं। मेरे पास भाषा का भंडार नहीं होगा, हम आपको सरल भाषा में नहीं समझा पाएंगे।
2: सही बात है,
3: हम आपको सरलता में ले जाएंगे, बच्चों वाले भाषा में ले जाएंगे। समझना सीखिए तो
2: बिल्कुल,
3: बाकी बड़ी चीज समझा लेंगे हम आपको। लेकिन आप बैठना ही नहीं चाहेंगे मेरे पास, मैं समझा आपको नहीं
2: तो नहीं कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात,
3: वो रुचि जगानी पड़ेगी।
2: सही बात है,
3: पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। आज के दौर में क्या लोग पढ़ना नहीं पसंद करते, टीवी देखते, मोबाइल देखते हैं, लिखने की आदत नहीं है। और पढ़ेंगे तभी लिखेंगे।
2: बिल्कुल,
3: जब तक अध्ययन और चिंतन नहीं करेंगे, आपने क्या पढ़ा, आपने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, आपकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल,
3: वो होना चाहिए, पढ़ने की आदत बनाइए आप।
2: ये
3: और आप धीरे धीरे में जो क्रोधी होंगे, क्रूर होंगे, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे आप। जो कभी आपसे दूर भागते थे, आपके करीब हो जाएंगे।
2: सच्ची बात है,
3: आप कहीं जाएं, आपकी अच्छी पहचान बने। मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं पहचान छोड़ के नहीं गया, मेरा आना सार्थक नहीं रहा।
2: बिल्कुल सही बात है, सही कहा।
3: हम आपके बीच में रहें, आप अपनी पहचान बना के जाएं, छोड़ के जाएं। उसके लिए अध्ययन, चिंतन और भाषा भंडार होना चाहिए, अभिव्यक्ति बढ़िया होनी चाहिए।
2: बिल्कुल सर, कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में कि जैसे होता है ना कि कहीं आप मझधार में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा प्रश्न है आपकी जिंदगी का जो आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपने कभी कोई कविता पढ़ी हो, कोई कहानी, और थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया हो, और आप बड़ा चेहरे पे स्माइल आ गई हो, अरे मैं बिला वजह परेशान था। मेरे साथ भी कई बार हुआ ऐसा, शायद हरिवंश राय बच्चन साहब की कोई कविता ही हो सकती है।
3: जी जी जी, इनकी हर मधुशाला ही थी।
2: मधुशाला, बिल्कुल सही बात है।
3: इन्होंने शराबी पे जरूर लिखा, लेकिन दृष्टिकोण अलग था उसका।
2: बिल्कुल अलग था।
3: नजरिया मेरा कैसा, इस पर डिपेंड करता है। हम आपको किस नजर से देखते हैं, ये मेरे नजरों पे है, हम बदल नहीं सकते आपको। हम अच्छा देखेंगे, आप में अच्छा ही नजर आएगी, बुरा देखेंगे बुरा ही नजर आएगी।
2: सच है,
3: नजरिया बदले हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है 89.6 में जो मेरे मुझे पहली बार यह अवसर प्रदान किया गया।
2: सर ये
3: मैं काफी खुश हूँ।
2: ये मुझे लगता है ये 89.6 FM का सौभाग्य है कि गोंडा की एक ऐसी हस्ती जो फिलहाल गोरखपुर में है, और आप लोगों के अंदर अलख जगा रहे हैं किताबों को पढ़ने की, और आप यहाँ आए इस मंच पर, हम खुद ही ये बहुत अभिभूत हैं आपसे मिल करके। सर बच्चों में आदतें शुरुआत से डाली जाती है, क्योंकि इस वक्त ऐसे कई लोग हैं जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स, उनके छोटे बच्चे हैं, और इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं। बच्चों में किस तरह से किताबों की आदत डाली जाए, और कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट जगाया जाए, और बच्चों को भी लगे कि हाँ हमारे माता पिता भी इससे जुड़े हुए हैं।
3: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, और वर्णमाला के कैलेंडर टांगे, फिल्मी कैलेंडर मत लगाइए, बच्चों किताबें रखिए, सोते उठते जागते बैठते बंद नजर उनकी जरूर पड़ जाएगी। वर्णमाला की, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, उठेंगे तो उनको दिखेगा ये क्या लिखा है। और अगर आपने फिल्मी तस्वीर टांग दी है, किताबें आपने नावल रख दिए हैं, और टीवी पे आपने दूसरा लगा दिया, दूरदर्शन नहीं लगाया आपने, प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। हमने बच्चों को देखा वर्णमाला की कैलेंडर टंगा हुआ, और बच्चे पूछते मम्मी चाहे पापा ये बताओ क्या लिखा है,
2: क्या लिखा है।
3: उठते जगते सोते उनके जब भी उठेंगे दिखेगा, वो अपने आप रुचि हो जाएगी।
2: बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे लगता है जैसे एक आपने लाइब्रेरियन का काम बताया कि पाठक की रुचि बढ़ाता है, मुझे लगता है बच्चे के लिए माता पिता वो काम कर सकते हैं कि बेटा जो तुमने पढ़ा उसमें फला कैरेक्टर कैसा था,
3: हाँ
2: कैसा लगा तुम्हें।
3: जब बच्चे पढ़ेंगे और माता पिता पूछेंगे उनसे, उसमें एक सरलता आप में होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। बच्चे हैं, तन थोड़ा करेंगे ही, या आपके विवेक परम और सोच पे है कि आप किस ढंग से उसे प्रश्न पूछते हैं। नहीं बता पा रहे तो अगला दे दो पढ़ने के लिए, अगले में फिर प्रयास करिए आप। और जाहिर सी बात है आज नहीं कल आपका बच्चा बहुत आगे होगा।
2: बिल्कुल सही बात है,
3: और कल वही माता पिता को लोग बताएंगे मुझे आप ही जैसा बच्चा चाहिए जो टैलेंटेड हो। किसके माता पिता हो आप, आपके माता पिता हैं कौन,
2: है कौन। सही बात है,
3: बच्चों के साथ माता पिता का भी जुड़ा रहता है।
2: बिल्कुल सही बात
3: है। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बेसिक बच्चे जो भी 2-3 साल के होते हैं, आप कैलेंडर लगाइए घर में, ज्ञान किताबें रखिए, मोबाइल दूर रखिए। आप स्वयं मोबाइल चलाएंगे, बच्चे मोबाइल निश्चित चलाएंगे। हमने देखा आज के बच्चों को मोबाइल पकड़ ज़्यादा पसंद करते हैं वो। माताएं क्या करती हैं, मोबाइल बच्चों दे देती ताकि चुप रहे वो।
2: बिल्कुल,
3: और उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं
2: है, उसके कई दुष्परिणाम सामने आया करते हैं।
3: आंखों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है,
2: आंखों पर
3: हमने देखा है इसको।
2: बिल्कुल,
3: आंखें अगर खराब होने उसके पीछे कारण भी है। हम भी दोस्त, ऐसा नहीं है, हम अपने को बचा ले जाएं, बच्चे अपने आप बच जाएंगे।
2: कितनी प्यारी बात आपने कही कि हम अपने को बचा ले जाएं तो बच्चे खुद ब खुद।
3: और बच्चों के लिए त्याग करना पड़ता है प्रत्येक माता पिता, जो माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं निश्चित बच्चे आगे निकलते हैं।
2: बिल्कुल सर, थोड़ा सा प्रश्न अलग है, लेकिन चूंकि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने लोगों को जानते हैं, आज की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन का दौर हम बताते हैं, और बच्चों में सुसाइडल थॉट, आत्महत्या करने के विचार, किसी ने कुछ कह दिया जल्दी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ये सारी चीजें बहुत देखी जा रही है।
3: जी जी जी बिल्कुल,
2: स्पेशली अगर बच्चा 14 से 15 साल का लड़का लड़की कोई भी है और इस वक्त उनके माता पिता आपको सुन रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे, थोड़ा सा पेरेंटिंग की बातें, जिससे कि वो ऐसा मैंने कई माँ बाप से मिला, वो ये सीधे कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ में है ही नहीं, बिगड़ गया। तो बिगड़ गया एक अलग बात है, आप कैसे डील कर रहे हैं, या अभी भी अब कैसे आप उसको अपने साथ रख करके सही कर सकते हैं, इस विषय पे हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहेंगे।
3: जैसे अभी हमने पहले आपको बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में गार्जियन जागरूक अगर है, अगर हम सुविधाओं का उपयोग करेंगे, बच्चे भी सुविधाओं का उपयोग करेंगे और शिक्षा से कट जाएंगे। और जब तक बच्चों से सरलता नहीं होगी आपकी, ऐसा नहीं सुबह हम निकले शाम को आ रहे हैं और पहुंचे और बच्चे डांटना शुरू कर दिए, पढ़ नहीं सकता वो। रुचि देना फैलाना आपका काम है, माता पिता काम है, माँ का काम, माँ का दायित्व बनता है। और आधुनिक जमाने में क्या हो रहा है कि लड़का आर्ट पढ़ना चाहता है, माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंस पढ़े,
2: बस ये बड़ी प्रॉब्लम है।
3: आपने बाहर कंपटीशन ले भेज दिया, पड़ोसी का लड़का डॉक्टर हो गया, मैं भी डॉक्टर हो जाऊं, लेकिन आपके लड़के कॉमर्स में लगा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, आपने उसको उसमें लगा दिया, वही बच्चे आत्महत्या करते हैं, वही डिप्रेशन में जाते हैं। मैं आपसे बता दूं, मेडिकल में जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, आए दिन डिप्रेशन के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है
2: जी
3: कैंपस में, हैं विचित्र रहते हैं। हाई सेंटर बाद आप उनको देखें कि वो पढ़ाई से कट जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, उससे क्या मतलब रह गया। बच्चे जिस रुचि में जाते हों, लेकिन सार्थक रुचि होना चाहिए, दिशा निर्देश देने का माता पिता का है। सबके माता पिता पढ़े नहीं होते हैं, एक सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर हम गलत रास्ता पकड़ेंगे, बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेंगे। हमने सुना है बच्चों को भी माता पिता बोलते हुए, ये परवरिश जब बचपन से आप नियंत्रण में रखेंगे, अनुशासित, जब तक खुद अनुशासित नहीं होंगे बच्चे अनुशासित नहीं रह सकते,
2: नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है।
3: अब आधुनिक जमाने में आर्थिक परेशानी सबके पास है, निवारण करना मेरा काम है, लेकिन आय से अधिक खर्चे आप बढ़ा देंगे, अपनी आवश्यकताएं सीमित रहेंगी, बच्चे अपने आप सीमित रहेंगे।
2: सर बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि जिस तरह से अगर माँ बाप खुद एक रोल मॉडल होते हैं तो वो जैसा करते हैं वैसा आसपास
3: का बच्चे 18 घंटे माता पिता साथ रहते हैं,
2: बिल्कुल
3: माँ के साथ रहते हैं, पिता तो रोजी रोटी की तलाश में घूम रहा है,
2: सही
3: माँ का दायित्व ज्यादा बनता है बच्चों के साथ।
2: सही बात है,
3: बेसिक ज्ञान माँ ही देती है बच्चों को, पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब उसका नहीं होता।
2: बिल्कुल सही बात है। सर आप एक बार वापस से लौटते हैं और अवध से निकले आप
3: जी,
2: गए भोजपुरी में
3: जी,
2: कितना भोजपुरी ने आपको एक्सेप्ट किया?
3: अब प्रारंभ में तो मैं अवधि बोलता था
2: जी,
3: और क्योंकि बचपन मेरा यहीं बीता, गोंडा में ही बीता, लंबाई पूरी पढ़ाई मेरी यहीं बीती
2: जी,
3: और जब मैं गोरखपुर गया, पूर्वांचल में गया, तो सीखना पड़ा मुझे। लेकिन जब अपने माता पिता भाई बहनों बीच में होते थे तो हमको लग रहा है करीब हम 20 साल अवधि ही बोलने आपस में, हम लोगों से भोजपुर निकलती ही नहीं थी। इस माटी से मेरा पुराना लगाव रहा है और हमेशा बना रहेगा।
2: क्या बात है। तो सर कोई कविता लिखी आपने अवधि में?
3: जी नहीं लिखी।
2: अच्छा, लेकिन कोई बचपन को समर्पित कोई कविता जिसमें बचपना झलकता हो, क्योंकि बचपना आपका यही गुजरा, तो शायद एक कविता में हमें मिल जाए।
3: जी बिल्कुल, एक छोटी रचना, बदलते रहे वक्त के साथ जमाने के रंग।
2: बदलते रहे वक्त के साथ जमाने के रंग,
3: लोग बदलते रहे और बदल गई दुनिया।
2: वाह क्या बात है।
3: नजरें उठाकर भी नजरें झुका लिया, समय से पहले बदल गई ये दुनिया।
2: समय से पहले बदल गई दुनिया।
3: हम उनके फिक्र में वो बेफिक्र होते रहे।
2: क्या बात है।
3: हम उनके फिक्र में वो बेफिक्र होते रहे, तमाशा बनाकर निकल गई ये दुनिया। मासूम कमजोर दिलों को अब समझाए कैसे, टूटे मन में रुलाकर चली गई दुनिया।
2: सच है, मतलब मुझे लगता है जिंदगी के लगभग सारे पहलुओं को आपने छुआ है, जहां जैसा महसूस किया उसको कविताओं में उतारा आपने।
3: जी प्रयास मेरा यही था। एक दो लाइन और
2: जी।
3: मेरे बचपन की कहानी पूछने लगे, क्योंकि मेरा तो गोंडा आवाज में बीता है
2: जी
3: बचपन मेरा। मेरे बचपन की कहानी पूछने लगे, टूटे दिलों के गुजरी कहानी पूछने लगे, मेरी लेखनी को रद्दी कागज समझ बैठे, मेरी लेखनी को रद्दी कागज समझ बैठे, मेरे पिछले जीवन की जवानी पूछने लगे।
2: वाह।
3: लोगों ने बुझा दिया मेरे घर का चिराग।
2: लोगों ने बुझा दिया
3: मेरे घर के चिराग, पास पास पास बैठकर मस्करी की जवानी पूछने लगे। कितने ठोकर खाकर गिरे हैं सरे राह में, बिखरे सपनों को सहजने की कहानी पूछने लगे।
2: क्या बात है, मतलब ये तो वही वाली बात है कि सीधे इंसान आज आपका देखता है, लेकिन कैसे आप पहुंचे ये नहीं देखता है।
3: फूल खिल गए उसके पीछे, माली ने कितना सेवा किया, ये
2: सेवा किया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है।
3: खिले फूल दिखते हैं आदमी को,
2: सच में
3: गुजरा बचपन नहीं दिखता किसी का। पैर में चप्पल ठीक नहीं थे, कलम ठीक नहीं थी।
2: सही बात है।
3: अगर मैं यहाँ तक पहुंचा उसके पीछे मेरा संघर्ष रहा है।
2: बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिना संघर्ष के यहाँ तक पहुंचे नहीं है। और ये बेईमानी होती है कि हम सीधे किसी को उसके टॉप पे ही देखते हैं, कैसे गया ये समझना जरूरी है। और मुझे लगता है ये दिखाने का काम किताबें ज्यादा अच्छा करती हैं।
3: जी बिल्कुल।
2: कहीं ना कहीं आपने जो कहा ना, बहुत बड़ी, मुझे लगता है ये टीनेज नहीं सर, ये हर आदमी की परेशानी है, चाहे जिस एज ग्रुप का हो। जैसे अकेलापन आज सभी को लग रहा है, जबकि इतने सारे रिसोर्सेज हैं, चीजें आसान हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि चाहे जिस एज ग्रुप का हो, चाहे जिस प्रोफेशन का हो, गृहिणी हो, काम करने वाला, किताबें पढ़ने से अंदर का जो इंसान है वो जिंदा हो जाता है।
3: जी बिल्कुल, बाहरी आवरण नहीं घेरते आपको। किताबें स्वयं सुखान सुखा है, वो सुख देती है।
2: बिल्कुल,
3: भौतिकता नहीं दिखेगी, चमक दमक नहीं दिखेगा,
2: नहीं दिखेगी।
3: और चमक दमक हमेशा परेशान करते हैं लोगों को।
2: बिल्कुल सही।
3: जब भौतिकवादी युग आप होंगे, भौतिकता की तरफ रहेंगे, निश्चित आप परेशान रहेंगे।
2: बेशक सही बात है।
3: सामान्य जीवन जीना सीखेंगे, विचार आपके ऊंचे हों, सोच आपकी ऊंची हो, आज नहीं कल आप निरंतर हमेशा ऊपर पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने कि निरंतर आप ऊंचे पहुंचेंगे।
3: सोच आपकी ऊंची,
2: सोच ऊंची होनी चाहिए। बहुत प्यारी बात कही। और मुझे लगता है सर, जो एक शब्द है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। लोग कहते हैं कि बाहर निकलो, ये करो, ठीक है, सारी चीजों से आता है, पर मुझे लगता है किताबें जो कॉन्फिडेंस देती है वो किसी चीज से नहीं आता। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि किताबें आपको ही जानने का जरिया बनती है।
3: जी बिल्कुल।
2: आप किताबों को पढ़ के दूसरों को नहीं जानते हैं, आप अपने अंदर उन चीजों को पाते हैं जो थी तो, लेकिन उससे आप अनभिज्ञ थे, अनजान थे।
3: जी बिल्कुल,
2: वो आपको मिलता है। सी, बहुत प्यारी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि शायद अब लगभग हमारी बातचीत पूरा होने का समय भी आ चला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपसे पूछूं कि हमारे डॉक्टर भारतेंद्र सिंह साहब के जीवन के अगर मैं मूल्य पूछूं कि क्या है, तो आखिर किन किन शब्दों में बताना चाहेंगे, किन मूल्यों को लेकर वो आज तक चलते चले आए।
3: मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहा कि लोगों को कुछ दे सकूं। आज जीवन है, कल नहीं रहेगा, किताबें रहेंगी, ज्ञान रहेंगी लोगों। अगर पूरे जीवन 10 लोगों को हमने आगे बढ़ा दिया तो मैं सार्थक हो जाऊंगा।
2: वाह।
3: पैसा कमाना सारे लोग कमा लेते हैं, इस भौतिक युग में पैसा कमाते हैं, आप चले जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता।
2: सही बात है।
3: हम जाए तो कुछ दे के जाए समाज को, लोगों को कुछ दे के जाए। हम रहे ना रहे मेरी यादें बरकरार रहे।
2: हम रहे ना रहे मेरी यादें बरकरार रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने, और मुझे लगता है इसमें ऊपर वाला आपका साथ भी दे रहा है, क्योंकि लगातार आप युवाओं से बातचीत करते हैं, न जाने कितने लोगों को प्रेरित करते हैं।
3: जी बिल्कुल,
2: और मुझे लगता है आपके बताने से कईयों के जीवन में बदलाव आया होगा, लोग किताबों से जुड़े
3: होंगे। जी बिल्कुल,
2: तो
3: मैं सलाह देता हूँ, हमारे का जो स्टूडेंट है उनको बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बोल नहीं पाते, हमने बोलना मुझसे सीखो आप।
2: जी
3: हम कह रहे हैं आप बोलो, कुछ तो बोलो, आज चार शब्द बोलेंगे सही, कल दस बोलेंगे, चार दिन बाद बराबर की वार्ता करेंगे, किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता घटता नहीं, कभी
2: घटता नहीं है।
3: और जब ज्ञान संचित और स्थिर कर देंगे ना, घट जाएगा, वो उसका कोई उपयोग नहीं है, सार्थक होना चाहिए।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात कही कि ज्ञान हमेशा सार्थक होना चाहिए। सर अब जाने से पहले बस अंतिम सवाल ये है, अंतिम सवाल नहीं कहेंगे बल्कि आपसे कहेंगे कि ऐसी कुछ बातें बताइए जो इस वक्त सुन रहे हैं और वो लेखनी में बड़े ही दिलचस्पी ले रहे हैं, हमारे कुछ युवा जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या बातें बताना चाहेंगे?
3: मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा उन लोगों को कि पहले आप पढ़ें और गोल्ड तैयार करें, सोना तैयार करें, भूसा ना तैयार करें, अनाज ना तैयार करिए। और जब तक पढ़ेंगे नहीं आप, शब्दों में भाव नहीं आएंगे, भाव सब लोग उसकी अभिव्यक्ति कर सकें, पढ़ के समझ सकें, और उसको एक बार नहीं कई कई बार लोग पढ़ें, और जब पढ़ के उनकी तृप्ति ना हो तो आपसे मिलने के लिए उतारू हो जाएं कि आपने कैसे लिखा, कैसे जरा उस आदमी से मुलाकात कर लूं जो इतना बढ़िया लिख सकता हो, कैसा होगा।
2: वाह,
3: जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा।
2: सुंदर होगा, कितनी प्यारी बात कही आपने, सच में बहुत बहुत सही बात कही आपने, बहुत प्रैक्टिकल बात है। और अगर कोई लिखना चाहता है तो उससे पहले सबसे पहला कदम पढ़ना ही होता है, कि जितना आप पढ़ोगे उसके बाद आप लिखना, शायद वो सेंस आ जाता है लिखने का समझते समझते। ये बात
3: मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, लिखें तो बढ़िया लिखें वरना मत लिखें।
2: सही बात है,
3: रद्दी कागज ना बनाएं। स्वांता सुखा का मतलब नहीं है।
2: बिल्कुल,
3: समाज को अगर कुछ दे सके, ये उपलब्धि ना देखें वो डॉक्टर है, वो इसमें है उसमें है और मैं भी वहां पर, नहीं ऐसा नहीं। अपनी काबिलियत पे अगर आगे बढ़ेंगे तो आजीवन आप आगे रहेंगे, कभी पीछे हो ही नहीं सकते।
2: हो ही नहीं सकते।
3: कभी वैसाखी का इस्तेमाल मत करिए। सेल्फ में संघर्ष जरूर है लेकिन उसमें उपलब्धि भी है।
2: बिल्कुल सही बात है। वो उपलब्धि अगर जाहिर है पाना है आपको तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना।
3: बिल्कुल, संघर्ष करना पड़ेगा,
2: संघर्ष करना पड़ेगा, और इसका कोई ऑप्शन नहीं होता, और मजा भी इसी का है जिंदगी में, सच कहा जाए तो।
3: अंतिम मेरा यह है कि आप धीरे लिखें, सही लिखें। आप बच्चों को परिवार को ही अगर सुधार दिया आपने, बड़ी उपलब्धि है। किताबों में ना उलझें,
2: परिवार से शुरुआत करें,
3: और अगले को ना देखें, अगले ने 10 पेज 10 किताबें निकाल दी, मैं भी निकाल दूं। कौन पढ़ रहा है आज के जमाने में? लोगों को लोग पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ना बंद कर दिया।
2: वाह
3: आज नजरिया बदल गया है।
2: परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने।
3: फर्स्ट इंप्रेशन है आज के दौर में, वो होना चाहिए।
2: सच है, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि देखिए आप एक शख्स नहीं है बल्कि आप खुद में अपने आप में एक लाइब्रेरी हैं क्योंकि आप लाइब्रेरी में रहते रहते आपने इतनी किताबों को अपने अंदर की शेल्फ में रख दिया है कि हर किताब का थोड़ा थोड़ा भी अगर ज्ञान है तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छी अलख जगा रहे हैं आप आमजन में, साहित्य को जिंदा कर रहे हैं, इस समाज को आप जिंदा कर रहे हैं, या यूं कहें तो इस देश को आप जिंदा कर रहे हैं। और सारी लड़ाइयाँ बॉर्डर पर रहकर नहीं की जाती है, बस अपने जो कार्य है उसका अगर पूरी निष्ठा से किया जाए वो भी अपने आप एक देशभक्ति है।
3: बिल्कुल,
2: और ये काम आप बखूबी कर रहे हैं और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि आप गोंडा के ही रहने वाले हैं।
3: यहाँ की माटी, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा मेरे मन से कभी नहीं जा सकता। जब मैं कभी गोंडा आता हूँ मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है लोगों के बीच में आना पसंद करते हैं।
2: सही बात है,
3: जो मुझे गोंडा से मिला गोरखपुर में नहीं मिला।
2: बिल्कुल सही,
3: वहां मैं नौकरी करता हूँ, मिला तो मुझे यहीं से,
2: यादें तो यहीं की,
3: यादें यहीं की लोगों के बीच में यहीं रहा
2: जी।
3: और जहां बचपन बीतता वहां की यादें कभी भूलती नहीं।
2: नहीं भूलती है, सच है।
3: मैं टॉमसन विद्यार्थी रहा, लाल बहादुर शास्त्री का स्टूडेंट रहा मैं।
2: बहुत बहुत प्यारी यादें हैं और बहुत प्यारी बातें आज आपने बताई, और मैं एक बार वापस से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि गोरखपुर से इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला आपने और आप गोंडा आए। आपने अपने बारे में बात करते करते यहाँ की माटी के बारे में जो आपकी यादें हैं, जो आपका डेडिकेशन है वो बताया आपने, और साहित्य को लेकर के जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मेरे तरफ से बहुत सारी दुआएं सर आपको कि जो भी आपने सोचा है वो आपको ज़रूर हासिल हो। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं 10 लोगों की ज़िंदगी बदल दूं, तो मैं चाहता हूं कि वो दिन आपको महसूस हो कि हाँ आपने सच में जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कर लिया है।
3: अंतिम में यही बोलूँगा, ज्ञानस्थली 89.6 में जब भी मुझे याद किया जाएगा मैं हाजिर रहूँगा।
2: अरे बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल
3: मैं यहाँ के माटी से जुड़ा हूँ।
2: बेशक बेशक सर, हम बिल्कुल आपको याद करेंगे और हम बुलाएंगे, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं गोंडावासी, उनको अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज़ जाननी है, तो आपके ज़रिए वो
3: जी पूछ सकते हैं
2: और दोस्तों आज का कैसा लगा ये शो आप चैट बॉक्स पे आकर के हमको बता सकते हैं। और आज हम वापस से बता दें आपको, डॉक्टर भारतेंद्र सिंह सर हमारे साथ मौजूद रहे हैं इस पूरी बातचीत में, जो कि हमने आपको बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष हैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम गोरखपुर से। थैंक यू सो मच, और सर बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: जी।

0: शाम का नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
9: डिलीशियस
0: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
10: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग

0: डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जाके करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

गुरु ना सिर्फ हमें आदर्श मूलों पे चलना सिखाते हैं, अपितु गुरुओं से हमें अपनी हर वो शिक्षा दीक्षा मिलती है जिसके अभाव में शायद हमारा जीवन अधूरा रह सकता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना महत्व टीचर्स डे को हम देते हैं उसे कई गुना ज़्यादा हमें महत्व गुरु पूर्णिमा को भी देना चाहिए, क्योंकि जब गुरु की बात की जाती है तो गुरु शब्द अपने आप में हर उस व्यक्तित्व को समाहित कर लेता है जिसने हमें थोड़ा या ज़्यादा ज्ञान दिया होता है। लिसनर्स, पहली गुरु की बात करें तो पहली गुरु हमारी माँ होती है जिसने हमें बोलना सिखाया, उंगली पकड़कर दुनिया को देखना सिखाया, चलना सिखाया। और दूसरे गुरु हमारे पिता होते हैं जिन्होंने संघर्ष का अर्थ बताया, झुकना नहीं डटकर जीना सिखाया, मेहनत से हर सपना पूरा करना सिखाया। तीसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान के दीपक को जलाना सिखाया, अक्षरों से आगे बढ़कर जीवन का सार समझाया। चौथे गुरु हम खुद अपने रिश्तों को मान लेते हैं, उन रिश्तों को जिन्होंने हमें धैर्य प्रेम और आत्मसम्मान सिखाया। और अंत में हमारे अनुभव

ये हमारे काफ़ी बड़े गुरु होते हैं। अनुभव, अनुभव की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से मिलके बहुत अनुभव महसूस होता है। तो मुझे लगता है हर वो प्रत्येक व्यक्ति जिससे मिलने के बाद हमने एक नया अनुभव बनाया, वो हमारा गुरु है। हर ठोस सी चीज़ को छूकर हमने जो सीखा वो भी हमारा अनुभव है। हर आंसू हौसले को ढलने में मजबूर करने वाला भी हमारा गुरु है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन मैं हर उस व्यक्तित्व के सामने शीश झुकाकर नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया, हमारे जीवन को बेहतरीन बनाया। तो चलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन की जो अंताक्षरी है वो बहुत बेहतरीन होगी और गुरुओं को समर्पित होगी, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि आज की अंताक्षरी थोड़ी फनी भी होनी चाहिए। अच्छी और बुरी दोनों बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे गुरु की बात तो ना ही कहें, दोस्त से बड़ा गुरु कौन हो सकता है जो एक से एक खतरनाक कांड करना भी सिखा देता है। तो चलिए हर उस गुरु को याद करेंगे जिसने हमें कांड करना सिखाया। तो चलिए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, शाम को और सुरीला बनाते हैं।

भाई प्यार है या नहीं है ये तो मेजरमेंट करने वाला डिवाइस हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास आरजेबीना वाला डिवाइस है जो कि आपकी आवाज़ के गानों को महसूस करके बता सकता है कि आज आप जीतने के मूड में है कि नहीं है। तो फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और चैट रूम में अपनी हाजिरी लगाते रहिए, क्योंकि कहीं जाने वाला कोई नहीं है। और मैं चाहूँगी कि आज अपने अपने फेवरेट गुरु का नाम ज़रूर लिखें जिसने आपको मस्ती करना सिखाया, ज़िंदगी को जीना सिखाया। यार सब कुछ ज्ञानवान तो भाई मिल ही जाता है, ज्ञान वाले गुरुओं को तो हम लोगों ने सुबह थैंक यू उनको बोल दिया, गिफ्ट उठ भी भेज दिया, लेकिन आज उन गुरुओं की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने ज़िंदगी जीना सिखाया मस्ती से इन्जॉय करके। फिलहाल एक गुरु मैं भी हो सकती हूँ अगर आप मेरा नाम ले रहे तो, मुझे कोई इसमें मतलब मैं ग्रेटिट्यूड ही दूंगी कि थैंक यू मैंने आपको अगर हंसना बोलना सिखाया, मजे करना सिखाया, तो थैंक्स फॉर बीइंग कंसीडर मी एज अ गुरु। फिलहाल आप लोग मेरे गुरु हैं क्योंकि आप लोग से मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग इतने अच्छे अंदाज से सुनाते हैं चीज़ें, कविताएँ पढ़ते हैं, भावनाओं को रिलेटेबल अंदाज में बोलते हैं। थैंक्स एवरी

ये गाना अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे फेवरेट पर्संस के लिए ज़रूर हो सकता है, जो हमारी ज़िंदगी में गुरु बन के तो ज़रूर आए, साथ ही साथ हमदर्द बन के भी रहे। गुड इवनिंग धर्मेश, गुड इवनिंग सोनिया, गुड इवनिंग हरिश्चंद्र, सविता जी, शुभ संध्या हमारे सभी सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को शुभ संध्या। बिल्कुल हर दर्द सुहाना हो सकता है अगर आपका दर्द बांटने वाला साथ हो तो। एक गुरु वो भी होता है इंसान जो आपकी ज़िंदगी में हमदर्द बन के रहता है, ना सिर्फ हमदर्द बन के आपके दर्द को बांटने की क्षमता भी रखता है। हर सिचुएशन जहां आपको लगता है कि किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, वो वहां आपकी सपोर्ट लाइन बन जाता है, वो आपके लिए आपकी धड़कनों की तरह होता है। जैसे जैसे धड़कने धड़क के आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वैसे ही वो भी करता है।

तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके जो गुरु हैं वो आपके हमदर्द भी हैं या नहीं? अगर हैं तो हैशटैग गुरु लिखिए, अगर नहीं हैं तो फिर नहीं लिखिए। वैसे मुझे तो लगता है हम सभी के गुरु हमदर्द हैं हमारे, और ये गाना सुनते हुए याद करिए उस गुरु के बारे में।

दुआ मुकम्मल जैसी लगती है अगर हमारे साथ कोई हमारी दुआ को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हो। सो वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स, और आप सभी का स्वागत है पुनः आपकी वाली शाम गुंडा मैसी मसाला वाली शाम में। और भाई तैयार रहिए आज हो जाने के लिए, अंताक्षरी में जीत बनाने के लिए। तो जीत बनाने के लिए तैयार हो गए हैं तो मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की ये शाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत शाम होने वाली है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक पर्व टाइप का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जिसमें हम उन सभी शख्स को याद करते हैं जिनका नाम कहीं पन्नों में दबा होता है, दिल के किसी कोने में दबा होता है, यादों की डायरी में दबा होता है। अब तो डायरी लिखवाने का मतलब चलन कम हो गया है। पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब भी कुछ दिनों की बात करूंगी कि लोग एक दूसरे से डायरियां लिखवाते थे ब्लेसिंग्स के तौर पे कि आप मुझे क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो उन डायरी के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन गुरु आपके जीवन में बन के आया, अगर आपने ये काम किया होगा। बाकी तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारी इस जनरेशन में गुरुओं का इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं ना कि योगदान है, वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं हो पाया है। एनीवे, इंगेजिंग रहा या नहीं रहा, मुझे ये ज़रूर लगता है कि हम सभी को अपनी उस डायरी को ज़रूर याद करना चाहिए, अपनी हर उस डायरी को अपनी कहते हैं ना कि पहचान बनानी चाहिए, जिसमें ना सिर्फ हम अपने जो कहते हैं ना कि गुरुओं को याद करते हैं, बल्कि उन यादों को भी याद करते हैं कि हमने कौन कौन सी गलतियां की थी अपनी लाइफ में। गुरु जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश को दिखाते हैं, जो हमारी गलतियों पर डांटते भी हैं और गिनने पर संभालते भी हैं, जो हमें बताते भी हैं कि मंजिल से अभी ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। दीपक बनकर राह दिखाते हैं, गिरते कदमों को उठना सिखाते हैं। जिंदगी में जो कुछ सीखा हमने, हर उस सीख में हमें गुरु नजर आते हैं, हर उस सीख में हमें गुरु नजर आते हैं। गुड इवनिंग सविता जी, और मैं सबसे जानना चाहती हूँ अपने अपने गुरु का भाई जिक्र करो, कौन आपका बेहतरीन गुरु बन के आपके जीवन में आया है। और मेरे गुरु तो बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम लेना मुझे लगता है कि दूसरे की थोड़ी तौहीन होगी अगर मैं उसका नाम नहीं ले पाई। तो हर उस व्यक्ति को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ यहाँ से, जिसने मुझे कुछ भी सिखाया। इवन मैं उस इंसान को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जिसने मुझे पहली बार स्मार्टफोन चलाना सिखाया होगा। मैं उस इंसान को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी जिसने मुझे पहली बार एटीएम से पैसे निकालना सिखाया होगा। और हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो मुझे नहीं पता, वो मुझे सिखाने वाले इंसान को मैं थैंक्स बोलूँगी। आप लोग भी थैंक्स बोल सकते हैं। और एक थैंक्स ग्रेटिट्यूड का शब्द है जो हम हर किसी के लिए बोलना चाहते हैं। सच्ची बता रही हूँ, अगर आप किसी को थैंक्स बोलते हो ना, सामने वाले को बड़ा अच्छा सा फील होता है, अरे यार थैंक्स बोल रहा है।

पहले गुरु के बारे में तो मैंने आप सभी को बता दिया कि आपकी माँ से पहला कोई गुरु हो नहीं सकता। माई है जिसने आपको टेढ़ा आड़ तिरछा लेटना सिखाया, माँ ही है जिसने आपके बॉडी के पार्ट्स को जैसे थे वैसे ही बना के रखा। ऐसा हमारे मम्मियाँ लोग बचपन में कहती थी कि मैंने मालिश कर करके तुम्हारे ऑर्गन्स को एकदम सेट किया है, नहीं तो तुम्हारा ये आड़ा तिरछा हो जाता। और कैसा होता है, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि हाँ आड़ा तिरछा होता है, लेकिन हाँ एक तरफ अगर छोटे बच्चों को देखते हैं, एक तरफ बच्चे सोते हैं तो उनका सर टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, मतलब एक तरफ झुके, क्योंकि मांस अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अभी टिश्यूज एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते हैं, तो सर थोड़ा टेढ़ा सा होता है। लेकिन माँ जो होती है वो मालिश करके करके गोला बना देती है सर का, एकदम गोल मटोल सा। तो माँ से पहला कोई गुरु हो नहीं सकता, उसने हमारी बॉडी को एकदम सेट बनाया, और ऊपर से जब हम पैदा भी नहीं हुए तो माँ ने हमें अपने शरीर की वो महत्वपूर्ण चीज़ें दी जो शायद कोई नहीं दे सकता। जी हाँ, जिनकी उनको ज़रूरत थी, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। माँ ने अपने बोन मैरो से निकाल निकाल के सारी एंटीबॉडी हमें दे दी, इसलिए माँ की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अपने दादा और दादी को, तो दादा लोग तो एकदम ठीक ठाक ही रहते हैं, थोड़ा बहुत दुबले हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं जो भी उनके बुढ़ापे में, लेकिन दादियाँ जो वो हल्की हो जाती हैं, कंपैरेटिवली उनकी जो बोन्स हैं वो हल्की हो जाती हैं। क्या रीजन है? हाँ, वो दादियों के जो कैल्शियम है, दादियों की जो एंटीबॉडीज हैं, आपके पापा हमारे पापा लेके घूम रहे हैं, तो इसीलिए माँ से पहला कोई गुरु नहीं हो सकता। सरिता जी लिखते हैं, मेरे लिए तो जीवन के हर पदों में हर मोड़ पर कोई ना कोई गुरु जरूर मिला, मुझे अच्छे से सीख दे गया। क्या बात है, सही कह रही है सविता जी, हर मोड़ पे हमें कोई ना कोई मिल जाता है। कभी कभी कोई जहांगीर भी हमें कोई ज्ञान दे देता है, और ऐसा ज्ञान दे जाता है कि जो हम समझ ही नहीं सकते, भले हम मोबाइल पे ढूंढें बहुत सारा ज्ञान, लेकिन हमारे आसपास मौजूद जो एक दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है, बस हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कहते हैं गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बड़ा अनमोल होता है। शिष्य के लिए गुरु वह व्यक्ति है जो उसकी कमजोरियों को पहचान कर उसकी ताकत बनाता है, और गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसका शिष्य आगे निकल जाता है। गुरु की जो सफलता है वो शिष्य की सफलता में छिपी होती है। अगर शिष्य कुछ अच्छा करता है तो डेफिनेटली गुरु के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। कहते हैं अंधेरी राहों में जो दीप जलाए, भटके कदमों को मंजिल तक पहुंचाए, जिसकी सीख से जीवन समर जाए, वो गुरु है जो इंसान को इंसान बनाए। नमन है उस ज्ञान को, नमन है उस प्रकाश को, नमन है उस विश्वास को, उस एहसास को जिसने हमें गिरकर फिर उठना सिखाया और मुश्किलों में मुस्कुराना सिखाया। हमने अंगुलीमाल की तो कहानी सुनी होगी बचपन में, अंगुलीमाल गुफा है यहाँ पे श्रावस्ती के पास, हम सब लोग गए होंगे घूमने, और बचपन में हमने देखा था कि हाँ भगवान बुद्ध ने उनसे छोटा सा ज्ञान दे दिया जिससे वो अंगुलीमाल राक्षस परिवर्तित हो गया। तो गुरु वही है जो आपको परिवर्तित कर सके। भाई गुरु बहुत सारे जीवन में आते हैं जो चीखते रहते हैं लेकिन हम परिवर्तित नहीं होते, गुरु वही है जिसकी बातें हमें प्रभावित करती हैं, हमें बदलना सिखाती हैं, इवन हमें हमसे मिलवाती हैं। क्या बोलते हो? अक्सर तो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ गुरु तुम तो बिल्कुल, तो बोलो गुरु हो कि हमसे नहीं, आप हमसे फाकता रखते हो कि नहीं रखते हो?

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

माय डियर ग्रूस, चलिए हो जाइए शुरू, क्योंकि अब हम खेलने जा रहे हैं अंताक्षरी आपके साथ। तो सबसे पहले भाई टीम ए और बी वाले हो जाओ तैयार, हो जाओ शुरू। आपको देती हूँ मैं पहला वाला लेटर, यानी कि सबसे पहला लेटर। और पहला लेटर देने के लिए कौन सी टीम सबसे पहले कॉल करती है, चलिए देखते हैं। तो टीम ए और बी से मेंबर्स तो मुझे दिख रहे हैं बराबर, और मैं दोनों ही टीमों के लिए बोल देती हूँ भाई, सबसे पहले जो कॉल करेगा भाई, ज़्यादातर चांसेस उसी के होते हैं, वही टीम जीतती है। चलिए देखते हैं कॉल किसका सबसे पहले आता है, बिना देरी किए, बिना किसी तरह के टाइम को बर्बाद किए, क्योंकि जो समय बर्बाद

0: गुड इवनिंग इम्तियाज, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। और जो बोले वही इंसान निहाल, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको जीतना होता है वो टाइम पे कॉल कर देता है। तो भाई एक टीम से कॉल तो आ गया है, आवाज सुनते हैं। हेलो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो,
1: वार्निंग, फोन इज नॉट कनेक्टेड।
0: हेलो हेलो, ये क्या हो गया? मतलब पहले ही कॉल नहीं कनेक्ट हुआ, ये कैसी बात हो गई भाई? जीतने वाली टीम मुझे लग रहा है पहले कॉल कर रही है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं आशु जी? वेलकम। और मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए आपने जो सबसे पहले कॉल कर दिया है, तो और लड़कियां बिल्कुल कमर बांध के आई हैं कि हम तो जीते बिना जाएंगे।
2: गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो सबसे पहला तो आप लोग गुरु हैं मेरे लिए, तो पहला लेटर मैं अपने गुरुओं को देती हूँ। आसान सा ही बोलूंगी। सा सा से गाना सुनाइए। सा
2: साकिया नहीं जाना जीना लगे, साकिया नहीं जाना जीना लगे।
0: क्या बात है,
2: मौसम है सुहाना जीना लगे, साकिया नहीं माना जीना लगे।
0: क्या बात है आशु जी, बहुत अच्छी शुरुआत। और मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी बेहतरीन होगा। क्या बात है। तो भाई आशु जी की टीम को मिल जाते हैं पॉइंट्स, और अगले कॉल को मैं ऑन एयर करती हूँ बिना देरी किए, देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
0: ओ अविनाश, त्रिपुरा से, क्या बात है अविनाश, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो स्वागत है आपकी आवाज़ का। अंताक्षरी शुरू हो गई है और लड़कों की टीम से आपका कॉल आ गया है। बड़ी बेहतरीन शुरुआत है, और समय से कॉल किया आपने और समय बचाया, इसीलिए चलिए आपको मैं देती हूँ लेटर। न से गाना सुनाइए।
3: अच्छा, न से, ठीक है, गा देते हैं। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बेहतरीन आगाज, क्या बात है। तो भाई अगले कॉल को ऑन एयर करने की बारी है, चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ अगले कॉल पे। हेलो
5: हेलो मैम।
0: हेलो
5: जी मैम, पूनम बोल रही हूँ कानपुर से।
0: कानपुर से पूनम?
5: जी मैम।
0: ओके, कैसी हैं पूनम? शुभ संध्या।
5: बहुत बढ़िया, शुभ संध्या मैम आपको भी, और अंताक्षरी कार्यक्रम में आज मेरा कॉल लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच पूनम। एंड आपको पहले तो गुड, मतलब आज गुरु पूर्णिमा की, या कहें हमारे गुरुओं को समर्पित दिवस है, तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आपके भी जिंदगी में निश्चित तौर पे कोई ना कोई बेहतरीन गुरु रहा होगा जिसे आप थैंक्स बोलना चाहती होंगी।
5: बिल्कुल मैम, हमारे जीवन में जो हमारा गुरु ग्रह है वो रेडियो से ज्यादा मेरा लगाव रहा है। वैसे तो हमारे माँ बाप पहले गुरु हमारे हैं, इसके बाद आकाशवाणी से हमारा इतना जुड़ाव रहा आज सभी से, तो बस हम आकाशवाणी को ही गुरु मानते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए आपको मैं लेटर देना चाहती हूँ। सा स से गाना खत्म हुआ है अविनाश जी का, तो मैं चाहूंगी कि आप स से गाना सुनाए।
5: स से हम सुनाए, चलिए सुना देते हैं।

0: क्या बात है, थैंक यू सो मच पूनम, बहुत सुरीला आपने गाना गाया और उम्मीद करूंगी कि आगे भी आप अपनी टीम के साथ पूरा सहयोग बना के रखेंगी। थैंक यू। तो अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं अनु?
1: बहुत अच्छी हूँ मैम, बताइए आप।
0: गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं
1: मैम। आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप तो गुरु भी हो इसलिए आपको कुछ ज्यादा ही शुभकामनाएं।
0: मैं गुरु तो हुई लेकिन फिलहाल आप लोग भी मेरे गुरु, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुस्सा होना, नाराज
1: मैम, आप ना दो तरह से गुरु हो, एक तो यहाँ पे आर्य हो, मुझे बहुत सारी चीजें सिखाती हो, और दूसरी बात आप पढ़ाते हो ना, तो आप भी तो गुरु हो।
0: हाँ तो मैं डबल गुरु हूँ। तो अनु आपको ई से गाना सुनाना है, और आप ही की टीम की एक लिसनर
1: ई से
0: एक लिसनर ने गाना सुनाया जो कि ई से खत्म हुआ, तो ई से गाना आपको सुनाना।

0: क्या बात है। और कोई बात नहीं, खबर भी आ जाएगी, देखते हैं कौन जीतता आज। तो टीम के साथ पूरे बने रहिए, नहीं तो टीम आज
1: मैं खबर आ गई है, मेरा प्यार तो अभी आप ही हो, आप मेरे राहुल हो ना।
0: राहुल सिमरन को वैसे छोड़ने नहीं वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनु, बरकरार रहिए, सुनते रहिए, अपनी टीम को सपोर्ट करिए। मेरे यार की तो अगला जो लेटर है वो है क। चलिए देखते हैं क से कौन गाना सुनाता है। हेलो,
2: नमस्ते। मैं
0: नमस्ते, कैसी हैं? शुभ संध्या, आपका शुभ नाम? नाम तो मुझे याद है ना, लेकिन लिसनर्स को तो बताना पड़ेगा ना। तो निशा की आवाज तो हम पहचाने गए। निशा
2: से गाना है?
0: ला से गाना है, नहीं क से, क से, क
2: से,
0: का से, का से,
2: का मैं का से रुका है।
0: हाँ हाँ, का
2: से। तो मैं अभी मुझको हंसाई, कभी मुझको रुलाई, मुझे कितना सताता है वो लड़का, बहुत प्यार आता है वो लड़का, बहुत प्यार आता है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच निशा, बने रहिए आगे, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करिए, थैंक यू। तो चलिए, हमारी लड़कियों की टीम आज बहुत स्ट्रांग लग रही है, लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं और लग रहा है आज लड़कियां जीतने की तैयारी से आई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो हार मानने को तैयार हो, मतलब हार मीन्स की कॉल करना कर रहा हो, लगातार सब कॉल कर रहे हैं। अगली कॉल देखते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, आपका शुभ नाम? हमारे लिसनर्स कॉल करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और अगले कॉल को चलिए ऑन एयर करते हैं, देखते हैं वो क्या सुनाते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ, त्रिपुरा से।
0: अविनाश वापस हमारे साथ है और अविनाश, आपकी टीम को आपकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपकी टीम से मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा। तो चलिए, आपको गाना सुनाना है, आपको आपने सुना गाना किस लेटर से आपके ऊपर आया है?
3: जी जी, वो आया है हाथ से ना।
0: जी
3: जी, तो हाथ से सुना देते हैं।
0: जी,
3: हम प्यार करने वाले, दुनिया से ना डरने वाले, दुनिया से ना डरने वाले, प्यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, रोक सके जो दिल वालों को, ऐसी कोई जेल नहीं, दिल को लगाना इस दुनिया में लोगों कोई खेल नहीं, बांधा है किसने बहती हवा को, रोका है किसने काली घटा को, तोड़ के पिंजरा हम आएंगे। जी तक आता है।
0: क्या बात है, तोड़ के पिंजरा हम आएंगे, गा, क्या बात है
3: जी।
0: तो भाई अविनाश इतना सुंदर गाना गाते हैं, मजा आ जाता है। चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो
4: हेलो, नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार अमित, कैसे हैं आप? और चलिए, लड़कों की टीम भी उठ गई, एकदम तैयार हो गई, तैनात हो गई। ग से गाना सुनाना है अमित आपको।
4: हाँ।
0: ग ग से गमला।
4: ओके ओके। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोड़, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोड़, अंबर सरिया मुंडिया वे कटिया कलिया ना तोड़।
0: अड़ा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। सो भाई अमित ने ला के ऐसी जगह गाड़ी रोकी है कि किसी की गाड़ी आगे चल नहीं पाएगी मुझे लगता है। हेलो
5: हेलो,
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
5: जी जी मैम, मैं पूनम बोल रही हूँ।
0: पूनम कैसी हैं आप? स्वागत है आपका सबसे पहले तो। तो पूनम आपको अड़ा से गाना सुनाना है।
5: किस अक्षर से मैम?
0: अड़ा अड़ा अड़ा
5: अड़ा यानी अड़ा
0: अड़ा अड़ा। हाँ अड़ा
5: जी। तो अड़ा से गाना की अड़ी रे तेरा साथ न छोड़ूंगी, चाहे लग जाए हथकड़ी। अड़ी रे अड़ी तेरा साथ न छोड़ूंगी, चाहे लग जाए हथकड़ी। जी मैम।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच पूनम, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और अंत भी बहुत अच्छा किया। अड़ा वापस से आ गया। वाह पूनम वाह। क्या बात है।
5: हाँ, जो अच्छा मुझे मिला है तो औरों को भी यही अच्छा मिलना चाहिए मैम, देखते हैं अब कौन गा पाते हैं।
0: क्या बात है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। तो पूनम ने भाई गाड़ी ला के वहाँ रोकी है जहाँ पे नहीं रुकनी चाहिए थी। अड़ा वापस से अड़ा आ गया है। चलिए देखते हैं, लड़कियों के पॉइंट्स हो गए 120, लड़के 90 पे आ चुके हैं। बढ़िया खेल रहे हैं, दोनों बराबर भाग रहे हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके। मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका। हेलो
6: हेलो
0: हेलो, अविनाश जी वापस से स्वागत है आपका।
6: जी,
0: अड़ा से गाना सुनाना है आपको। थोड़ा सा रेडियो की आवाज़ कम कर लें, आपके पास रेडियो की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है।
6: जी जी, अड़ा से फिर आ गया।
0: हाँ अड़ा से फिर आ गया।
6: अच्छा पूनम जी ने ऐसा मतलब कि चक्रव्यूह रचा कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं से खत्म कर दिया है।
0: हाँ मतलब ऐसा नहीं कि लड़के ना फंसे, लड़कों ने लड़कियों को फंसाया तो लड़कियों ने भी सोचा कि वापस दांव पेच हम भी खेलेंगे।
6: जी जी, मुझको फंसा ले फंस जाए, ऐसा उन्होंने खेल दिया है।
0: चलिए
6: जी, तो चलिए इसमें मतलब कि एक गा देते हैं, मतलब कि इसमें धुन आएगा पहले। डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डिंग डिंग डंग डिंग डिंग डिंग डंग। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरा करो गिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। जी
0: क्या बात है, आप भी सोच के बैठे थे।
6: जी जी, जब हमारे दोस्त ने जब वो अड़ा छोड़ा था तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, अगर लड़की का तो मैं
0: क्या बात है। मतलब ये होती है टीम पावर, और मतलब लेटर आने के पहले हम तैयारी एकदम बरकरार रखेंगे। तो कौन सा लेटर आपने दिया लास्ट में, कहाँ पे रोका आपने?
6: जी, मैंने सुना तेरा करूँ गिन गिन के इंतजार रा फेरा
0: आई बाहर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई ये है टीम की मतलब यूनिटी, और ये यूनिटी मुझे देख के लग रहा है कि आज तो दोनों टीमें लग रहा है कि एक साथ जीतने वाली हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि दो फर्स्ट आने वाले हमारे पास वो हों, तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छा चल रहा है। चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो
7: हेलो, मैं बोल रहा हूँ।
0: अमृत, आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। हेलो
7: हेलो
0: हेलो,
7: अब आवाज आ रही है?
0: बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। सुमित फिर से कॉल करें, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो
8: हेलो मैम।
0: आशु जी
8: राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई
0: हो गई। ओके थैंक यू। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, और कॉल हो गया डिस्कनेक्ट। ओ माय गॉड, अगला कॉल किसका है, आवाज़ सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
9: आवाज़ नहीं जा रही।
0: हेलो, हाँ अनु अभी आपकी आवाज़ आ रही है। राम तेरी
9: किस तरह से गाना है ना?
0: गंगा मैली हो गई, ई से गाना है।
9: ई से?
0: ई
9: याद आ रही है मुझे चलेगा?
0: हाँ?
9: याद आ रही है चलेगा ये गाना?
0: नहीं, ये कैसे चलेगा, ये तो याद से शुरू होता है।
9: हाँ ये तो सही।
0: ई से?
9: ई से अभी तो भूल गई, एक ही याद था।
0: एक ही याद था, सोचो ई से तो इतने गाने इतने गाने इतने गाने, क्या बताऊं।
9: अभी नहीं याद आ रहा है।
0: अरे कोशिश तो करो, बहुत गाने हैं। ई से सबसे
9: गाने तो मैं बहुत याद करती हूँ, जितना टिप का लोड होता है याद करके रख लेती हूँ, और जब अंताक्षरी आती है तो किसी किसी दिन याद नहीं आता, भूल जाती हूँ, कहीं नोट करती नहीं हूँ।
0: अब मेहनत करो, ऐसे गाने सोचो कितने होते हैं।
9: राशि
0: अड़ा अड़ा से, वैसे ई से आपको गाना है।
9: पक्का अगली अंताक्षरी में लाएंगे हम अड़ा से गाना सोच कर। जितने टिप का लोड है, जैसे इस बार अंताक्षरी में जो आया और गाना नहीं खींच चुका, वो मैं अगली बार ढूंढ के लाती हूँ, लेकिन वो आता ही नहीं था।
0: क्या करे, हमारे सोचने के हिसाब से चीजें कहाँ होती हैं। चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं। हेलो
10: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, आपका शुभ नाम?
10: मेरा नाम सविता दुबे। कौन से चीज से गाना पड़ेगा?
0: ई से गाना गाना है आपको।
10: दिल करता है इलो इलो, जब बागों में कलियों ने कहा, भवरे से कहा इलो इलो।
0: क्या इलो बात इलो है, और सविता जी के पास हमारे गाने ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बात है। इलू इलू ओ आ गया, क्या बात है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो भाई लड़कों की टीम पे आ गया मुझे लग रहा है वो, क्योंकि अब कॉल जिसका आएगा वो किसका होगा पहले तो पता ही चले। हेलो,
11: मैं पहुंच गया थे लड़कों
0: को। ओ से गाना सुनाना है अविनाश जी।
11: किसे? ओ से
0: ऊ
11: इलू
0: इलू
11: ऊ इलू इलू, तो वहाँ पर लू आता है ना, मतलब ल आता है
0: लू।
11: हाँ तो वहाँ तो ल आता है ना,
0: ऊ की मात्रा भी तो आती है। चलिए ल से सुनाइए।
11: अच्छा ठीक है, ल से सुना देते हैं गाना। तो लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है। जी हाँ से थोड़ा है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। आवाज, हेलो,
12: नमस्कार।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम?
12: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओ राकेश जी, कैसे हैं, स्वागत है आपकी आवाज का। और
12: जी बढ़िया है।
0: आपको ल से गाना सुनाना है।
12: ल से, ओके। ल दुपट्टा और यार तेरा हवा के झोंके से, ल दुपट्टा और यार तेरा हवा के झोंके से, तुझको क्या ने देख लिया हाय रे धोखे से, मना किसके दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो, मना किसके दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। जी जी
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गाना सुनाने के लिए राकेश जी, और उम्मीद है कि आगे आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा, आपकी टीम का सपोर्ट आप करते रहेंगे, थैंक यू सो मच।
12: बिल्कुल।
0: सो राकेश जी ने कॉल कर दिया है, और मैं अब आपको बता दूं कि भाई अब जितने भी कॉल्स थे, अब मैं आप लोग थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको देती हूँ एक ब्रेक, ब्रेक मतलब कि एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक, इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड यानी कि वर्ल्ड राउंड, और अभी हमारे पास काफ़ी समय है, परेशान बिल्कुल ना हो। तो एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक और इसके बाद हम करते हैं शुरुआत वर्ल्ड राउंड की। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड राउंड के लिए आप लोग एकदम फुल टू तैयार हैं, और बिल्कुल दिल पे जख्म नहीं खाएंगे, और बढ़िया से आज खेल के जाएंगे। लेट्स एंजॉय दिस बढ़िया सा गाना फ्रॉम धुरंधर 2।

0: तो भाई सैयारा रे सैयारा से मैं गाना जो आपको सुना रही हूँ इसी से पहला वर्ड आपको देने वाली हूँ। पहला कॉल भी आ चुका है, चलिए आवाज सुनते हैं किसकी। हेलो
1: हेलो जी नमस्कार।
0: वापस से अविनाश हमारे साथ है। तो अविनाश सैयारा शब्द से गाना आपको सबसे पहले सुनाना है।
1: क्या तैयारा?
0: सैयारा।
1: अच्छा सैयारा जी। अच्छा सैयारा मतलब कि और सैया से भी सुना सकते हैं ना?
0: नहीं सैयारा शब्द पूरा आना चाहिए।
1: अरे सैयारा
0: अभी तो एक फिल्म भी आई थी, आप तो मतलब भूल गए।
1: नया फिल्म तो मैं देखता नहीं हूँ ना इसलिए। लेकिन सैया सब
0: मूवी जरूर नहीं है लेकिन गाना उसमें पुराना ही वाला रिलॉन्च हुआ था। काफी पुराना गाना था इसी शब्द से। मुझे लगा इससे गाना तो आपको आता होगा, बहुत आसान शब्द है।
1: अच्छा सोचते हैं देखते हैं।

सो अविनाश जी चले गए मुझे लग रहा है सोचने, और चलिए देखते हैं अगला कौन है जो आने वाला है और सुनाने वाला है सैयारा से गाना। कौन है भाई कौन जिसकी आवाज में छुपा है शब्द सैयारा। चलिए इंतजार का फल मीठा सक्सेसफुल होगा, कौन गाएगा ये तो अभी पता चले।

0: तो भाई गाना कोई गा रहा है कि नहीं गा रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इंतजार अभी मैं कर ही नहीं हूँ, कॉल आप भी चुका है, देखते कौन है।
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम, भूल गया है मैंने
0: शब्द से गाना गाना है आपको, शब्द मैंने दिया है सैयारा, सैयारा से गाना गाना है, जैसे होता नहीं वर्ड से, दिल से, हम से, ऐसे है।
1: सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ, पर मैं मुझे आता तो नहीं है ज्यादा।
0: कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करी थी कि किसी को ये गाना तो आता ही होगा, बड़ा फेमस हुआ था, फिलहाल आपने सुना
1: आप अपने टीम में। लेकिन याद नहीं होता है नया गाना।
0: ये बात तो, पता नहीं क्यों नए गाने याद नहीं होते, ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इतना गा दिया काफी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अमित ने अपनी टीम को दिला दिया पॉइंट। सही।

0: देता हूँ। अब पूरा गाना तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, तो लड़कों की टीम से हो गया ये गाना। चलिए देखते हैं अगला कौन है जो गाना सुनाने के लिए कॉल करने वाला है। ये बात समझ लीजिए, अगर आप स्लो मोशन में कॉल करेंगे तो आपकी टीम को पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। अगला कॉल देखते हैं किसका है। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो पूनम, एम आई राइट? मैंने आवाज पहचानना शुरू कर दिया है।
1: क्या बात है, और अब मैम आप आवाज बहुत अच्छे से पहचान जाती हैं।
0: थैंक यू सो मच। और पूनम मैं आपको वर्ड देना चाहूंगी, मौसम।
1: मौसम ओके। मौसम से तो बहुत गाने हैं, मैम गा लेती हूँ। मौसम

0: क्या बात है, क्या बात है, मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: जी थैंक यू।
0: तो भाई पूनम ने गाना सुना दिया, अगले कॉल को मौका देने की बारी आ चुकी है। चलिए देखते हैं कौन क्या सुना रहा है। फिलहाल अगले कॉल के साथ ऑन एयर है हमारे साथ, हेलो
2: हेलो,
0: वापस से हमारे साथ अविनाश है। अविनाश आर यू रेडी?
2: जी देखते हैं क्या सब रिजल्ट मिलता है।
0: फिलहाल आसान सा दूंगी, आशिक। मैं जो गाने में शब्द आपके हैं, जो आप गाना गाते हैं उसी से शब्द देती हूँ। तो अभी इन्होंने गाया मौसम है आशिकाना, तो आशिकाना मैंने तोड़ दिया, आशिक बना दिया।
2: ठीक है तो आशिक शब्द से गा देते हैं।

0: आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। निंदे उड़ाना, चाहत पुंजाना, अच्छी नहीं दिल लगी, मरने से कभी डरता नहीं। ये गाना इतना ही आता है।
1: लिरिक्स थोड़ी सी गड़बड़ थी, आपको पता
0: है। हाँ हाँ गड़बड़ थी लेकिन
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत इतनी बेहतरीन थी, मन तो कर रहा था कि पूरा सुना जाए, लेकिन क्या किया गया कोई बात नहीं। मरने से मैं कभी डरता नहीं, और ये गाना यार बड़ा अच्छा गाना, मैं आज ये गाना सुनाऊंगी आप लोग को। हेलो।
2: हेलो मैम।
1: हमारे साथ हमारी आशु जी मौजूद हैं। आशु जी, आपको शब्द देना चाहूंगी डर।
2: मैम जी, मैम
1: डर,
2: डर।
1: इन्होंने गाया मरने से मैं कभी डरता नहीं,
2: डर। आई नहीं रहा मुँह पे।
1: प्रयास प्रयास, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
2: मैम सॉन्ग तो बहुत है लेकिन मुझे आज नहीं रहा।
1: चलिए मैं किसी और को मौका देती हूँ।
2: बिल्कुल मैम।
1: हेलो।
3: हेलो।
1: एक के बाद एक की बारी, एक बहन गई तो दूसरी जा रही है, और अभी हम सुन रहे हैं प्रीति जी की आवाज। हेलो। देखिए मैंने कितना अच्छा गेस किया। गुड इवनिंग प्रीति जी, लग रहा है आजकल आप बहुत ज्यादा खाने बनाने लग गई हैं और आप दिखाई नहीं देती हैं।
2: हाँ हस्बैंड की तबीयत में कुछ नहीं ठीक रहती है मैम, इसीलिए।
1: कोई बात नहीं, अपना ध्यान
2: तो वेरी ज्यादा इसीलिए।
1: हाँ तो डर से गाना सुना दीजिए।
2: किसके मैम?
1: डर डर
2: डर।
1: डर।
2: प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते हैं तो प्यार करते नहीं।
1: क्या बात है, आपने किसी बड़े एग्जाम का इंटरव्यू दिया था तो आप क्रैक कर ली होती प्रीति जी। शब्द सुनते ही
2: मैं बैड लग होता है, बहुत तैयारी के साथ एग्जाम देती हूँ तभी नहीं क्रैक कर पाती हूँ।
1: तुरंत आपने कहा कि मतलब मैंने डर बोला कि तुरंत मुंह से गाना निकल गया। यहाँ अभी आप ही की सिस्टर आशु जी सोच रही थी डर से तो गाना ही नहीं याद आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है।
2: थैंक्स मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा
1: आपको।
2: एक गुरु को दे रहा है।
1: आप भी हमारी बहुत बड़ी गुरु हैं, आपने कविताओं से बहुत कुछ सिखाया आपने। क्या बात है। तो चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
4: हेलो
1: तो वापस से आपका स्वागत है अमित, और अमित आपको मैं शब्द देना चाहती हूँ। प्यार, प्यार से गाना।
4: प्यार। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ईमान होके रहता है।
1: ओहो, ये प्यार होके रहता है, क्या बात है। और मैं तो चाहूंगी कि ऐसे ही आप लोग अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहिए। और भाई लड़कों के जो पॉइंट्स हैं अभी जो करंटली हैं वो है 340, और लड़कियों के जो हैं 290। ठीक है, तो इस राउंड को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त, और मैं शुरू करती हूँ 1 मिनट राउंड। तो उम्मीद है कि आप लोग 1 मिनट वाले राउंड के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। लड़कों के पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 340 हैं, और लड़कियों के जो पॉइंट हैं वो हैं 290। ठीक है, तो इस कंपटीशन को हार जीत में बदलने के लिए मैं 1 मिनट राउंड शुरू कर रही हूँ। 1 मिनट राउंड में आपको क्या करना है, मैक्सिमम गाने गाने हैं और अपनी टीम को जीत के पास पहुँचाना है। आई होप आप सब समझ गए होंगे कैसे पहुंचाना है। तो सबसे पहला कॉल आ चुका है, बिना देरी किए आवाज़ सुनते हैं इसको। हेलो।
5: हेलो।
1: हेलो
5: हेलो
1: हेलो
5: हेलो।
1: सो कॉल आवाज नहीं आई आप लोग की, तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ जो सबसे पहले कॉल करने वाला है 1 मिनट राउंड के लिए अपनी टीम को जिताने के लिए। तो 1 मिनट आपके गाने आपको जिताएंगे। तो कौन कॉल कर रहा है पहले तो सब लोग सोचने लगेंगे ना, तुम करो दिमाग में चल रहा होगा कौन करेगा। आ जा रे यू ना तड़पाना तू मुझको, तो भाई तड़पाइए मत, अपनी टीम को जिताने की कोशिश करिए। और अभी तक कोई कॉल आया नहीं है, मुझे लग रहा है कि कोई तो प्रॉब्लम चल रही है। कॉल आया, चलिए सुनते हैं आवाज़। हेलो ओके प्रीति जी, आप आ गई हैं 1 मिनट राउंड के लिए, तो मतलब लड़कियों की टीम से तो एक पक्का कैंडिडेट आ गया। मतलब कबड्डी में होता नहीं है कि अब पक्के वाले को भेजो। मतलब आप लोग अपनी मतलब जो टीम पावर है उसको फुल यूटिलाइज कर रही है, ये तो मुझे लग रहा है। चलिए अगर आपकी अनुमति हो तो मैं समय शुरू करूं।
2: जी मैम जी,
1: आपका समय शुरू होता है अब।
2: हर मुस्कुराहट मुस्कान नहीं, हम तुम एक कमरे, हमेरा ही प्यार हर करम अपना, हम यार हैं तुम्हारे वाह वाह रंगी, हंसते हंसते कट जाए कभी कभी में, सपनों से सुंदर सपनों से घड़ी घड़ी मोरा दिल दिल दिल दिल प्यार हुआ, मैं क्या जाने दो मुझे जाना है, दगा बाजरे दगा बाजरे कजरा रे सुनसाने राहों में, अनजाने पिया पिया ओ पिया, चूड़ी जो खाने की मुड़ मुड़ के ना देख ना ना करते क्या, मेरे हाथों में नानो सर समुंदर पार, मैया या जोत हम तुम झूठ बोले कौवा काटे काटा लगा, मैंने प्यार तुझे राम तेरी गंगा में, सुन साहिब सुन ये गोटेदार रे चना जोर गरम गरम चाय की प्याली है शायद मेरी।
1: बस बस बस बस आशु जी कितने कितने गाने गाए याद है कि नहीं?
2: मैं काउंट नहीं किया हमने,
1: 30 गाने पूरे गाए आपने, 30 songs, ओ माय गॉड। अच्छा मतलब जो लोग 1 मिनट राउंड से बहुत रूबरू नहीं है उन्हें नहीं पता था कि मतलब इतने गाने भी गाए जाते होंगे, मतलब वो लोग ऐसे सुने तो पता चले कि 35 38 38 गाने गा गए।
2: मैं बीच में हंस दिए, एक दो गाना उसी मिल गए।
1: क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपकी जो लड़कियों की टीम है ना वो बहुत मजी हुई खिलाड़ी है, और इसी चक्कर में इन्होंने बना लिए 3, 2, 5, 590 points। ओ माय गॉड अब बारी है लड़कों की, चलिए देखते हैं लड़कों की टीम क्या गुण खिलाती है। अब मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब लड़कों को बहुत दिग्गज खिलाड़ी को भेजना पड़ेगा 1 मिनट में गाना गाने वाले के लिए। देखिए 1 मिनट राउंड आपको पता है कि क्या होता है, और मैं जानती हूँ कि इसमें अब मैं चाहूँगी लड़कों की टीम कॉल करे, तो फिलहाल मौका आप ही को मिलेगा क्योंकि मैं इस बार ये नहीं करने वाली हूँ कि जो भी कॉल करेगा उसको पहले मौका मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जो सबसे पहले कॉल करेगा उसी को मौका मिलेगा। हेलो
3: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, फिलहाल तो इवनिंग।
3: गुड इवनिंग
1: अनु।
3: नहीं रिवांशी।
1: फिलहाल लड़कों की बारी है और इंतजार लड़कों की टीम से है, अगर आप लड़कों की टीम से गाना चाहती हो तो गा सकती हैं।
3: मैम एक बार दे दीजिए ना मौका।
1: नहीं मौका तो अब खत्म हो गया क्योंकि टाइम भी खत्म हो चुका है और लड़कों की बारी बस बची है, 1 मिनट टाइम देना है।
3: मैम पता है मैं रोटियां बना रही थी तो छोड़ के आई हूँ।
1: तो गा दीजिए ना लड़कों की टीम से, गा दीजिए, पॉइंट तो लड़कों की टीम को मिल जाएगा। तो लड़कों की टीम भी आपको दुआएं देगी। हेलो रिवांश, नहीं मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लड़कों की टीम से गा सकती हैं, नो डाउट, क्योंकि आपने पहली बार कॉल
3: किया। लड़कों को डबल बार मौका दे देना ना।
1: नहीं मैं लड़कों को दो बार मौका क्यों दूँ, आप ही गा दीजिए, कोई बात नहीं।
3: तो मैम, लेकिन मैं तो अपनी टीम के लिए गाना चाहती हूँ ना।
1: नहीं तो आपकी टीम से एक मिनट का जो टाइम था वो मिल चुका है, और एक मिनट का टाइम लड़कों की टीम को मिलना है, तो आपने पहली बार कॉल किया है तो आप लड़कों की टीम से गा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लिसनर जो एक दूसरे की टीम में गाते हैं।
3: ओके ठीक है मैम,
1: कम से कम लड़के ये तो सोचेंगे लड़कियों ने जिता दिया।
3: हाँ ठीक है मैम।
1: तो एक मिनट शुरू करूँ मैं आपका?
3: यस मैम।
1: आप रेडी हैं?
3: यस मैम।
1: एक मिनट में मैक्सिमम गाने गाने आपको, ठीक है?
3: यस मैम।
1: 1 2 3 स्टार्ट।
3: मौका मिलेगा तेरे नाम किया है परदेसी परदेसी, कितना हसीन चेहरा दिल के टुकड़े टुकड़े करके, एक ऐसी लड़की थी तुमने पुकारा, तेरी मेरी प्रेम कहानी भी लोगों ने, जिंदगी में आए हो चांद के पास, चलो आपके प्यार में एक हुआ सत्य कहते हैं, एक सुचनरिया कर लो पंछी सुर में गाते हैं, दीवाना पूछ लेगा ममता के मंदिर किताबें बहुत सी, चेहरे पे तेरे चेहरा क्या देखते हो, मुझे इक्स है मेरी जान है तू, तेरा मुझसे है माता कोई, मेरे सामने वाली दिल की अदालत दरोगा जी, तुमसे मिलकर राधिका गौरी से सावन के झूलों ने, सावन को आने दो बरखा रानी, बोल राधा बोल, बातों को तेरी भुला ना सकेंगे, चांद गवाह है चांद तारे गवाह, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा, चांद तारे फूल चंदन आज गली में आज चांद निकला, चांद सी महबूबा हो मेरी घुटे में चंदा, चांदनी हो चांदनी चांद तारे तोड़ लाऊं, चांद आहे भरेगा गोरी रंग से गोरी है कलाई, धूप में लिखना रंग करो जिस दिन जिए तो जिए जिंदगी का सफर, दूल्हे का तेरा लाल दुपट्टा।
1: अरे बाप रे, ये कौन सी ट्रेन निकली थी गानों को लाद के। क्या कहने, बहुत मज़ा आया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गुनगुनाती भी ना तो और मज़ा आता। और इसी के साथ आपने पता है कितने गाने गाए, पता है?
3: यस मैम।
1: कितने गाने गाए?
3: 43।
1: एग्जैक्टली, मेरे उंगली पे 43 आया और यहाँ पे टाइम पूरा हुआ। 43 गाने, माय गॉड। और लड़के खुश नसीब हैं, ओह माय गॉड, ये तो भाई गलत हो गया। और हेलो रिवांशी, ओह माय गॉड, लड़कियों ने दिला दिए 430 पॉइंट लड़कों को, और इसी के साथ लड़कों की हो जाती है जीत। ये तो भाई खतरनाक हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है, 437, ओ माय गॉड। मैंने तो सोचा था कि लड़कों की टीम इतनी खतरनाक जीत तो अपने नाम नहीं करेगी, फिलहाल लड़कों ने इतनी खतरनाक जीत जो है अपने नाम कर ली है, तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ लड़कों की टीम के हो जाते हैं 780 पॉइंट्स। पर मैं ये कहूँगी लड़कियों की टीम से एक मेंबर ने कॉल करके गाना सुनाया, क्योंकि लड़कों की टीम से कॉल नहीं आ रहा था। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ए एंड बी, बोथ ऑफ यू, क्योंकि बोथ ऑफ टीम ने बहुत अच्छा खेला। और मैं यही कहूँगी कि आज रिवांशी ने मुझे शॉक कर दिया, मतलब कैसे आपने, और ये तैयारी थी तो आप अभी तक रोटियां क्यों बना रही थी, आपको पहले आके अपनी टीम को सपोर्ट कर देना चाहिए था। और चलिए, बादशाह टीम है मेरी दोनों की, मतलब दोनों ने बहुत दमदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन मतलब मुझे ये मज़ा आया कि मतलब गाने गाए नहीं गए। हाँ ये बात तो सही है रिवांशी, अगर आप गानों को गाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और इसी के साथ आपकी टीम को मतलब विजयी बनाया गया, लड़कों की टीम से आपने गाया, लड़कों को आपने जिताया, लेकिन लड़कियों की टीम ने गा के अपने ये पॉइंट्स अर्जित किए, तो मेरे लिए लड़कियों की टीम भी विजयी है। पॉइंट्स में भले लड़के जीत गए, लेकिन अगर मेहनत की बात की जाए तो लड़कियां विजयी हैं मेरे लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ए, गर्ल्स टीम इज विनर एज वेल एज द बॉयज टीम इज ऑल्सो विनर। पॉइंट्स की नज़र में लड़कों की टीम विनर है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए लड़कियों की टीम। सो बेस्ट परफॉर्मर्स आर द गर्ल्स, बट एज कंपैरिजन टू द पॉइंट्स लड़के जीते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीतने की इस कागार पे आने के बाद, इतना बढ़िया खेलने के बाद, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे भोजपुरिया शाम में, करेंगे बहुत सारी बातें और आपके दिल की जानेंगे आप ही की आवाज़ में। तो कल बात आपसे होगी, लेकिन अवधि में होगी, कौन क्या बताएगा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में वो तो कल ही पता चलेगा। तो कल कॉलिंग में आपसे बात होगी, तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि कल कॉल नहीं होगा, तो कल भी कॉलिंग होगा, लेकिन बात होगी अवधि में, आपकी मातृभाषा में।

वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पर माइशी विद आर जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड एवरीवन ये है आज की दिल की उपज जज्बातों की आई लव दिस सॉन्ग

अर्ज किया है, निगाह रखता हूँ पर आवाज नहीं करता, निगाह रखता हूँ पर आवाज नहीं करता, हर एक शिकार बाज नहीं करता। निगाह रखता हूँ पर आवाज नहीं करता, हर एक का शिकार बाज नहीं करता। तुम मुझसे अदब से पेश आओ तो ठीक, वरना मैं हर किसी का लिहाज नहीं करता। जवाब तो दे सकता हूँ मैं भी, लेकिन जाया सब पर यूं अल्फाज नहीं करता। जख्म खा लेता हूँ सीने पर अपने, जख्म खा लेता हूँ सीने पर अपने, कुरेदता हूँ उन्हें बस इलाज नहीं करता। नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और फरमाइशी एक ऐसी महफिल है जहां गीत बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, बस छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम करना है अपने लिए, फटाफट से आइए चैट बॉक्स पे और अपनी फरमाइशी की गठरी को खोलिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना आज के मूड के हिसाब से टटोलिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी का? मुस्तफा जी सऊदी से, महेंद्र राजस्थान से, धर्मेश त्रिपाठी मालवे नगर से, राजेश सिंह जी, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, राजू विश्वास सीतापुर से आपका स्वागत है, शशि सिंह जी गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, कार्तिक कश्यप, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, रौनक तिवारी, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जीरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, अरमान पटेल नगर गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपकी फरमाइशी की महफिल में, आपके जज्बातों की महफिल में और आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की बहुत ही खास शाम की महफिल में। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश दोस्तों। पहली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में? पहली फरमाइश है मुस्तफा जी की सऊदी से और उनको सुनना है गाना दिल की हालत किसको बताएं। जो दिल की हालत सुनना चाहे, दिल की हालत उन्हें ही बताना चाहिए। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, अपनी जज्बातों को साझा करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पागल तुम भी पागल, हमने एंजॉय किया है मुस्तफा जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है दिल तेरा आशिक। सो किसका आपका दिल हुआ है आशिक, मुझे चैट बॉक्स में लिख के चाहे तो आप बता सकते हैं। एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सोनिया तिवारी आपका स्वागत है। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। ओहो वाह, ये तो ये वाला गाना है, आई लव दिस।

मैंने भी छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। जी हाँ दोस्तों, हमने एंजॉय किया है ये गाना महेंद्र की फरमाइश बजो की है राजस्थान से। और महेंद्र का कहना है कि अरे मैडम जी, ये गाना तो हमारा बस ऐसे एंजॉयमेंट के लिए सुनने का मन था, हमारा कुछ चोरी ओरी नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो FIR आपकी कैंसिल की जाती है और आपका कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए हमने एंजॉय किया है महेंद्र की फरमाइश पर ये वाला नगमा। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले आज है कोई शुभ अवसर और उसका आया है शुभकामना वाला मैसेज। जी हाँ दोस्तों, श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी का गोंडा से मैसेज आया है कि आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच श्याम नाम की पगली जी, आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बहुत बधाई और गुरु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी जिंदगी में खुशियों का म्यूजिक कभी भी धीमा मींस स्लो ना हो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की और ओह माय गॉड, धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। आए हाय क्यों ऐसी दुविधा नहीं आनी चाहिए किसी के भी जीवन में कि कोई प्यार किसी और का हो, कोई किसी को चाहता हो लेकिन उसे कोई और चाहता हो और वो किसी और को चाहता हो। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की और कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा सुनहरा नगमा धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर।

और का तुझे चाहता कोई और है। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है मोहम्मद अजीज की आवाज में ये बहुत ही अजीज सा नगमा मेरी छोटी सी बगिया। सो एंजॉय करते हैं प्यार किया है प्यार करेंगे मूवी का ये वाला गाना मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच। धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं, कुछ प्यार दिल में होकर भी लफ्जों में नहीं आ पाते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, जैसे दर्द भरे नगमे की फरमाइश को अपनी खूबसूरत आवाज़ में और अंदाज से सजाने के लिए आज सिंपल जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ ने इस गीत के हर एहसास को और भी गहरा कर दिया। यूं ही अपनी आवाज़ से हमारे दिल को छूते रहिए, और आप भी धर्मेश जी ऐसे ही हम सब के दिलों में जगह आप भी बनाते रहिए, और अपने दिलों में थोड़ी सी जगह अपनी आर्जिस सिंपल नॉट से सिंपल के लिए दीजिए।

ये जमीन हंसे, आसमान हंसे, हमने एंजॉय किया है मेरी छोटी सी बगिया के नन्ही कली गाना, सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज़, विकास गोंडा से। उनको सुनना है गाना तेरी कसम तेरी राहों में आकर। सो एंजॉय करते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही दर्द भरा नगमा, इतना दर्द भरा नगमा, इतना स्लो, इतनी दर्द के साथ में। आखिर कहाँ सहलाते हैं इतना दर्द, कौन पार्सल करता है, आखिर कौन से शहर से कुरियर होता है इतना ढेर सारा, हाँ इतना ढेर सारा दर्द लेके कहाँ कहाँ जाते रहते हैं आप। अगर इतना दर्द आपने मुझे यहाँ वो भी शाम की महफिल में, सुकून की महफिल में दे दिया है, तो भाई आप सुबह दोपहर मुझे लगता है आप ब्रेकफास्ट में भी दर्द खाते हो, आप लंच में भी दर्द खाते हो, फिर उसके बाद में आप फिर इवनिंग में भी, फिर उसके बाद में रात में, हाय रे ओवरनाइट तो नहीं ऐसा होता है, लेट नाइट तो ऐसे आप दर्द की पिल्स नहीं लेते रहते हो। प्लीज इस गाने को सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई नहीं, अब भगवान प्लीज मेरी जिंदगी में कभी इतना दर्द तो मत देना कि मुझे इतना दर्द भरा गाना सुनना पड़े। नो सबने एंजॉय किया धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे ये वाला नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, अनोखी शर्मा आपका स्वागत है आपके अपने शो में। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश जग्गू दादा को, जुगल किशोर वर्मा जी को आग और शोले मूवी का सुनना है गाना आज सुबह जब मैं जगा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और इसी के साथ में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ कि आज सुबह आप सभी ने जग के सबसे पहला काम कौन सा किया है। वैसे मैं जानती हूँ कोई फोन उठाता है या फिर कोई ऐसे योगा करता है, कोई कुछ ना कुछ ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स लेता है, कुछ ना कुछ तो कोई भाई सुबह उठते ही सबसे पहला काम करता ही है। तो आप लोगों ने क्या किया है मैं जानना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी हो रही है इस गाने को बजाने के बाद में। सो एंजॉय करते हैं जग्गू दादा की फरमाइश और आपके ढेर सारे आंसर्स के साथ में मिलते हैं इस गाने के उस पर।

मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, हमें एंजॉय किया है ये नगमा। मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर इसी के साथ में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग आज सुबह उठे थे तो सबसे पहला काम क्या किया था। तो जग्गू दादा का मीन्स जुगल किशोर वर्मा जी का एमपी से कहना है कि मैम आज गुरु पूर्णिमा थी तो सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम किया, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो माता पिता है ना। ओ वाओ कितने अच्छे हो आप। और फिर इसके बाद में मेरे एक लिसनर का पूछना है कि अच्छा आप जागती भी हैं मैम, सो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि हाँ कोई जागता भी है कोई सोता भी है। वैसे मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने बजे आप लोग सो के उठते होंगे उस समय मैं सोती होंगी, और फिर इसके बाद में इनफैक्ट इस टाइम जब आपका गुड इवनिंग हुआ है तब मेरा गुड मॉर्निंग होता है। अब जब मेरा जब आपका गुड मॉर्निंग होता है तब मेरा गुड नाइट होता है, लेट नाइट होता है। पता नहीं क्यों, आखिर कौन से ऐसा लग रहा है कि मैं इसी गोले पे होके भी किसी दूसरे गोले पे रहती हूँ, किसी दूसरे गोले को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वहाँ एडवेंचर्स हो रहे हैं, वहाँ मैं सर्वाइवल मोड में हमेशा रहती हूँ। डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ऐसे ही चलेगा तभी तो सबका सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना दोस्तों। सही कहा ना मैंने। वैसे दूध में पानी मिलाने के बाद में पता नहीं किसी को कैसे नहीं पता चलता कि इसमें पानी मिला हुआ कि खाली दूध है। मुझे तो खाली दूध भी रहता है तो ऐसा लगता है कि आए हाय, जैसे लग रहा है कि आधा से ज्यादा पानी ही मिला दिया किसी ने है। तो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू विश्वास की, उनको सुनना है गाना छतरी न खोल बरसात में भीग जाने दे भीगी रात में। कुमार सानू पूर्णिमा जी की आवाज में हाउ रोमांटिक गाना फाइनली। दिल उछल उछल के कूद कूद के अब गाएगा हंसेगा, किसी को याद करेगा, किसी की याद में रोएगा लेकिन खुशी के आंसू रोएगा, और किसी की याद में तो गूज बम्स भी किसी ना किसी को आने ही वाले हैं। और किसी का किसी को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि किसी का कोई उसके बगल में ही बैठा होगा, वो दोनों साथ में गाने एंजॉय करेंगे। वाओ सो एंजॉय करते कुमार सानू पूर्णिमा की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

साथ में गोपी किशन का ये गाना कुमार सानू पूर्णिमा की आवाज में हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और उनको सुनना है गाना तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। वैसे सब जिंदगी में आके कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेर बदल करके चले जाते हैं, फिर लोग कहते रह जाते हैं, सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं कि लोग आते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको जाना होता है कुछ।

जिंदगी बदल दी। हमराज का ये गाना हमने इंजॉय किया उदित नारायण की आवाज में, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना लता जी की आवाज में, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा शशि सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

वक्त किया करते हैं। हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा 70s का क्लासिक नगमा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना। इश्क में एक पल की जुदाई लगती है एक साल। सोनू निगम और कविता जी की आवाज में एंजॉय करते हैं बरसात पिक्चर का ये गाना। और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी के न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने अपनी पेट पूजा नहीं की है, भाई पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पेट पूजा के बाद में हर एक काम दूजा अच्छे से होता है, एकदम कायदे से होता है, खुशी खुशी होता है, पेट भरा तो दिल भरा। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं सीधे 9 बजे। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
5: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
6: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
7: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
8: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
9: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

से एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इस बहुत ही खूबसूरत से नगमे को एंजॉय करते वक्त मुझे कुछ याद आया है। हमको ही ढूंढते रहे सारे जहां के लोग, हमको ही ढूंढते रहे सारे जहां के लोग, हम खुद को पा ना सके इस खैर शर में, तो इश्क की राह का मुसाफिर है तो सुन ले, तो इश्क की राह का मुसाफिर है तो सुन ले, यहां मौत भी मिलती है बहुत ही बिखरने पर। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रौनक तिवारी की, उनको सुनना है गाना ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन सबके दिल में बसने वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाह, हमने एंजॉय किया ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी रौनक तिवारी की, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तबिश खान लखनऊ से आपका स्वागत है। अगली फरमाइश है कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को सुनना है अलख निरंजन, सो एंजॉय करते हैं अलख निरंजन सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

आदेश अलख निरंजन, हमने एंजॉय किया ये डिवोशनल सॉन्ग। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी कार्तिक कश्यप की, कार्तिक कश्यप को सुनना था अलख निरंजन। एंजॉय करते हैं मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश, उनको सुनना है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में रोमांटिक गाना मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरे साजन दुआ करना। अगर साजन को इतना ही दुआ करना होता तो बिछड़ने की नौबत ही नहीं आती। क्यों सही कहा ना मोहम्मद मुशीब जी। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा।

बिछड़ के हम मेरे साजन दुआ करना। आपको पता है ये गाना पता नहीं क्यों बार बार 24 घंटे में एक बार मेरे मुखारबिंद पे जरूर आता है। ये गाना मुझे पूरा नहीं याद है, स्टिल पता नहीं क्यों आता है, डोंट नो व्हाई, बट आई लव दिस सॉन्ग। सो हमने एंजॉय किया ये गाना मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। उनको सुनना है गाना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अख भर आई किसी से अब क्या कहना। जब घमंड चकनाचूर होता है तो यही होता है, और क्या करें यही मंजूरे खुदा होता है।

प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना, और तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुछ कुछ होता है मूवी का। बढ़ते हमारी आज के अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना किसी और के नाम की मेहंदी हाथों में ना अपने भरना, ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से प्यार न करना। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्रिय फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार, इतना सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल सो मच, केयर सो मच, लव टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं कल। जाते जाते एक बात कही थी मैंने जो आज भी जिंदा है, इश्क कोई सौदा नहीं ये तो रूह का परिंदा है। जो पिंजरे में कैद होकर जिया तो क्या जिया, इश्क तो बस खुले आसमान का बाशिंदा है।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज तो दिन ही नहीं मेरा है, आज तो दिन आपका है जी। आप श्रोता हैं और आज के दिन आप बनते हैं वक्ता, तो आज का दिन तो श्रोताओं के नाम होता है, तो आज का दिन हमने आपके नाम कर दिया। दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। जी हाँ, तो आवाज दे रहे हैं आपको आपकी ही महफिल में, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आइए भाई। तो दिल की महफिल को सजाते हैं और आपको बुलाते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो आपका है। कल इनका प्रोग्राम हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे भाई, क्या एक से एक खूबसूरत गाने वाले हमारे साथ होते हैं और तबीयत खुश हो जाती है। और इस महफिल में हम आपका स्वागत करते हैं, तो पहले तो चलिए भाई आपका स्वागत करते हैं और आपको बुलाते हैं अपने इस अंदाज से। और इस महफिल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, तो कुछ कहेंगे नहीं, बस एक प्यारा सा नगमा आपको भेंट करेंगे, आपको सुनाएंगे और इसके पश्चात सीधे आएंगे अपने कालीन प्रोग्राम की तरफ। जी हाँ, आज वक्त है आपका, तो फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, और इस नगमे के तत्काल पश्चात कार्यक्रम शुरू करते हैं। जी आज तो आपकी बारी है, कल इनका प्रोग्राम शुरू करते हैं इस गीत के तत्काल पश्चात। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी

0: जी बिल्कुल, दिल की महफिल सजी है, चले आइए। और अभी महफिल सज चुकी है और हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं। देखते हैं भाई कौन हमारे साथ, फोन आ चुका है हमारे पास, देखते हैं आज की शुरुआत कौन करता है। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप
1: और?
0: जी आपका शुभ नाम?
1: सर मेरा नाम अर्चना यादव है।
0: क्या बात है, मतलब कितने दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है मुझे, मतलब ऐसी भी कौन सी नाराजगी?
1: सर ऐसे ही मतलब नहीं हो पाया था, मतलब बीच में कांटेक्ट।
0: हाँ,
1: मतलब सोचे कि मैं मतलब फिर से ज्वाइन करूं।
0: ओके, मतलब ये महफिल आपके बिना सुनी थी।
1: जी।
0: और कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सर, अपना बताइए।
0: बस बस आपकी आवाज कानों में पड़ गई और जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो भी खुश हो गए होंगे। तो आज आपसे क्या सुनने वाले हैं हम?
1: सर एक सॉन्ग है, मतलब पंजाबी सॉन्ग है।
0: पंजाबी सॉन्ग है, क्या बात है। जी
1: कि कुछ लाइन मैं मतलब अपने भाव में पिरोना चाहूंगी।
0: नहीं नहीं, पूरी लाइन आप पिरोए।
1: जी
0: जी।
1: दिन रात कली हुई तेरे पीछे चली हुई, कद रात करे सके प्यार दिया, हर बेली रोंदी आरा तेनू फिर ढूंढी मैं ते।

0: जी जी जी आगे आगे आगे सुन रहे हैं हम आपको।
1: बस इतने ही सुना
0: है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ही प्यारा गाया आपने। और कोई अब ये पंजाबी तो हो गया, कुछ हिंदी में भी हो जाएगा क्या?
1: जी
0: जी

0: क्या बात है भाई, क्या बात है अर्चना जी, आप तो छा गई। श्री तेजना सुख ने लिख दिया है भाई आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद मिल चुका है आपको।
1: थैंक यू सर।
0: चलिए तो और आपके ही साथ वो भी होंगी
1: जी, काजल।
0: जी जी काजल, हाँ हाँ, जोड़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और कोई गीत आज आपसे भी सुनने की इच्छा है, नहीं तो आपके तो भाई स्वयं लिखे हुए जो नगमे होते हैं वो तो एकदम दिल को छूते हैं। बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना और जी अब चलते हैं अपने, देखते हैं वैसा फिर कौन जुड़ चुका है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, मैं मनु, आपका शुभ नाम?
1: जी मेरा नाम काजल यादव है।
0: क्या बात है, क्या बात है काजल जी, क्या बात है। काजल नाम की एक फिल्म भी आई थी पता है आपको?
1: जी
0: जी, उसका कोई गीत बताइए।
1: गीत तो नहीं याद है सर, देखना पड़ेगा।
0: जी काजल फिल्म का गीत था, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम।
1: हाँ।
0: उसकी एक पंक्ति बहुत जी
1: दूसरा सॉन्ग गाना।
0: नहीं नहीं, मतलब हमने तो आपको सिर्फ बताया कि मतलब आपके नाम से मूवी भी आ चुकी है।
1: हाँ।
0: जी तो वैसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है और फिर बताइए कि क्या सुनने वाले हैं आपसे हम।
1: मेरे नैना सावन भादो।
0: हाँ क्या बात है, किशोर कुमार को टच कर रहे हैं आप
1: जी।
0: क्या बात है भाई, वाह। तो बिल्कुल शुरू करते हैं।
1: जी जी जी
0: जी

0: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कल से सावन आने वाला है, आज गुरु पूर्णिमा है, कल सावन की शुरुआत हो चुकी है और आपने सावन पर ही गीत गा दिया, मेरे नैना सावन भादो। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाया। और भाई श्री अनिल शास्त्री ने लिखा है, बहुत सुंदर गीत गा रही हैं, जबकि वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं। दादा चरण स्पर्श आपको, देखिए आप चाहें तो भाई आप चैट बॉक्स में आकर के जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है उनको आप अपना
1: हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत थैंक यू।
0: जी जी बिल्कुल, आप ऐप पर आकर के उनको थैंक यू बोल सकती हैं।
1: जी,
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा काजल जी, अगले बुधवार को पुनः रहेगी आपकी प्रतीक्षा।
1: थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जी हाँ, सविता शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, फिर देखते हैं कौन मैसेज। हेलो
2: हेलो
0: हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: जी प्रणाम।
2: प्रणाम सर, मोहन लाल श्रीवास्तव बोल रहा
0: हूँ। अरे प्रणाम चरण स्पर्श, कैसे हैं आप?
2: बस ठीक है, बढ़िया है सर।
0: आप स्वस्थ है?
2: हाँ, तो मैं गाना सुना सकता हूँ?
0: जी जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना?
2: हाँ ठीक हूँ मैं अब।
0: जी
2: तो गाना सुना देता हूँ जल्दी से।
0: जी जी,
2: मुकेश जी का है ये गाना।
0: हाँ क्या बात है।

0: अब जिस व्यक्ति से बात।
1: हेलो, आवाज नहीं जा रही है सर?
2: जी बिल्कुल पूरी आवाज आ रही है, बस जो वो म्यूजिक की आवाज है वो थोड़ी सी कम आ रही है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा।
2: जी जी

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, म्यूजिक ने मतलब आपके आवाज को और बेहतर कर दिया और लगता है कि बहुत प्यारा गाया आज आपने।
0: म्यूजिक की आवाज पूरी नहीं जा रही थी क्या?
1: हाँ, थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज में थोड़ा सा वो इधर उधर था और बहुत प्यारा गाया और बहुत उम्दा।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: आप हमेशा स्वस्थ रहे और ऐसे ही गाते रहे, यही हमारी मंगल कामना।
0: एक दो लाइन एक और सुना देता हूँ एक
1: जी,
0: समय हो तो
1: जी
0: ऐसे ही सुना देता हूँ। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी, ओ दिल

0: करूंगी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, मतलब आपने मुकेश कुमार के साथ अताउल्लाह खान को भी बहुत ही प्यारा निभाया। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही गाते रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहे और आप शतायु हो।
0: जी,
1: अच्छा,
0: बहुत आशीर्वाद आपको।
1: जी हाँ, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, आप, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है।
0: जी,
1: अच्छा, चरण स्पर्श आपको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी,
0: बहुत बहुत आशीर्वाद
1: जी। प्रणाम।
0: प्रणाम जी।
1: जी हाँ भाई, तो ये हमारे श्री मोहन श्रीवास्तव जी और जिंदा दिल आदमी, और हाल ही में हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन देखिए क्या जिंदा दिली है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ, वालेकुम सलाम।
2: निशा
1: जी, मैं, अच्छा, आप निशा और मैं मनु जी, कैसी हैं आप
2: है?
1: जी मैं अच्छा हूँ जी। तो हम क्या
2: गाना गाना है
1: जी,
2: तो शुरू करें
1: जी।
2: कभी मुझको हंसाई, कभी मुझको रुलाई, मुझे कितना बताता है। कभी मुझको हंसाई, कभी मुझको
1: रुलाई, तेज गाइए,
2: मुझे मुझे कितना सताता है। ओ लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है।

जब उसे पहली बार बन गया दीवाना, मैं यार करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, इतना प्यारा मुखड़ा है और तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। उन लड़का बहुत याद

0: स्पष्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज गोरखपुर से है।
1: जी हाँ जी हाँ, और आपको फोन उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरे नहीं नहीं, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि फोन जरा देर से उठ पाया।
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास बढ़िया इस समय चल रहा है आपका प्रोग्राम, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा।
0: नहीं नहीं, ये आप लोगों की कृपा है।
1: नहीं नहीं, ये आपकी उपलब्धि है।
0: नहीं नहीं, उपलब्धि आप लोगों की, आप लोग ही इस कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाते हैं भाई, ये तो आपका कार्यक्रम है, बुधवार के दिन तो आपका नाम होता है।
1: जी जी जी, चलिए वो तो अच्छी बात है कि आपने हमारे पर क्रेडिट दिया, लेकिन सारा क्रेडिट आप ही का है।
0: नहीं नहीं, ये आप सभी का है, ये मंच आपका है।
1: तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको
0: जी
1: दोस्ती पिक्चर का गाना,
0: पुराना वाला। क्या बात है क्या बात है, उसमें सारे गीत मोहम्मद रफी के हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, और वो गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, जाने वाले
0: जरा मुड़के देखो, देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। क्या बात है,
1: बस मैं वही अपनी चीजों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, और मैं कहीं कोशिश में अगर सक्सेस हूँ तो उसके लिए मुझे, और कहीं गड़बड़ हूँ तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर,
0: हम इस लायक नहीं है प्रभु।
1: अरे क्यों नहीं, आप देखिए श्रोता हमेशा लायक ही होता है।
0: जी
1: तो मैं क्या कोशिश करूं?
0: जी जी बिल्कुल।
1: जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ

रूप से उसके पहचानूं, मैं तुम्हारे तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारे तरह जाने वालों जरा इस अनोखे जगत कायम तक देर हो मैं विदा ताके हाथों के पैसे।

के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारा।

किरण फिर रहा हूँ भटकता मया सेवा और परेशान हूँ मैं तुम्हारे तरह जानवा लो जरा मुड़ के दे

0: जरा मुड़ के देखो मुझे, एक मैं तुम्हारे तरह जाने वालो जरा। थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है भाई, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल सिंगिंग, बहुत वास्तव में आवाज भी अच्छी और क्या उठाया है आपने, क्या स्केल है गजब की,
0: गजब की। कमियां बताइएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, कोई 100% मतलब मुझे कोई तो 100 में से 101 देंगे।
0: और थैंक यू सर।
1: तो उनको भी सुन ले जिनके बिना आप अधूरे हैं, और क्या बात है आज।
0: हां लीजिए, वो अधूरे नहीं, मैं पूरा कर रहा हूं।
1: जी जी। और आप सभी श्रोताओं को भाई गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी हमारे गुरु हैं, क्योंकि आप सभी श्रोताओं से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। आप सभी श्रोताओं को चरण स्पर्श और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दी। जी हाँ, आप चलते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो
1: जी, चरण स्पर्श।
2: कैसे हैं?
1: आपको आपका आशीर्वाद है, और गुरु पूर्णिमा की आप गुरु माता हैं, तो आपको शुभकामनाएं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
2: आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आगे बहुत आगे बढ़िए।
1: बस यही चाहिए आपसे।
2: तो आज मैं सुनाने वाली हूँ फिल्म में जो है हंसते जख्म, सुनी आपने?
1: अरे अरे अरे अरे अरे, क्या क्या कह दिया आपने, फिल्म भी बहुत लाजवाब है वो।
2: जी, ये मेरे पति की इच्छा थी कि मैं सुनाऊं ये गाना
1: जी,
2: तो इसे सुनाती हूँ। ठीक है
1: जी।

0: क्या बात है भाई, बहुत वर्षों के बाद मैंने ये गीत सुना और लगा कि एकदम जीवंत हो उठा। मतलब मुझको लगता है 6-7 साल पहले ये मूवी देखी थी तब ये गीत सुना था। और आपका सिलेक्शन बहुत शानदार होता है।
1: नहीं, तो मैं गुनगुना रही थी तो कल मेरे हस्बैंड बोले कि इस गाना को गाओ।
0: मतलब आज की दुनिया में ऐसी भी पत्नियां हैं जो अपने पतियों की बात मानती हैं, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता
1: हुई। हर बात नहीं मानती।
0: नहीं, मतलब ये जोक सफार तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा और आपने पूरा किया, क्योंकि उनको पता था कि ये आप बहुत अच्छा गाएंगी। शानदार संगीत लिखे है भाई मोहन लाल जी ने आपके लिए, बहुत प्यारा गाती है आप, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। और इस बार जब बुधवार आए तो सावन लग जाएगा तो आपसे वही सुनेंगे आपके सजन सावन में।
1: ओ, बिल्कुल सुनाएंगे।
0: जी जी, आप स्वस्थ हैं?
1: जी स्वस्थ हैं अभी।
0: जी, हमारी शुभकामनाएं रंग लाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, चरण स्पर्श आपको।
1: खुश रहिए।
0: हेलो,
2: नमस्कार।
0: अरे दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ ठीक है भैया।
0: हाँ क्या बात है, मतलब महफिल में अब 4 चांद लगा।
2: हाँ चलो, नंबर लग गया तो हमने कहा चलो भाई।
0: नहीं, नंबर लगेगा ही लगेगा।
2: हाँ तो शुरू कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
2: इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला, न करो तुम सज धज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला, न करो तो तुम सच दज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं। रंग बदलती दुनिया में।

0: पागल को ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को, तुमसे न शरारत कर बैठे नादान की नीयत, ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से तूफान की नीयत, ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। मैं कैसे खुदा आप भी कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। मैं कैसे खुदा आप भी कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। चुप जाओ हमारी आँखों में भगवान की नीयत, ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला न करो तुम, सज धज कर ईमान की नीयत, ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में।
1: हाँ क्या बात है भाई, मोहल्ला सरस्वती ने लिखा है शानदार सिंगिंग। विशाल बेरेज लिखते हैं दर्द कुमार जी आते हैं तो बढ़िया ही गाते हैं, क्या गाया है आपने। और राजेश सिंह ने लिखा है भाई मालवीय नगर से 100 में 100 नंबर देंगे सुरेश जी आपको, वेरी गुड, क्या बात है, मतलब क्या बात है। अच्छा प्रणाम आपको। हेलो हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो शैलेंद्र जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हेलो
2: जी सर, गुड इवनिंग, नमस्कार
1: जी, नमस्कार,
2: राधे राधे
1: जी, राधे राधे, आपको भी बहुत दिनों के बाद देखा आपको
2: जी सर, और आपसे बात हुई, सौभाग्य है हमारा,
1: नहीं नहीं
2: आपकी आवाज सुन पा रहे हैं लाइव,
1: हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं।
2: और जितने भी गोंडा FM के श्रोतागण है सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
1: आपको भी।
2: और जिस काफी दिन बाद आज मौका मिला है कुछ सुनाने का
1: जी, मतलब ये काफी दिन आप लगा देते हैं, हम तो आपके साथ रहते हैं।
2: मैं तो अभी बीच में एक दिन वेट कर रहा था कि आपका प्रोग्राम आएगा, लेकिन उस दिन शायद अदनान जी लेके आए थे आपका प्रोग्राम।
1: नहीं नहीं नहीं, बुधवार को मेरा प्रोग्राम मैं ही लेकर आया।
2: अच्छा आप एक दिन मैंने मतलब उनको सुना था बाहरे गजल, वो भी मतलब प्रोग्राम में थे
1: फ्राइडे को, वो
2: तो उसी दिन
1: फ्राइडे को वो करते हैं सर।
2: तो अभी एक सुन रहा था मैं
1: जी।
2: काजल यादव जी जो वो जिनको आपने बोला कि आपके नाम से एक मूवी भी है
1: जी जी,
2: और
1: जी।
2: फिर आपने बोला कि उनको आप गाना सुनाइए उस मूवी का कोई गाना
1: जी।
2: तो वो उनको तो नहीं याद था, लेकिन मैं सुनाता हूँ आपको।
1: क्या बात है,
2: जो गाना है उसका, जो आपने फरमाइश की थी वो आपको फरमाइश में पूरी करने की कोशिश करूँगा और मैं गाने का प्रयास करूँगा।
1: रफी जी की बहुत सी प्यारी आवाज में।
2: ठीक है सर, शुरू करता हूँ मैं।
1: जी जी निसंदेह।
2: सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास?
1: एकदम, आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर है।
2: क्रिस्टल क्लियर, अरे वाह। ओके सर।
1: ओके

0: झूले ने दो नो कुछ और नहीं है जाम ये झूले ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी झूले ने दो नाजुक होठों को शर्मा के नयों में खो देना रंगीन जवानी की धड़िया शर्मा के नयों में खो देना रंगीन जवानी की धड़िया बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैदा हुए झूले ने दो नाजुक होठों को।
1: जो म्यूजिक है उसको और अपने करीब ले आइए सेल फोन के, वो नहीं आ पा रही है।

0: करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है। झूले में दुला तो तुमको कुछ और नहीं है गे। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हकी नाम है। झूले ने दुला तो तुमको
1: माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्ट्रेक्शन हुआ है म्यूजिक की वजह से।
2: जी जी जी जी हाँ भाई, मैं आपसे कहता कि म्यूजिक को हटा दीजिए। आप स्वयं में शानदार गा रहे हैं, म्यूजिक की आवश्यकता ही नहीं है।
1: थैंक यू सर, कोशिश की थी मैंने आपको गाना सुनाने की और आपने ऐसे टाइम पे ये गाना मुझे याद दिलाया कि मतलब दो दिन पहले भी मैं गुनगुना रहा था ये गाना।
2: क्या बात है,
1: रफी साहब का बहुत पॉपुलर गाना है, रफी साहब का, और ऑल टाइम हिट्स में ये गाना रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है।
2: लेकिन आपकी तो आपका वो गीत हम शनिवार को जरूर सुनेंगे, बेइरादा नजर मिल गई। तो
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर,
2: वो जैसे आज्ञा, कंठ से बहुत अच्छा लगता है।
1: जैसे आज्ञा, जो आज्ञा,
2: आज्ञा नहीं, निवेदन, निवेदन निवेदन निवेदन
1: नहीं नहीं सर, आप आदेश कीजिए, आपके आदेश का पालन होगा।
2: शनिवार को हम चाहेंगे कि आपसे सुने।
1: अच्छा, इसी टाइम पे, सेम टाइम,
2: शनिवार को कालीन प्रोग्राम भी होता है तो।
1: अच्छा अच्छा
2: जी, और बिना म्यूजिक के, आप बिना म्यूजिक के बहुत शानदार गाते हैं।
1: ओके ओके सर, विदाउट म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक, ओनली तानपुरा।
2: जी, ओनली तानपुरा।
1: ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने इतने खुलूस से आपने सुना है और सबने बड़े धैर्य से सुना है और सबको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन,
2: अब तो ये वहाँ की भी धड़कन बन चुकी है जहाँ आप रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, मैं बनारस से हूँ, आपको तो पता ही है।
2: जी जी जी
1: और बेसिकली मैं आगरा से हूँ लेकिन मैं बनारस में रहता हूँ।
2: चलिए, वाह, अच्छी बात है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: शनिवार को आपकी परीक्षा रहेगी।
1: ओके सर, ओके सर, बिल्कुल।
2: अच्छा, प्रणाम। जी भाई, अब चलते हैं, देखते हैं कौन है फिर हमारे साथ। हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: हाँ सर जी,
2: जी नमस्कार
3: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सुनाऊं।
2: जी, लेकिन जहाँ से रेडियो की आवाज आ रही है उसे बंद कर दीजिए क्योंकि वो आवाज भी आ रही है।
3: ठीक ठीक
2: जी,
3: अगर टाइम हो तो सुनाए।
2: जी जी बिल्कुल सुनाए,
3: नहीं तो वरना कट करना होता ना। सुनाए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल सुनाए।

अपने पन को रोया, अपने पन को रोया।

जीवन के किस मोड़ पे आके दूर हुए वो दिल से आने

मन से मन के दिन के वादे करके प्यार वफा के साथी बिछड़े मिलके सब तक मैंने समझा।

बिखरे दिल के टुकड़े आखिर खातिर किसके तड़फे, प्यासी आंखें पी जाएंगी आंसू आंखों से छलके, आंसू आंखों से न छलके जब तक

0: जीवन क्या है, जीवन बीत गया सर जी। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत प्यारा गाया आपने।
0: मैं नरमेन मोहन बोल रहा हूँ सर जी।
1: हाँ, आपकी आवाज में पहचान रहा हूँ। जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। जैसा कि अक्सर होता है भाई, ये और ये पता नहीं क्या इत्तेफाक है कि आखिरी काल जो हमारी होती है वो श्री आर के श्रीवास्तव जी के ही साथ होती है। जी हाँ, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ जी
1: जी, चरण स्पर्श।
2: खुश रहिए, खुश रहिए।
1: कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, फोन आपका लगा रहे थे, लग नहीं रहा था।
1: अरे तो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं।
2: कोई बात नहीं। चलिए एक दो लाइन हम भी अपना जो है पिछले बार एक दो बार से आ नहीं पा रहे थे
1: जी।
2: आज भी बड़ा जल्दी जल्दी में आए, फिर तुमने काचा कार लगाया, चलिए मिल गया है तो
1: नहीं। ऑल इज वेल इफ इंड्स वेल, अंत भला तो सब भला।
2: अरे चलिए ठीक है, तो आपका बड़प्पन है
1: जी।
2: चलिए आज मैं लता जी का सुना दू एक दो लाइन
1: जी।
2: आज किशोर कुमार के बहुत गाने गा चुके
1: जी,
2: हो सकता है लोगों को पसंद आए।
1: जी जी, निसंदेह।
2: हेलो।
1: जी हाँ, निसंदेह शुरू करें।
2: मेरी आवाज क्लियर है?
1: एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर।
2: ओके ओके, चलिए। जब भी जी चाहे नई दुनिया

0: हेलो, थैंक यू सर। और
1: क्या
0: सुना
1: आप? हाँ हाँ सुना दीजिए बिल्कुल।
0: दे, एक लाइन और सुना दे।
1: जी जी बिल्कुल।
0: चलिए चलिए। जाने वो क्या लोग थे जिनके जिन

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, मुझे लगता है कि ये दाग फिल्म का गीत है लता मंगेशकर की आवाज में।
0: थोड़ा सा गा नहीं पाए सही।
1: अरे बहुत सही गाए आपने और बहुत प्यारा गीत चुना।
0: मैं आज मैं संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि एक आध जगह लड़खड़ा गया, कोई लिखे हुए तो थे नहीं।
1: अरे आप बिना लिखे हुए इतना शानदार गाते हैं, क्या बताएं आपको। और हमारे प्रोग्राम की कार्यक्रम की खास बात यह है कि अंत आपसे हो जाता है और सब भला हो जाता है।
0: नहीं पिछले बार चूंकि ऐसा फंस गए, नहीं हम सोचते हैं कि देखिए ये हमको बहुत अच्छा लगता है, बात गाने की नहीं है, एक हमारे शहर की शान है
1: जी।
0: मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और मैं इसीलिए इससे हटता नहीं।
1: तो ये शहर की शान है और इसकी शान आप है।
0: अरे सर ये देखिए ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए ठीक है, आप भी निकलिए
1: और आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे गुरु हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
0: थैंक यू। देखिए गुरु तो हम नहीं, गुरु तो आप हैं, हम भूल गए। और आज मैंने गुरु पूर्णिमा पे कुछ मैसेज भी किया लोगों को, लेकिन मेरे ध्यान नहीं था कि आज गुरु पूर्णिमा है, वरना गुरु तो आप हैं हमारे।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमने आपसे सीखा है।
0: आपका है और सभी हमारे जो गुरु वहाँ पे टीचर हैं उन सबको हमारी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, जितने भी नारी ज्ञान स्थली में हैं। चलिए बॉस
1: जी। अच्छा चलो स्पर्श,
0: खुश रहिए खुश रहिए
1: जी। हाँ भाई, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल फिर ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहार गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

यानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सबक। अब तक आपने सुना नीरज और शिखा की शादी के समय महक अमेरिका गई हुई थी। उसके लौटने पर शिखा ने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी, बस कुछ दोस्तों के बीच। महक उस पार्टी का आकर्षण बनी हुई थी। सब उसके व्यवहार और रूप रंग से मोहित हो रहे थे। अब आगे, महक को किसी भी पुरुष का दिल जीतने की कला आती थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखों की चमक और दिलकश मुस्कान में खोकर नीरज और उसके दोस्तों को समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज जीजू के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, वैसे तो जब मिलते थे तो भवरे की तरह हमारे इर्द गिर्द ही मडराते रहते थे। ऋतु की इस बात पर चारों सहेलियां खूब हंसी। आज मौका है तो नीरज के बाकी दोस्तों से गपशप क्यों नहीं कर रही हो? ये अच्छे और काबिल लड़के फसाने लायक हैं सहेलियों, शिखा ने उन्हें मजाकिया अंदाज में छेड़ा। आज इन सब के पास महक के अलावा किसी और की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। अपनी बात कहकर नीमा ने ऐसा मुंह बनाया कि हंसते हंसते उन सब के पेट में बल पड़ गए। ये है वैसे हैरान करने वाली बात, गुंजन ने सीरियस दिखने का नाटक किया, महक से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो आज के बाद इन्हें भूल जाएगी और किसी अगली पार्टी में होने वाली मुलाकात तक ये इनसे कोई वास्ता नहीं रखेगी, नीमा बोली। हाँ, किसी अगली पार्टी में होने वाली मुलाकात में महक इनसे फिर जमकर फ्लर्ट करेगी और पार्टी खत्म होते ही फिर इन्हें बुला देगी, लेकिन इनमें से कोई भी इसके ऐसे व्यवहार से सबक नहीं सीखेगा। अगली मुलाकात होने पर ये फिर महक के इर्द गिर्द दो महलाकर घूमने लगेंगे, है ना ये हैरानी वाली बात? और इधर हम इंतजार में खड़े हैं, नीमा ने नाटकीय अंदाज में गहरी सांस छोड़ी। इन्हें अपना घर बसाना हो तो हमारे पास आना चाहिए, पर इन बेवकूफों की दिलचस्पी हमेशा फ्लर्ट करने वाली महक जैसी लड़कियों में ही क्यों होती है? नीमा के अभिनय ने उनकी सहेलियों को एक बार फिर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। शिखा, नीमा के इस सवाल का जवाब तू देना, जीजू भी महक की तरह फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट हैं। क्या तुझे इनकी इस आदत पर कभी गुस्सा नहीं आता? गुंजन ने मुस्कुराते हुए नीरज की शिकायत की। मुझे तुम सब पर विश्वास है, इसीलिए मैं उनके तुम लोगों के साथ फ्लर्ट करने को अनदेखा करती हूँ, शिखा ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। चल, हमारी बात तो अलग हो गई, लेकिन कल को जीजू किसी और फुलझड़ी के चक्कर में फंस गए तब क्या करोगी? मैं और नीरज उस फुलझड़ी का हुलिया बिगाड़ देंगे, शिखा ने अपनी उंगलियां मोड़कर पंजा बनाया और ऋतु का मुंह नोचने का अभिनय किया तो उस बेचारी के मुंह से चीख ही निकल पड़ी। अब मैं चली खाना लगाने की तैयारी करने, तुम सब अपने जीजू और उनके दोस्तों को महक के रूप जाल से आजाद कराने की कोशिश करो, शिखा हंसती हुई रसोई घर की तरफ बढ़ गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सबक। अब तक आपने सुना, कुछ दोस्तों की पार्टी चल रही थी और उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी महक, जो सब के साथ फ्लर्ट कर रही थी और सारे दोस्त उसकी इस हरकत पे खूब मजे ले रहे थे। अब आगे, पार्टी का सारा खाना बाजार से आया था, सिर्फ मेवे वाली खीर शिखाने बनाई थी। नीरज और उसके दोस्त महक का बहुत ज्यादा ध्यान रखे हुए थे। उसके फ्लैट में कोई चीज खत्म होने से पहले ही इनके द्वारा पहुंचा दी जाती थी। मुझे खीर नहीं खानी, मुझे आइसक्रीम खानी है। खाना खत्म होने के बाद जब महक ने किसी बच्चे की तरह मचलते हुए ये फरमाइश की, तो नीरज फौरन आइसक्रीम लाने को तैयार हो गया। मुझे तो स्पेशल चोको चिप्स आइसक्रीम खानी है, महक ने उन्हें अपनी पसंद भी बता दी। वैसे ये स्पेशल आइसक्रीम कहाँ मिलेगी पता है? नीरज बाहर जाते जाते ठिठक कर रुक गया। मेरे फ्लैट के पास, किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। साली साहिबा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, पर तुम्हारी खातिर जरूर जाऊंगा। वैसे तुम गाइड बनकर मेरे साथ क्यों नहीं चलती? कैसे जाओगे? मोटरसाइकिल से फास्ट ड्राइव करोगे? हवा से बातें करते चलूंगा। तो मैं चली जीजू के साथ बाइक राइड का आनंद लेने। दोस्तों, मैं खुशी से उछलकर खड़ी हुई और उन सब की तरफ हाथ हिलाने के बाद नीरज के साथ बाहर निकल गई। रास्ते में नीरज ने ऊंची आवाज में महक से कहा, मेरा मन कॉफी पीने को कर रहा है, यहाँ कहीं अच्छी कॉफी नहीं मिलती। महक उसके कान के पास मुंह लाकर चिल्लाई, तुम्हारे घर चलें? कॉफी के चक्कर में ज्यादा देर हो जाएगी, तो हो जाने दो, कह देंगे कि पेट्रोल भरवाने चले गए थे और देर हो गई। महक ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीरज ने उस पर दबाव बनाया। महक, मैं भी तो तुम्हारी आइसक्रीम खाने की फरमाइश को पूरा करने के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ था, अब तुम भी एक कप बढ़िया कॉफी पिला ही दो। ठीक है। महक का ये जवाब सुनकर नीरज के दिल की धड़कनें बढ़ती चली गईं। अपने फ्लैट में घुसते ही महक ने पहले किचन में जाकर कॉफी के लिए पानी गर्म होने को रखा और फिर वॉशरूम में चली गई। उसके वहां से बाहर आने तक नीरज ने अपने मन की इच्छा पूरी करने की हिम्मत जुटा ली थी। महक वापस रसोई में जाने लगी तो नीरज उसका रास्ता रोककर रोमांटिक लहजे में बोला, तुम जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की के पीछे तो उसके चाहने वालों की लंबी लाइन होनी चाहिए। फिर मैं शिखा की इस बात को कैसे सच मान लूं कि तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं है? जीजू, मेरे दोस्त आते जाते रहते हैं, मुझे शादी कभी नहीं करनी है, इसीलिए प्यार व्यार का झंझट मैं नहीं पालती। महक ने बेझिझक उसके सवाल का जवाब दे दिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सबक। अब तक आपने सुना, कुछ दोस्तों की पार्टी चल रही थी, उसमें महक सब का आकर्षण बनी हुई थी। वो थी ही इतनी सुंदर और चंचल। तभी उसने आइसक्रीम की फरमाइश की और नीरज के साथ आइसक्रीम लेने चल पड़ी। रास्ते में नीरज ने कॉफी पीने का बहाना करके उसे उसके घर ले जाने को कहा। अब आगे, क्या कभी इस बात से चिंतित नहीं होती कि जीवन साथी के बिना भविष्य में खुद को कभी बहुत अकेला पाओगी? नीरज बोला, क्या अकेलेपन का एहसास जीवन साथी पा लेने से खत्म हो जाता है जीजू? महक बोली, शायद नहीं, पर जीवन में प्यार के महत्व को तो तुम भी नहीं नकार सकती हो। नीरज बोला, मेरा काम दोस्तों से ही अच्छी तरह चल रहा है। हंसती हुई महक किचन में जाने लगी। नीरज ने अचानक उसका हाथ पकड़कर पूछा, और पहली मुलाकात में प्यार हो जाने के बारे में क्या कहती हो? ये खतरनाक बीमारी किसे लग गई है? महक अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। मुझे, नीरज बोला, तब इस सवाल का जवाब तुम्हें शिखा देगी जीजू। महक बोली, उसे बीच में क्यों ला रही हो? नीरज ने कहा, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर। महक ने उसकी आंखों में देखते हुए कुछ भावुक होकर जवाब दिया, मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूं। नीरज ने अचानक उसे खींचकर अपने करीब ला दिया। क्या मुझे पाने के लिए तुम शिखा को धोखा देने को तैयार हो? महक बोली, उसे हम कुछ पता ही नहीं लगने देंगे स्वीट हार्ट। नीरज ने कहा तो शिखा बोली, पत्नियों को देर सवेर सब मालूम पड़ जाता है जीजू, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नीरज बोला, देखो शिखा को पता लग ही गया ना कि तुम उसकी सहेली

सोच विचार करो, अगर बाद में भी तुम्हारे मन में मेरी दोस्ती की चाहत बनी रहे तो हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। महक ने मुस्कुराते हुए उसे ड्राइंग रूम की ओर धकेल दिया। कुछ देर बाद महक ने थर्मस और ट्रे में रखे कपों के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो सोच विचार में डूबा नीरज चौंक कर सीधा बैठ गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सबक। अब तक आपने सुना नीरज कॉफी पी

ने कहा बहाना करके महक के साथ उसके घर चला गया और वहां जाकर वो महक के साथ फ्लर्ट करने लगा। ऐसा करने पर महक ने उसे बताया कि उसके दूसरे फ्लर्ट के बारे में भी उसकी पत्नी को पता है। इतना सुनते ही नीरज के होश फाकता हो गए। अब आगे, इतने सारे कप क्यों लाई हो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कॉफी सब पियेंगे ना जीजू? महक शरारती अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। सब कौन? तुम्हारे दोस्त शिखा और हम सहेलियां, महक बोली। वो यहां आ रहे हैं? नीरज की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे नीमा ने फोन किया और जब मैंने उसे बताया कि हम कॉफी पीने जा रहे हैं तो उन सब ने भी यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया। वो बस पहुंचने ही वाले होंगे, महक बोली। तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताई ये बात? नीरज को गुस्सा आ गया। उन सब का सामना करने से डर लग रहा है जीजू। देखो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। महक की सहज मुस्कान मानो नीरज का मजाक उड़ा रही थी। तुम कुछ पागल हो क्या? तुमने ये क्यों बताया कि हम यहाँ हैं? हम फौरन यहाँ से निकलकर आइसक्रीम लेते हुए घर लौट जाते। तुमने बेकार के झंझट में फंसा दिया। नीरज बहुत परेशान और चिंतित नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं शिखा को समझा दूंगी कि महक की बात काट कर नीरज बोला, तुम्हारे समझाने से वो कुछ नहीं मानेगी। औरतों से हंसने बोलने की मेरी आदत के कारण वो वैसे ही मुझ पर शक करती है। तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था महक। नीरज झल्लाने लगा था। इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो जीजू? हम जैसे फ्लर्ट करने के शौकीनों को ऐसी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। जाल फेंकते रहने से कभी ना कभी तो शिकार फंसेगा ही। वो शिकार ऋतु हो, मैं हूं या कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है? शिखा तुम्हें छोड़ कर तो जाने से रही। जस्ट रिलैक्स जीजू, महक बोले जा रही थी। शट अप, मैं यहां से जा रहा हूं और तुम मुझसे भविष्य में कोई वास्ता मत रखना। नीरज उठा और हेलमेट उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जीजू प्लीज रुको, मेरे हाथ की बनाई कॉफी तो पीते जाओ, महक बोली। भाड़ में जाए कॉफी, नीरज ने गुस्से से कहा। जीजू मैं दोनों कप कॉफी नहीं पी सकूंगी, महक ने हंसते हुए कहा। दोनों कप? नीरज ठिठक कर पलटा तो उसने महक को थर्मस उल्टा कर हिलाते देखा। सिर्फ दो कपों में कॉफी नजर आ रही थी, बाकी सब खाली रखे हुए थे। तुमने सिर्फ दो कप कॉफी बनाई है? वो अचंभित नजर आ रहा था। हाँ जीजू, इस लाडली साली ने अपने जीजू से छोटा सा मजाक किया था, उसका बुरा मत मानना। महक शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ये छोटा मजाक था, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, नीरज ने नाटकीय अंदाज में दांत पीसे। वैसा करने से पहले एक वादा तो कर लो जीजू, महक बोली। कैसा वादा? यही कि शिखा का सामना करने की बात सोचकर कुछ देर पहले तुम्हें जिस डर, चिंता और शर्मिंदगी के एहसास ने जकड़ा था, उसे तुम आजीवन याद रखोगे, महक ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। बिल्कुल याद रखूंगा साली साहिबा, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। निढाल सा नीरज सोफे पर बैठ गया। मेरी जिंदगी में तो कोई जीवन साथी आएगा ही नहीं, लेकिन जीवन साथी के होते हुए भी उसके दिल से दूर होने का दर्द तुम कभी नहीं भोगना चाहते हो, तो आज की रात का सबक मत भूलना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सबक। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
3: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
2: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
3: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफर में, हम इसी खूबसूरत सफर को लेकर के साथ में उनकी कई चीजों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफर होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: सुना।
1: हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोक गीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में, जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थी। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी। ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफी मजेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार एसडी वर्मन से जिद की, गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबान गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो जानना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से।

मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था,

क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज एक ख्वाहिश भूले बिसरे गीतों की, तो ये शाम यही थम जाए। फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए
2: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।